ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि। तदनुसार 24 मई 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सू मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: Expanded commercial ties.
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत

0: बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज का विचार। विषय है अहंकार का त्याग करें। वाचक स्वर है श्री प्रमोद कुमार शर्मा का।
3: श्रोताओ, बाइबिल में आता है कि दंभ का अंत सदैव अहंकार में होता है और अहंकारी आत्मा सदैव पतित होती है। मित्रों, ये एक ध्रुव सत्य है जो मनुष्यों के मन का विश्लेषण करने के बाद विद्वजनों ने खोजा है। ठीक वैसे ही जैसे काम, क्रोध, लोभ के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है और क्रोध विवेक को छीन लेता है, इस प्रकार विवेकहीन प्राणी का पतन निश्चित होता है। ठीक वैसे ही दंभ के कारण उठे अहंकार से भी मनुष्य का पतन होता है। जैसे रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस या बाली का हुआ, अहंकार पतन का रास्ता है। लेकिन इससे वही बच सकता है जिसने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली हो। इसी बात को गीता जी में और अच्छी तरह से समझाया गया है। 3:27 श्लोक में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। यानी जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है।

0: जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा समन्वय किया जाता है। इस दृष्टि से अहंकार मूल जड़ है जो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से प्रहार करती है। आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो कब अहंकारियों जैसा व्यवहार करने लग जाता है। इससे बचने के लिए नाकु सिन्हा कहते हैं, व्यर्थ न बोलें, घमंड न करें, अपनी प्रशंसा कभी न करें। लेकिन अधिकांशतः लोगों को अपनी तारीफ अच्छी और मन लुभावनी लगती है, इसीलिए हम सीधे सीधे अहंकार की पकड़ में आ जाते हैं। वैसे मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी हर मानसिक कार्यविधि पर सावधान होकर निरंतर उसका ध्यान रखे, तो अहंकार जैसी भूलें स्वतः समाप्त हो जाती है। वैसे अहंकार भी कई प्रकार का होता है, जैसे धन का अहंकार, पद का अहंकार, बल का अहंकार, संपत्ति का अहंकार, कपड़ों का अहंकार, अपनी शैली का अहंकार, अपने हुनर का अहंकार, अपने बोलने की कला का अहंकार, किसी ज्ञान विशेष या क्रिया विशेष का अहंकार। पता नहीं ये अहंकार कितने ही रूपों में हमें प्रभावित करता है। ये नहीं है कि छोटे बड़े सभी लोग अहंकार के शिकार होते हैं, बल्कि अहंकार ने तो महारथियों को भी अपनी अंगुलियों पर नचाया है। उदाहरण रावण का लें, उदाहरण दुर्योधन का लें। रावण जब सब कुछ जीत चुका तो उसके मन में आया कि क्यों न भगवान भोलेनाथ को भी लंका में लाकर बसाया जाए। यह सोचकर वो कैलाश पर्वत पर पहुंचा और शिव से आराधना करने लगा, हे महादेव, आपकी कृपा से मैं विश्व विजेता बन गया हूँ। वक्त आ गया है कि आप भी मेरे साथ चलें और श्रीलंका में ही निवास करें। रावण प्रार्थना करता रहा, पर भोले समाधि में थे, कोई ध्यान नहीं दिया। ये देखकर रावण बड़ा परेशान हुआ और उसने सोचा कि क्यों नहीं कैलाश पर्वत ही उठा लिया जाए। यह सोचकर वह कैलाश के पार्श्व में गया और अपने हाथ उसके नीचे लगाकर उठाने लगा। कैलाश थोड़े हिले, पक्षियों में क्रंदन मच गया। अब तो उसकी हिम्मत बढ़ी और वह थोड़ा और जोर लगाने लगा। इस बार कैलाश और ऊपर उठा। शिव का ध्यान भंग हुआ, वे सब बात समझ गए। तब उन्होंने अपने पैर के एक अंगूठे से कैलाश को नीचे दबा दिया। उधर रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। वह बहुत जोर लगाए लेकिन कैलाश नहीं उठा। अपने हाथ की पीड़ा उससे सही नहीं जा रही थी। तब उसने शिव से प्रार्थना करना आरंभ किया। तब शिव ने आकर उसका हाथ बाहर निकलवाया। उस दिन रावण का अहंकार कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी बीज रूप में तो अहंकार था ही, जिसकी वजह से राम के हाथों युद्ध के मैदान में वो मारा गया, नष्ट हो गया। तो मित्रों, हमें हमेशा अहंकार जैसी बीमारी से दूर रहना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का विचार, विषय था अहंकार का त्याग करें। वाचक स्वर था श्री प्रमोद कुमार शर्मा का। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातः की 6:10 हुए हैं। आरंभ होता है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। इसमें आज आप सुनेंगे बालकांड दोहा संख्या 93 से पहली चौपाई से 95 तक की चौपाई का सहस्वर पाठ। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

शिवजी की बारात में जाने के लिए देवताओं तथा दिग्पालों के समूह एकत्रित हुए। भगवान विष्णु ने विनोद में उन्हें शिवजी की वेशभूषा के प्रतिकूल बता दिया। इस पर शिवजी ने दूत भृंगी को भेजकर अपने गण बुलवाए। फिर तो ऐसी बारात सजी जिसे हिमवान की नगरी के बालक देखते ही जैसे जान बचाकर भाग चले। कैसे थे शिवजी के गण? कोई दुबला, कोई बहुत मोटा, कुछ भयंकर गहने पहने, तो किसी के हाथ में नरमुंड और पूरा शरीर ताजे रक्त में सना हुआ, कुछ के मुख गधे, कुत्ते तथा सुअर जैसे। ये सभी अनगिनत योगिनियों, प्रेत और पिशाचों के साथ चल रहे थे। जैसा दूल्हा वैसी बारात। इधर हिमवान ने अद्भुत ढंग से अपनी नगरी को सजाया था। मंडप ऐसा सुंदर

जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। विवाह के अवसर पर जगत के सारे छोटे बड़े पर्वतों, वन, समुद्र और नदियों को न्योता भेजा गया था। ये सब अपने इच्छानुसार सुंदर शरीर धारण कर उपस्थित हुए। बारात नगर के निकट आई तो नगर निवासी बन संवर कर नाना प्रकार के वाहन लेकर उसकी अगवानी करने चले।

ये था कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

दिन में 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। इसमें चर्चा के विषय होंगे राष्ट्रमंडल दिवस, वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान, मारखोर दिवस, वन्य जीव संरक्षण और जागरूकता, समाज सेवा में अग्रणी महिलाएं, प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए, वार्ता होगी सामाजिक कुरीतियां दूर करने में महिलाओं की भूमिका, वार्ताकार होंगी श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, साथ ही साथ होगा गीत संगीत।

शाम 5:05 पर कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें आज की बात होगी असफलता से सीखें। लघु जानकारी होगी राष्ट्रमंडल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय

मोरखार दिवस विशेष कार्यक्रम होगा युवा तरंग आकाशवाणी के संग। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में आयोजित आंशु भाषण प्रतियोगिता की रिकॉर्डिंग का प्रसारण वाचक स्वर श्री माधव व्यास, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेखा, संयोजन श्री अमित सिंह का।

संध्या 7 बजे कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत। इसमें चर्चा के विषय होंगे कृषि में वरदान हरी खाद, पारंपरिक कला कौशल से आर्थिक लाभ, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उपभोक्ता संरक्षण और मौसम की जानकारी के साथ साथ लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे।

अब सी कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे राष्ट्रमंडल दिवस, प्राणायाम और स्वस्थ जीवन, पढ़ने की आदत का विकास करें, और साथ ही साथ होगा फिल्मी संगीत। सात बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8 बजकर 30 मिनट पर कार्यक्रम होगा सौरभ, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कविता पाठ कवि श्री नीलम पारिक। 8 बजकर 45 मिनट पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत। 9 बजकर 10 मिनट पर होगा लोक संगीत। 9 बजकर 30 मिनट पर होगा कार्यक्रम मुकुल। दस बजे आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। 11 बजे कार्यक्रम होगा आपकी पसंद, आप ही के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

0: ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। विषय है सांड की देखभाल व प्रबंधन। वाचक स्वर श्री राम स्वरूप बिश्नोई।
1: किसान भाई राम राम। खेती बातें कार्यक्रम में आज आप अथई कराला सांड रो उचित प्रबंधन और बिहारी देखभाल। देखो सा पशुधन री एक महत्वपूर्ण कड़ी है गोपालन। कोई गाय रो विकास और संवर्धन ई बात पर निर्भर करे कि बठेरा किसान आप रे सांड रो गोधे रो प्रबंधन किया करियो। कोई जे भाई डेयरी चलावे या फिर घना पशुधन राखे धीणो राखे तो हगलाऊ मजबूत कड़ी वे कि वो नई बछड़िया तैयार करण ताई गाय बनावण ताई उचित रूप या तो देखो डॉक्टर साहब कनु टीको लगान कोई वीर्य इकट्ठो करूड़ हुए भी गोपालन आगे बढ़ावे या फिर कोई चोखो गोधो राखे सांड राखे। मोटे तौर माथे हगला जाने की वीर्य उत्पादन की क्षमता रे खातर सांड होना जरूरी है और सांड इसी क्वालिटी रो है जके पशुधन री प्रजनन क्षमता बत्ती हुए। देखो यहाँ है कि जे ही पशु ब्यावे तो आदमी इतो लालची हुए कि जे बा बछड़ी हुए तो बिने घनी लाड कोट सू घणो नीरो चाटो देवे बिने दूध चुंगावे और बिने आगे बढ़ा फूटरी बनावे। पण जे ही कोई गाय टोगड़ की ने लाड टोगड़ी लावे तो वो करे कहीं कि बिने धनियाणी जकी है बस शुरू एक तो जो को खीस है वो कम चुंगावे टाबरा खातर काट ले दूध बर्तन लाग जाए और बिने कम पानती आवे। तो अपन शुरुआती तौर में थी आ गलती करा कि बी बछड़े रे वास्ते जो को मारो खीस मिलनो चाहिए वो बठों शुरुआत हुए बछड़े बनने री पछे बिने लगो लग टेमो टेम दूध देनो चाहिए बिने दूध छोड़नो चाहिए। एंसिया में यहाँ नहीं कि सगलो दूध काट ला और पछे उम्मीद करा कि वो मोटो और चोखो गोदो बनी गाया धीणे हुई तो हुई क्या भाई। तो जरूरत है कि बिने शुरू रे टेम में चोखो और फूटरो गाय रो दूध मिले और गाय रे खीस रे मायने जकी शुरुआती ताकत हुए बी होशियार हुए और चोखो और फूटरो बने और बा जकी खीस है बिने संतुलित आहार रो काम करे बी समुचित रूप भी बछड़े ने ऊर्जा मिल जाए प्रोटीन मिल जाए खनिज तत्व और विटामिन मिल जाए और वो आगे जाए मोटो और फूटरो बने और

अभी आप सुन रहे थे लोक भजन, ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढ़यितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा संपर्क शिक्षा पारस्परिक जनसंबंधादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरंतर प्रगतेः विषये प्रधानमंत्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शांति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च संभाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शांतिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य

0: भारतीय व्यापार नेतृणाम् एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह। कनाडा देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतम् इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तरप्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवार्णिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तरपश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपयक्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि 7 दिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां 71 शतधावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं मुंबय्याम् अपराह्णे 3:30 मुंबई इंडियंस दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वंद्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। सवेरे के 7 बजे है आरंभ होता है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, दिन की शुरुआत हम चाय की चुस्कियों के साथ करते हैं और मन ही मन यही सोचते हैं कि पूरा दिन अच्छा निकले। और अभी वैसे भी बच्चों की छुट्टियां हो चुकी है तो पूरे दिन बच्चों की धमा चौकड़ी मची रहती है, जिसकी वजह से महिलाओं का थोड़ा सा दिन पूरा काम में व्यस्त होकर निकलता है, क्योंकि बच्चों की अलग अलग फरमाइशें भी होती है। लेकिन यही फरमाइशें हमें हमेशा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का ये जो बचपन है वो बहुत ही प्यारा होता है। श्रोताओं, हमें अपने जीवन को हर्षोल्लास के साथ जीना चाहिए और अपने जीवन में एक ताजगी को बनाए रखना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुहाना बने। और इसी के साथ सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए।

0: लेते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं, आज है 24 मई। हर साल मार्च के और दूसरे सोमवार को विश्व स्तर पर राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत और अन्य देशों में इसे विशेष रूप से 24 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस को मनाने का कारण 24 मई को महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन होता है। यह दिन उन 56 स्वतंत्र देशों के संगठन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के बीच शांति, समानता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। इसे पहले एम्पायर डे के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत 1902 में महारानी विक्टोरिया के निधन के बाद उनके सम्मान में की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया था। इस दिन का मुख्य लक्ष्य सभी सदस्य देशों के लोगों को एकजुट करना, साझा मूल्यों का सम्मान करना और वैश्विक भाईचारे का और मानवता को प्रोत्साहित करना होता है। श्रोताओं, खेल दिवस मनाने का कारण यह भी है कि हम इनके प्रति जागरूक हों और जितना हो सके अपना और अपने बच्चों का जो समय है खेल के साथ बिताएं, खुद को स्वस्थ रखें और ये जो गेम्स होते हैं उनमें अपने बच्चों को भेजना भी हमें बहुत ज़रूरी होता है।

श्रोताओं, जो हमारा स्वास्थ्य है उसे हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आज है रविवार का दिन, हम आराम से उठे हैं, लेकिन क्या है कि हम जब सुबह उठते हैं तो उसके बाद चाय पीते हैं, उसके बाद जो भी अपने दिनचर्या के कार्य उनको करते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि हम अपने आराम के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को दूर कर देते हैं। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें खुद को थोड़ा सा समय देने की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे हम योग करें, प्राणायाम करें या फिर सुबह पैदल सैर करें, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। प्राणायाम रक्तचाप, हृदय गति और भावनात्मक अवरोधों और नकारात्मकता को कम करता है। प्राणायाम करने से हमारा शरीर और मन और हमारी जो सांसें हैं वो सब स्वस्थ रहती है, और हम जितने भी तनाव में होते हैं ना उसे हम कम कर लेते हैं, क्योंकि प्राणायाम करने से जो सांस हम तेज़ी से लेते हैं और छोड़ते हैं उससे हमारी जो सांसें हैं उनमें किसी भी तरह का अवरोध है या किसी भी तरह की दिक्कत है तो उसे हम दूर कर सकते हैं। प्राणायाम हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके कई तरीके हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, इन सबको करने से हमारे जो गले में या फिर हमारी जो सांसों में दिक्कत है उसे हम दूर कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि पार्क में या जहाँ भी हम घूमने जाते हैं वहाँ पर कई लोग आसन लगाकर आपस में योग, प्राणायाम और ये सब कर रहे होते हैं, या फिर जो लाफ्टर थेरेपी आजकल करते हैं लोग वो कर रहे होते हैं। तो हमें भी इस चीज़ को, चाहे हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर जहाँ भी खुला स्थान है वहाँ बैठकर हम कर सकते हैं। यदि हम 10 मिनट भी अगर करेंगे तो हमें खुद महसूस होगा कि हम अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं, और ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी है। श्रोताओं, योग और जो प्राणायाम है इसको करने से हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता है और साथ ही कई तरह की बीमारियां भी इससे दूर हो जाती है। हमारे शरीर का मोटापा हो, चाहे हमारे बीपी की समस्या हो, लो बीपी की समस्या हो, कई तरह की समस्या, उनसे हम निजात पा सकते हैं। शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग। श्रोताओं, यदि हम योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो उससे हमारा मन, मस्तिष्क और हम जो भी सोचेंगे वो सब अच्छा होगा और हम एकदम तनाव मुक्त हो जाएंगे।

श्रोताओं, हमारा एक अच्छा साथी एक किताब हो सकती है। उसे हम अपने जीवन में उतार लें तो वह हमारे लिए एक साथी की तरह बन जाएगी। श्रोताओं, हमें अपने आप में एक पढ़ने की आदत को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 15 मिनट भी अगर हम शुरुआत में करते हैं तो इसे हम अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। चाहे हम सोने से पहले इसे पढ़ें या सुबह उठते ही हम 10 या 15 मिनट इसे पढ़ें तो

श्रोताओं, हमारा एक अच्छा साथी एक किताब हो सकती है। उसे हम अपने जीवन में उतार लें तो वह हमारे लिए एक साथी की तरह बन जाएगी। श्रोताओं, हमें अपने आप में एक पढ़ने की आदत को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 15 मिनट भी अगर हम शुरुआत में करते हैं तो इसे हम अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। चाहे हम सोने से पहले इसे पढ़ें या सुबह उठते ही हम 10 या 15 मिनट इसे पढ़ें तो हमारे दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है और कुछ अच्छी चीज़ें हमें पढ़ने से किसी भटकाने वाली चीज़ से दूर कर सकती है। नियमित रूप से पढ़ने से हमारा जो मानसिक तनाव है वो कम होता है और ज्ञान और शब्दावली में हमारी वृद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ती है और जीवन का जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसे देने में हमें मदद मिलती है। जिस तरह से अभी बच्चों की भी छुट्टियां चल रही है तो उनमें भी हम ये आदत विकसित कर सकते हैं। इससे बच्चों के पढ़ने की क्षमता, उनकी शब्दावली सब अच्छी हो जाएगी। जब हम पढ़ रहे हैं तो साथ साथ बच्चों को भी हम किसी अच्छी किताब को पढ़ने के लिए दे सकते हैं जिससे वो अपने आप को पढ़ाई में कम से कम जो वाचन होता है उसमें सफल कर सकें। एक छोटा सा लक्ष्य हमें रखना होता है कि 5 से 10 पेज अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हमें शुरुआत में बोझ भी नहीं लगता और पढ़ने में वो आसान भी लगता है। और सुबह उठकर या फिर रात को सोने से पहले एक समय हम निर्धारित कर लें तो उससे हमें पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। धीरे धीरे इस समय को हम बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम कहीं यात्रा पे हैं या कहीं रुक रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं तो अपने पास एक किताब रख सकते हैं, इसे हम पढ़ सकते हैं और अपना जो समय है उसे निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ हम ई बुक भी रख सकते हैं क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जब भी हमें कहीं किसी का इंतज़ार करने का या रुकने का मौका मिलता है तो हम फटाक से फ़ोन निकालते हैं और सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। लेकिन हमें अपनी आदत को थोड़ा सा सुधारना होगा। हमें अपने साथ एक छोटी ई बुक रखनी चाहिए जिससे हम उसको पढ़ सकें और अपने आप को पढ़ने में, अपने जो अंदर पढ़ने का विकास करना है उसे कर सके, जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकें। श्रोताओं, इसको किताब को पढ़ने के लिए हमें शुरुआत 5 से 10 मिनट से करनी चाहिए और लगातार पढ़ना चाहिए। 40 से 45 मिनट यदि हम बिना रुके पढ़ लेते हैं तो उससे क्या है कि हमारी जो पढ़ने की आदत है उसे हम अच्छे से विकसित कर सकते हैं। यदि हमें लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है तो उसके लिए हम नोट्स भी बना सकते हैं। और पढ़ने के लिए हमेशा शांत जगह को ही चुनना चाहिए क्योंकि यदि हम उसे शांति से पढ़ते हैं तो उसको हम अपने जीवन में, अपने मन में उतार सकते हैं और अपने आप में उतारने के बाद अपनी जो आदतें हैं उनको भी हम बदल सकते हैं। छोटी सी शुरुआत है जिसे हम कर सकते हैं और अपने आप को भी थोड़ा सा किताबों से जोड़ सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को, फिल्म का नाम था क्रांति। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं इस गीत को। फिल्म का नाम है आंखें, स्वर लता मंगेशकर का है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से।

मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। भारत के

0: सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
2: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
3: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा

0: अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
5: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक

0: करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: 395 किलो हर्ट्स पर और एफएम चैनल 101.6 मेगाहर्ट्स पर। सवेरे के 8:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सौरभ। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं कविता पाठ। कवि हैं श्रीमती नीलम पारिक।
1: तुम सामने हो और मैं तुम्हारे चेहरे की किताब पढ़ते पढ़ते जाने कब कहीं दूर निकल जाती हूँ। तुम्हारी ही बाहें थाम खेतों से, खलिहानों से, किसी नदी किनारे कहीं किसी झरझर गिरते झरने के पास, कहीं किसी झरझर गिरते झरने के पास, तो कभी बादलों की नाव बना चांद के झूले पर। तुम टांग देते हो सितारे मेरी सुर्ख लाल चुनर में, और मैं डूबती जाती हूँ तुम्हारी समंदर सी आँखों में, और मैं डूबती जाती हूँ तुम्हारी समंदर सी आँखों में। छा जाती है एक हमारी और अचानक तुम झकझोरते हो मेरे कंधे को। कुछ सुना तुमने जो मैंने कहा? और मैं लौट आती फिर वहीं तुम्हारे सामने। ओ सॉरी, क्या कह रहे थे तुम? नेह समंदर, ओ मेरे मनमीत, नेह समंदर हो तुम तो अंजुरी भर जल मिल जाए जो मुझ प्यासे को, क्या जाओगे रीत? नेह समंदर हो तुम तो अंजुरी भर जल मिल जाए जो मुझ प्यासे को, क्या जाओगे रीत? ओ मेरे मनमीत, दो पल जो तुम संग में मेरे, दिल की धड़कन सांसों के सुर ढाल के जीवन की सरगम में गाओ कोई गीत, ओ मेरे मनमीत। दिल की धड़कन सांसों के सुर ढाल के जीवन की सरगम में गाओ कोई गीत, ओ मेरे मनमीत। ऐसा लगता सदियां बीती, सूखे सावन सूखे भादो नेह मेह को यह मन तरसे, मेघ नहीं बस नैना बरसे। क्या ऐसे ही बिन बरसे ही ऋतु जाएगी बीत, ओ मेरे मनमीत। संगीत बसा है संध्या के नीरव में पंछी के कलरव में, नदियों की कलकल में झरनों की छलछल में, बारिश की रिमझिम में तारों की टिमटिम में, मस्जिद की अजान में, वीणा की तान में, तन की उमंग में मन की तरंग में, संग की तराश में श्वासोच्छ्वास में, मोहन की वेणु में ब्रजकुंज की रेणु में, प्रीत के गान में बैजू की तान में, स्वर है अनश्वर है, संगीत ईश्वर है। भ्रम जब टूटते हैं सपनों के अपनों के रिश्तों के नातों के, तो चटक जाते हैं जाने कितने सच के आईने भी, बिखर जाते हैं कांच, समेटे नहीं सिमटते, बटोरने लगो तो चुप जाते हैं, किरचा किरचा उंगली के पोर से होकर मन में नहीं जुड़ पाते, वो सच फिर से नहीं नजर आता अब उनमें वो अपना पहला सा अक्स, नहीं नजर आता अब उनमें वो पहला सा अक्स, इससे तो अच्छा भ्रम ही बने रहे, जीवन का सच। नियति, कब तक चलती रहेगी तू?

0: कब तक चलती रहेगी तू नियति? बदल कर नित्य नए रूप, बदल कर नित्य नए रूप, कौन करेगा यकीन अब किसी पर? कौन करेगा यकीन अब किसी पर? जाने किसमें छुपी बैठी हो, जाने किसमें छुपी बैठी हो, जाने कौन सी नई बाजी बिछाए। नित्य हो तलाश में, नित्य हो तलाश में किसी सॉफ्ट टारगेट की, किसी सॉफ्ट टारगेट की। आजमा सको कोई नया पैंतरा, आजमा सको कोई नया पैंतरा, दे सको किसी को कोई नया जख्म, दे सको किसी को कोई नया जख्म। कर डालो छलनी किसी कोमल मन को, कर डालो छलनी किसी कोमल मन को। हो जाती हो जग जाहिर, हो जाती हो जग जाहिर, फिर भी कैसी है विडंबना। नहीं है कोई आरोप तुम पर, नहीं है कोई आरोप तुम पर, रह जाते हैं चुप, कर लेते हैं स्वीकार समझ कर तुम्हें। रह जाते हैं चुप, कर लेते हैं स्वीकार समझ कर तुम्हें, हम अपनी ही। ओ नियति, ओ नियति, याद नहीं मन के आंगन में ऐसा थी, कब आया सावन याद नहीं। मन के आंगन में ऐसा थी, कब आया सावन याद नहीं। बस दूर तलक सूखा बंजर, कब बरसे बादल याद नहीं। बस दूर तलक सूखा बंजर, कब बरसे बादल याद नहीं। रो रो कर आंखें सूख गई, कब बिखरा काजल याद नहीं। रो रो कर आंखें सूख गई, कब बिखरा काजल याद नहीं। बाबा की उंगली छूट गई, कब छूटा आंगन याद नहीं। बाबा की उंगली छूट गई, कब छूटा आंगन याद नहीं। माँ की लोरी कब छूट गई, कब छूटा आंचल याद नहीं। माँ की लोरी कब छूट गई, कब छूटा आंचल याद नहीं। जीवन की बगिया सूख चली, जीवन की बगिया सूख चली, कब महका तन मन याद नहीं। कब महका तन मन याद नहीं। नेह की कोम्पल, बरसों से तपते निर्जन में ठूंठ होने के कगार पर, बरसों से तपते निर्जन में ठूंठ होने के कगार पर पहुंचे पर्णविहीन तरु को, पर्णविहीन तरु को छूकर निकली प्रीत बदरिया। पर्णविहीन तरु को छूकर निकली प्रीत बदरिया, पवन झकोरे के संग छू गई प्रेम की अमृत बूंदे। पवन झकोरे के संग छू गई प्रेम की बूंदे, प्रेम की अमृत बूंदे। फूट पड़ा एक प्रीत का नन्हा सा अंकुर, फूट पड़ा एक प्रीत का नन्हा सा अंकुर। पर इससे पहले, पर इससे पहले कि अंकुर से निकल आते प्रणय पात, पर इससे पहले कि अंकुर से निकल आते प्रणय पात, यूं चला समय का झंझावात और उखाड़ फेंका। यूं चला समय का झंझावात और उखाड़ फेंका जड़ से ही नेह की कोम्पल। नेह की कोम्पल उगने से पहले ही सूख गई, उगने से पहले ही सूख गई।
1: अभी आप सुन रहे थे कविता पाठ, कवि थी श्रीमती नीलम पारेख। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत।

ये था कार्यक्रम सुगम संगीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती के लिए गाइडलाइन जारी की। मंत्रियों के काफिले सीमित होंगे और विदेश यात्रा पर रोक रहेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार की देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने की योजना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ घुसपैठ की आशंका समाप्त होगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का दौर चला।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती को लेकर सभी सरकारी विभागों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इनमें सरकारी खर्चों में कमी लाने, डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र में सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या सीमित करने, राजकीय खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये भी तय किया गया है कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई व्हीकल्स में बदला जाएगा। संविदा वाहनों में भी ई व्हीकल्स को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही राज्य भर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा एक ही दिशा में आने जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कार पोलिंग अपनाने और तात्कालिक रूप से निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करने को कहा गया है। ये खर्च नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त शासी संस्थाओं पर लागू होंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का हब बनने की अपार संभावनाएं हैं। श्री वैष्णव कल जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने भिवाड़ी में खुले प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का जिक्र करते हुए कहा कि इससे करीब 6 करोड़ चिप का उत्पादन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इस क्लस्टर के जरिए अब तक 20 कंपनियों से 1200 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजनाएं आकर्षित की जा चुकी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकाणी इलाके को सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया जा चुका है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार की स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के तहत देश की सीमाओं को अवैध बनाने की योजना का स्वागत किया है। श्री शेखावत कल बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और किसी भी तरह की घुसपैठ की आशंका समाप्त हो जाएगी।
1: आने वाले 3 वर्षों में भारत की सीमाएं अवैध हो जाएंगी। हम भारत की सीमाओं को अवैध बनाने के लिए सभी उन्नत टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए जहां सीमा पर सीमा की तारबंदी को और अधिक सुदृढ़ करना है उसे सुदृढ़ करते हुए भारत की सीमाएं अवैध बने और भारत में एक भी व्यक्ति घुसपैठिए के रूप में प्रवेश न कर सके इसको सुनिश्चित करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा करना प्रारंभ किया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीकानेर से, हमारे राजस्थान से, क्योंकि भारत में जो पाकिस्तान के साथ में हम सीमा साझा करते हैं उसकी 1/3 से ज्यादा सीमा जो है राजस्थान में है, तो राजस्थान के बॉर्डर पर उनका आना राजस्थान की सीमा की सुरक्षा के लिए और राजस्थान की सीमा के बदलते हुए परिदृश्य में भविष्य में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
0: श्री शेखावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर दौरे की तैयारियों का भी जायजा लिया। श्री शाह का कल रात बीकानेर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 26 मई को सांचू बॉर्डर चौकी का निरीक्षण कर जवानों से संवाद करेंगे। वे सीमा सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को हर आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। श्री खर्रा कल अजमेर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई करना निर्वाचन आयोग का काम है।
2: हम तो तैयार हैं, राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चुनाव कराने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग जब भी उचित समझेगा और सरकार से उनको जो मदद की आवश्यकता होगी सरकार वो मदद देने को तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग जब चाहे चुनाव की तैयारी करे।
0: गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में जारी आदेश में कहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव अब और टाले नहीं जा सकते।

0: भारत ने सरकार से चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 जुलाई तक की समय सीमा तय की है। साथ ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और परिसीमन तथा मतदाता पुनरीक्षण का काम 20 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्कर घाटी में बढ़ते सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए अजमेर जिला कलेक्टर को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घाटी के दोनों तरफ हाइट गेज लगाने और बड़े वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने को कहा। श्री देवनानी ने कहा कि पुष्कर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, यहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ऐसे में घाटी क्षेत्र में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। श्री सिंह ने कल महाराष्ट्र के सावली विहीर औद्योगिक क्षेत्र में तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है और आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा।
1: हमने यह समझा सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। हालांकि कल पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ हिस्सों में आंधी बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली और हल्की बरसात हुई। वहीं जैसलमेर 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। बाड़मेर, बीकानेर और फलौदी में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब मापा गया। 44 डिग्री पारे के साथ पिलानी, चित्तौड़गढ़ और कोटा भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। राज्य के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म हवाओं का प्रकोप अधिक है। सरहदी जिलों में तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों तक हीटवेव की प्रबल संभावना है। पश्चिमी जिलों में तेज लू और पूर्वी तथा उत्तरी जिलों में हीटवेव के साथ गर्म रातों का ऑरेंज और येलो अलर्ट बताया गया है। इस बीच कल से नौतपा शुरू हो रहा है, ये 2 जून तक चलेगा। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों सूरज सबसे ज्यादा तपिश पृथ्वी पर डालता है, जिससे गर्मी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती के लिए गाइडलाइन जारी की। मंत्रियों के काफिले सीमित होंगे और विदेश यात्रा पर रोक रहेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार की देश की सीमाओं को अवैध बनाने की योजना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ घुसपैठ की आशंका समाप्त होगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का दौर चला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम चैनल 101.6 मेगा हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 9:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत।

ये था कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मुकुल। इसे आज आपके लिए पेश करेंगी डॉक्टर स्वर्णरेखा।

बच्चों जय हिंद। आज के आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में जो बच्चे उठ चुके हैं, सबको पता है कि मुकुल संडे को सुबह सुबह आ जाता है आपसे मिलने, और इसमें आती हैं आपकी प्यारी प्यारी दीदियाँ, और उनमें से एक दीदी यानी मैं डॉक्टर स्वरण रेखा आपके साथ हूँ। आपसे मिलने के लिए, बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे पास। हो भी क्यों ना, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं और इन छुट्टियों में हमने क्या किया है, जिंदगी को जीना सीखा है या शरारतों से खुद को और ज़्यादा परेशान किया है। खुद को परेशान करना क्यों कह रही हूँ, सोचो सोचो। किसी को नाखून खाने की आदत होती है, किसी को सिर खुजाने की, और किसी ना किसी को कुछ और ऐसी आदतें जिससे हमारे बारे में कोई ये कह दे कि ये तो बड़ा नॉटी बच्चा है। होता है ना आपके साथ भी, ये बहुत नोटोरियस है, ये बात नहीं सुनता है, ज़िद्दी है।

लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये बातें जो छोटी छोटी थी हमने कहीं ना कहीं किसी को बोलने का मौका दिया ना। सोचो कैसे। अब सुबह की बात ले लो, सुबह उठने के लिए माँ ने कितनी बार बोला होगा आपको, संडे है, छुट्टियाँ हैं, तो ऑल डेज आर द संडेज, है ना। लेकिन हम सुबह उठे ही नहीं, क्योंकि सुबह उठ के अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते या पार्क में खेलने जाते, सुबह शाम की ठंडक होती है भाई, दिन में तो गर्मी हो जाती है, फिर आप क्या करोगे। तो सुबह उठने में परेशानी, रात को सोने में परेशानी, और फिर चाहिए हमें गैजेट्स। हो गई ना हमारी आदतें खराब। तो चलो आज बहुत ज़रूरी है हमें कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना, क्योंकि हमारी आदतों के बारे में ही आपकी दीदी आपसे बात कर रही है। कि सबसे पहले तो जो बच्चे ब्रश नहीं करते ना, पहले दिखाओ अपने दांत, ई करो। अब ये भी सोचोगे कि रेडियो में दांत कैसे नजर आएंगे, आ जाते हैं इमेजिन करने से। अगर बच्चे ने ब्रश नहीं किया है सुबह उठने के बाद में, रात को सोने से पहले, तो आपके दांतों में कैविटीज लगने का डर होता है। और हाँ, जब हम खेलते कूदते भागते इधर उधर से आते हैं, हम हाथ भी नहीं धोते, ऐसे किचन में घुस जाते हैं या ऐसी चिप्स का पैकेट या किसी और चीज़ का पैकेट खोल लेते हैं और खाने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि हम आलस करते हैं नहाने में, नाखून कटवाने में, जो प्रतिदिन की यानी डे एक्टिविटी है हमारी साफ़ सफाई के लिए। और हाँ, अगर आपको कपड़े बदलने में दिक्कत होती है, आपको प्रॉपर अपना हाइजीन नहीं पता है, तो मम्मा जब आपको बोलती है कि आप अपने अच्छे हेल्दी कपड़े पहनिए, यानी वॉशेबल कपड़े पहनिए, ताकि पसीने की बदबू या किसी और चीज़ की या रैशेज़ की कोई समस्या नहीं होगी, ये ज़रूरी बातें हैं ना। और अब खाने के बारे में हेल्दी हैबिट्स क्या होती है, कि पौष्टिक नाश्ता लेना ज़रूरी है। सुबह सुबह हमें कोई भी तरीके का पैक्ड फूड नहीं लेना कि मैं तो ये नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं। आपको अच्छा हेल्दी खाना खाना है जो मम्मा खिलाती है। हरी सब्जियां खानी है, फल खाने हैं, और दूध तो पीना ही पीना है। समय पे सारा काम करना है, हर चीज़ को प्रॉपरली, जिसे कहते हैं ना, एक स्केड्यूल बेस पे करना है। और हाँ, खाना कौन चबा के नहीं खाता भाई, ऐसे करके या मंचिंग्स को बहुत प्यार से करके, ये है छोटी छोटी चीज़ें। और हाँ, जादुई शब्दों का यानी मैजिकल वर्ड्स का इस्तेमाल करना नहीं भूले, क्योंकि ये हमारे बिहेवियर को बताता है। जैसे कि विच आर द मैजिकल वर्ड्स, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, और बड़ों का आदर करना सीखिए, ये है हमारे लिए बहुत ज़रूरी। और इसमें सबसे अच्छी एक और ज़रूरी चीज़ क्या है, पंचुअलिटी। तो चलो पंचुअलिटी में क्या, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, और होमवर्क कर लेना भाई, क्योंकि छुट्टियाँ थोड़े दिनों की हैं, जाते ही स्कूल में मैम पूछेगी। और हाँ, गैजेट से बनाए दूरी, लेकिन अगर दूरियाँ रहेंगी, हमारी अच्छी आदतें रहेंगी, तो मीठी मीठी बोलियाँ भी हमारे साथ चलेंगी। कैसे चलेंगी सोचो।

कितनी प्यारी बात कही ना कि मीठी बोलियों से बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैजिकल वर्ड्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्लीज़ कर दो ना ये थोड़ा सा काम, प्लीज़ के साथ में कितने प्यार से वो बात जुड़ जाती है। और आपको तो पता ही है कि हम बच्चे कितने रचनात्मक होते हैं। आपकी दीदी को पता है कि आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी है कुछ नई चीज़ करने की। सभी बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि आप में से कोई ऐसा हो गया जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है कि मुझे ये चीज़ जाननी है, मुझे ये करना है। किसी को नट बोल्ट्स ये बहुत पसंद आते हैं, किसी को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो किसी को कुछ और काम। और हर बच्चे में अपनी एक काबिलियत होती है, आई ना स्माइल चेहरे पे। और हाँ, किसी किसी को तो हंसना बहुत अच्छा लगता है, गुदगुदी करना बहुत अच्छा लगता है, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें क्या हैं? दैट मीन्स द फैक्ट वाली चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो आप जो इमेजिन करते हैं, आपकी इमेजिनेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चा खुशी में क्या चीज़ें देखता है। छोटे से खिलौनों की दुनिया में वो अपनी कौन सी दुनिया बसा लेते हैं। और एक और बात कि आप उसको एक अलग दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं। इमेजिनेशन तो किया, द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने उसको देखा कैसे। आपको कला पसंद है, संगीत पसंद है, नृत्य पसंद है, रोल प्लेज पसंद है, या आपको अपने विचार व्यक्त करने के लिए यू आर पुटिंग द डायलॉग्स। कई बार मम्मी भी बोल देती है ना, क्या डायलॉग मार रहा है मेरे आगे। यानी कि वो जो प्रेजेंस है आपके शब्दों की, वो जो थ्रो है आपके शब्दों का, कहने का जो तरीका है, उसमें भी एक काबिलियत होती है। कुछ बच्चे बड़े प्यार से भोली सी जबान में बहुत सी बातें कह देते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी गलतियों से नहीं डरना कि आपसे कुछ गलत हो गया है, हमने किया है। लेकिन अगर उसमें हमें डर ये बात का हो कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, मैं ऐसा तो नहीं कर रहा, तो उससे आपकी जो रचनात्मकता है वो बाहर नहीं आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको क्ले मॉडलिंग्स, आर्ट, क्राफ्ट ये बहुत पसंद है। और उसके साथ ही जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको स्टोरी टेलिंग्स पसंद है, उन्हें अपनी बातों को कहने का अंदाज पसंद है, या वो लोग कुछ अलग डिज़ाइनिंग के साथ में खुद को प्रेजेंट कर लेते हैं कि हाँ, मेरा ये जो चीज़ बनाने का तरीका है बहुत अलग है। और तो और, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में छोटे बच्चे बैठे होते हैं, वो कहते हैं हमारा सिर बहुत खाते हैं। अब वो सिर खाना क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किधर, ऐसा ही क्यों होता है? ये इतने सारे सवाल जब वो बच्चे पूछते हैं तो उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं फंस के रह गए। मैं अपने चाइल्डहुड की बात बताती हूँ कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तब एक चिल्ड्रन नॉलेज बैंक करके एक सीरीज़ की बुक्स आया करती थी, और वो चिल्ड्रन नॉलेज बैंक के अंदर अनसुलझे रहस्यों की बात होती थी, उन घटनाओं की बात होती थी जो बहुत ज़्यादा मेस्मराइज करते थे। ऐसी बहुत सी बुक्स आज भी अवेलेबल हैं, इंसाइक्लोपीडिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी रोचक जानकारियाँ होती हैं, नॉलेजेबल थिंग्स होती हैं। और हाँ, कैसे आर्ट एंड क्राफ्ट्स को आप और अच्छा कर सकते हैं, तो करेंगे ना। चलो आज पेन पेपर लेकर बैठना और आज एरोप्लेन बनाना, क्योंकि पेन से उसके ऊपर अपना नाम तो लिखना है ना। तो चलो एरोप्लेन उड़ाएंगे। लेकिन हम बच्चे हैं ना, हम किसी से कम नहीं है, क्यों, सही कहा ना।

जी हाँ बच्चों, जब हमारे साथ में ना छोटी छोटी बातें और जुड़ती हैं ना, वो पता क्या होती हैं? तितलियों सी बातें। और हमारे अलग अलग भाग में हमने देखा होगा कि हम आपसे रोचक जानकारी से लेके हर चीज़ से लेके बातें करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि बच्चों को एक कंप्लीट पैकेज मिल जाए। तो आज का पैकेज क्या है, किसी ने सोचा? कल किसी ने मुझे एक कविता सुनाई थी, बड़ी प्यारी कविता थी, मेरी दुनिया के तमाम बच्चे। मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा कि ये मुझे अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहनों को सुनाना चाहिए, हमारे बच्चों को सुनाना चाहिए। तो सुनेंगे कविता? चलिए। वो जमा होंगे एक दिन और खेलेंगे एक साथ मिलकर। वो जमा होंगे एक दिन और खेलेंगे एक साथ मिलकर। वो साफ सुथरी दीवारों पर पेंसिल की नोक रगड़ेंगे। वो कुत्तों से बतियाएंगे और बकरियों से और हरे टिड्डों से और चींटियों से वो दौड़ेंगे बेहताशा। कहाँ? हवा और धूप की मुसम्मल निगरानी में। और धरती धीरे धीरे और फैलती चली जाएगी उनके पैरों के पास। देखना, वो तुम्हारी टांगों में बालू भर देंगे, तुम्हारी बंदूकों में मिट्टी गहरा दबा देंगे। वो सड़कों पे गड्ढे खोदेंगे, पानी भर देंगे और पानियों में छपाछप लौटेंगे। वो प्यार करेंगे एक दिन उन सबसे जिनसे तुमने उन्हें कभी नफरत करना सिखाया था। वो तुम्हारी दीवारों में छेद कर देंगे एक दिन और आर पार देखने की कोशिश करेंगे। वो सहसा चीखेंगे और कहेंगे, देखो उस पार भी मौसम तो हमारे जैसा ही है ना, हम भी तो कहीं ना कहीं हवा धूप और पानी के बीच में महसूस करेंगे और चाहेंगे, और तुम उस दिन उन्हें नहीं रोक पाओगे। एक दिन तुम्हारे महफूज घरों से ये बच्चे बाहर निकल आएंगे और पेड़ों पे घोंसले बनाएंगे। उन्हें गिलहरियां पसंद हैं तो उनके साथ बड़ा होना चाहेंगे। तुम देखोगे वो जब हर चीज़ उलट पुलट कर देंगे उसे और सुंदर बनाने के लिए। एक दिन मेरी दुनिया के तमाम बच्चे चींटियों, कीटों, नदियों, पहाड़ों, समुद्रों और तमाम वनस्पतियों के साथ मिलकर धावा बोलेंगे और तुम्हारी बनाई हर चीज़ को खिलौना बना देंगे। सही है ना? क्योंकि हम भी जब प्रकृति में खिलौना बनकर उठते हैं खांसी भी आती है। क्यों? क्योंकि जब धूल में हम जाते हैं और धूल से उड़ते गुबार के पीछे हमें अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो प्रकृति के करीब रहना है, लेकिन प्रकृति के साथ में, और हमारी सांसें

होती हैं किसके साथ, हमारे अपनों के साथ। ये जो गाना है ना, ये बहुत प्यारा सॉन्ग है। चलो इसके लिए थोड़ा सा बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये उस मूवी से लिया गया है जिसके अंदर एक स्पेशल चाइल्ड है, वो बच्ची स्विमिंग करना सीखना चाहती है और जो उसमें हीरो हैं वो उसको स्विमिंग करना सिखाते हैं, वो एक रिटायर्ड आर्मी जनरल है। तो ये गाना बहुत प्यार से उस बच्ची के लिए डेडिकेट किया है कि एक पिता और बच्चे का प्यार क्या होता है। तो आपको भी पता है ना कि हमारे पापा मम्मा हमसे कितना प्यार करते हैं, तो शायद वो यही कहते होंगे।

जी हाँ बच्चों, हमारी सांसें भी हमारे मम्मी पापा की देन है, क्योंकि हम उनके लिए ग्रैटिट्यूड रखते हैं। और रखते भी क्यों नहीं, क्योंकि जब हमारे को रात को नींद आती है, हम सोने जाते हैं, तो हमारे पास में एक ही होता है, माँ एक कहानी सुना दो ना। कहीं ना कहीं वो कहानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है और हमें जीवन में प्रेरणा देती है। तो ऐसे ही एक कहानी है, ईमानदारी का फल। आज आप अपनी मम्मा को सुनाना। ईमानदारी का फल एक कहानी लकड़हारे की है, जो बहुत प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना, सच्चाई नहीं छोड़नी, और इनाम के लालच में कभी किसी के साथ गलत नहीं करना। तो कहानी पता है कैसे है कि बहुत समय पहले एक गाँव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था, लकड़ियाँ काटने वाला। बहुत मेहनती था, ईमानदार था। हर दिन वह जंगल में जाता, कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियाँ काटता और बाजार में लाकर बेच देता। उससे उसकी जो भी अर्निंग्स होती, उससे परिवार का खर्चा चलता। एक दिन कुल्हाड़ी जब वो पेड़ से काट रहा था, पास में नदी में गिर गई। तो अब वो बैठा बैठा सोचने लगा कि ये कुल्हाड़ी तो गिर गई, अब मैं क्या करूँगा, निकाल पाना मुश्किल है। तो उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तो जल के देवता प्रकट हुए नदी में से। उन्होंने बोला कि भाई तुम दुखी क्यों हो, किनारे बैठ के क्यों रो रहे हो, किस बात की चिंता है। तो उसने कहा कि मेरी जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई, अब मैं क्या करूँगा, अपने परिवार को क्या खिलाऊँगा। तो लकड़ी के देवता ने, यानी कि जो अंदर से जल देवता थे, वो लकड़ी के देवता हुए, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कुल्हाड़ी लाने की सोची। तो उन्होंने क्या किया कि उसके लिए सोने और चांदी की दो कुल्हाड़ियाँ लेकर आए। जल देवता ने

0: कहा कि तुम पानी में डुबकी लगाओ, तुम्हें कुल्हाड़ियाँ मिलेंगी। जब उसने देखा कि वहाँ पर तो एक सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी है, तो उन्होंने जल देवता को कहा, भाई ये कुल्हाड़ियाँ तो मेरी नहीं है। तो जल देवता ने कहा कि तुम अपनी कुल्हाड़ी तो चुनो, कि ये मेरी कुल्हाड़ी है ही नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। देवता ने फिर कहा कि पानी में डुबकी लगाओ, इस बार उसे दूसरी कुल्हाड़ी मिलेगी। ऐसे करते करते उसके हाथ में चांदी और सोने की ही कुल्हाड़ियाँ आती गई। तो वो फिर हताश हो गया, उसने कहा कि ये कुल्हाड़ियाँ मेरी नहीं है। इसे देखकर देवता के चेहरे पर चमक आ गई कि भाई ये तो बहुत ईमानदार है, इसको चाहे कितना भी लालच दे दिया, ये ले लो ये ले लो, लेकिन इसने उसमें कहीं भी अपने आप को डगमगाने नहीं दिया। तो अंततः देवता ने उसकी खुद की कुल्हाड़ी निकाल कर सामने दे दी, और जैसे ही वो कुल्हाड़ी मिली, ऐसे उसके चेहरे पर जो चमक आई, जो खुशी आई कि हाँ हाँ यही मेरी असली कुल्हाड़ी है, तो इससे देवता भी प्रसन्न हुए और उन्होंने रामू को उसकी सच्चाई और ईमानदारी का इनाम दिया कि ये कुल्हाड़ी तो तुम ले ही जाओ, पर साथ में इनाम के तौर पे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी ले लो। और रामू ने फिर क्या किया, देवता को धन्यवाद दिया, सेम वही द मैजिकल वर्ड्स, थैंक यू, और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। तो क्या सीखा आपने इससे, कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए, और ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है, और इसके लिए हमें कोई कितना भी मीठा बनकर अपना काम करवाने के लिए लालच दे दे, हमें लालच में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपको कोई चॉकलेट का दे दे, आइसक्रीम का दे दे, या किसी भी तरीके का जंक फूड का, आप उनकी बातों में आ जाते हैं, तो ये बातों में नहीं आना, यही ये कहानी सीख दिलाती है, और सीख दिलाती है तो कुछ कायदे भी बताती है, कुछ कायदे जिंदगी में होने भी चाहिए।
1: कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता।

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।
2: ये सोचा कि कैसे कैसे रोचक रोचक जानवर हमारे अगर चारों तरफ उल्टी दिशा में होते। हाँ, जैसे पक्षी पानी में बहरे होते और मछलियाँ पेड़ों पे बैठी होती। होती है, ऐसा भी होता है, क्योंकि जब प्राकृतिक आश्चर्य हमारे साथ में होते हैं, कुछ एक अजूबे होते हैं। क्यों, रोचक जानकारी के पिटारे में आज ऐसी ही चीज़ें हैं। आपने ग्रैंड कैनियंस का नाम तो सुना होगा, जो USA में है। इसके अंदर जो मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर बहुत से फॉसिल्स पाए जाते हैं। बहुत पुरानी है ये ग्रेट कैनियन, और इसमें कोलोराडो जो रिवर है वो इसके बीच से निकलती है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरी धरती की ज्योग्राफिकल लेयर्स मिल जाएंगी कि कौन से एरा का कौन सा है। जैसे मीज़ोज़ोइक एरा है, पैलियोज़ोइक है, जब डायनासोर्स हुआ करते थे हमारी धरती पर। ऐसे ही है ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में है। इसे कॉरल रीफ भी कहते हैं, और इसे हम जब अंतरिक्ष से देखते हैं ये नज़र भी आती है। ग्रेट कैनियन भी नज़र आती है, ग्रेट बैरियर भी नज़र आती है, इसीलिए इनको ग्रेट ग्रेट नाम बोला जाता है। और आपको पता है ग्रेट बैरियर रीफ में कितनी अच्छी मछलियों की प्रजातियां हैं, बहुत से प्यारे।

एक्वेरियम में जो फिशेज हम देखते हैं वो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और हमारे आसपास का तो आप भूल ही नहीं सकते माउंट एवरेस्ट, क्योंकि ये समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वतमाला में माना जाता है, सबसे ऊंचा पर्वत है। और किसका हिस्सा है? हमारी हिमालयन पर्वतमाला का। ये तो आपको जीके में पढ़ाया जाता है। और साथ ही एक और है एरोरा बोसेंस, एरोरा लाइंस जिसको हम कहते हैं आर्कटिक एंड एंटार्कटिक पे। आपने कलरफुल लाइट्स का एक बैंड देखा होगा जो प्राकृतिक तौर पर रोशनी पैदा करता है, ध्रुवीय क्षेत्रों पे नज़र आता है, लेकिन ये बहुत खास है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक जो फील्ड है वो बहुत एक्टिव होता है, तो वो अलग अलग कलर्स में आएगा। ऐसे ही हार्बर ऑफ रियो डी नाज़ेरियो का जो ब्राज़ील का है, उसमें भी पानी के अंदर ग्रेफाइट के पहाड़ और समुद्र में चारों तरफ से घिरा है, तो एक अलग ही नज़ारा मिलता है। और हाँ, मेक्सिको में जो ज्वालामुखी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो खेत के आकार का है। और साथ ही विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में आपने सुना ही है, जो अफ्रीका का जम्बोजी रिवर के ऊपर बना हुआ है और सबसे बड़े जलप्रपातों में से आता है। एक जलप्रपात और भी है, कौन सा? जब हम रोते हैं और गंगा जमुना बहा लेते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि दिल छोटा सा है लेकिन बहुत सारी आशाएं लेकर है।

ये था कार्यक्रम मुकुल। इसे आज आपके लिए पेश कर रही थी डॉक्टर स्वर्ण रेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं अरिजीत सिंह के स्वर में एयरलिफ्ट फिल्म से।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है? क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
1: पुलिस?
6: मिस सीमा
1: जी,
6: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
6: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
6: 1 लाख दो बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
6: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
7: हेलो मम्मा।
8: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
10: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
9: जी हाँ,

0: अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाश वाणी।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: को हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: वो पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आइए कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है भारत, स्वर अभिजीत श्रीवास्तव का है।

0: चाशनी।
1: आइए अब सुनते हैं बादशाहो फिल्म से ये गीत, स्वर जुबिन नौटियाल और नीति मोहन का है। इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने।
2: रैप वाला रीमिक्स।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।

0: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
0: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। सर,
2: 2 लाख क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
1: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स फिल्म से ये गीत, स्वर अरिजीत सिंह और चिन्मया श्रीप्रदा का था। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है भूल भुलैया, स्वर श्रेया घोषाल का और एमजी श्रीकुमार का है।

लीजिए सुनिए, दे दे प्यार दे फिल्म से ये गीत, स्वर गैरी संधू और नेहा कक्कड़ का है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यही संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मध्याह्न के 11 बजने को है और ये समय है हमारे श्रोताओं के लिए आपकी पसंद फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। लीजिए हमारे इन कड़ी में पहला नाम है नरेंद्र सुराना, कांतिलाल सुराना, शरद सुराना, विमल आभाणी, लालेंद्र, होलेंद्र आचार्य, रौनी जैन और प्रमोद दमानी। ये है हमारे सुराना मोहल्ला बीकानेर से। लीजिए इनकी पसंद का पहला गीत सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में, जिनका साथ दे रहे हैं रूप कुमार राठौड़, और ये गाना आप सुनेंगे फिल्म बॉर्डर से।

Akashvani at 90. आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन

हैं आपकी पसंद। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद, अभयनंद और परमानंद के साथ में हैं पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। इन्होंने लिखा है कि हमारी फरमाइश किसी भी फिल्म के साथ पूरी करने का कष्ट करें। इसके साथ में हैं हमारे साथ में महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। इनकी भी यही फरमाइश है कि प्रिय प्रस्तुतकर्ता जी, सप्रेम नमस्कार, कृपया हमें किसी भी फिल्म का गीत हमें सुना दें। तो इनकी पसंद के लिए हमने गीत निकाला है फिल्म 1942 लव स्टोरी से कविता कृष्णा मूर्ति की आवाज़ में, ये प्यार भरा गीत।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। लीजिए आपकी पसंद में अगला जो हमारे पास है पत्र है, आदर्श नगर मलोट पंजाब से लिखा है राजू शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। इसके साथ में अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह और गगनदीप कौर। इसके अलावा लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश शर्मा। लीजिए इनकी पसंद का एक गीत सुनते हैं जो है यशुदास और लता मंगेशकर की आवाज़ में, ये गीत होगा फिल्म बांवरी से। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

यशुदास और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म बावरी से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। लीजिए रेलवे कॉलोनी भटिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक और शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, उसके साथ में मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, वी पी रंजू, अशोक, सुशील, बीके, कैलाश, अनीता, ममता, मेघा। उसके अलावा लेवई गुलाबदास मानिकपुरी से, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरंगी से भागवत वर्मा। लीजिए इनकी पसंद का अगला गीत सुनिएगा। अमित कुमार और सुमन मुखर्जी की आवाज़ में ये गीत होगा फिल्म त्रिमूर्ति से।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और इसमें आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। दर्जियों की बड़ी गुवाड़ बीकानेर से पीसी टॉक लक्ष्मी सीमा ममता राजीव संजीव जिमी जयराज और रिया टॉक के साथ में है चौपड़ाबाड़ी गंगा शहर बीकानेर से कैलाश चंद्र सोनी उत्तम सोनू मोनू राखी डिम्पल लक्ष्मी और गणेशमल सोनी। लीजिए इनकी पसंद का गीत सुनिएगा मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत होगा फिल्म द बर्निंग ट्रेन से।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं आपकी पसंद फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से ममता पुरी, मेघा, पूजा, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लईसा, रामा, कुणाल निधि, हरीश, सतीश, राकेश, विनोद और डीसी पुरी और अरुण पुरी, नेहा पुरी, एकता, शमी और सुनील, विके पुरी और आर एस पुरी। इसके साथ में सुंदेरखेड़ राजमाता नगर बुल्डाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। लीजिए इनकी पसंद का गीत सुनिएगा। फिल्म यशुदास की आवाज में ये गीत होगा।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। लीजिए छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश के साथ में मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिमलानी, सीमा शाइना विशाल और अनमोल धर्मपाल और रमेश मिगलानी के साथ साथ में हमारे सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। लीजिए इनकी पसंद का अगला गीत सुनिएगा। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में आप ये गीत सुनेंगे फिल्म चमत्कार से।

0: दिखाओ तुम्हें अपनी महबूबा से मिलने खाली हाथ नहीं आते तुम्हें नहीं पता
1: अरे रे रे, आज मैं दिल भूल गया याद रखूंगा ये कल से मैंने इस दिल पे लिख दिया।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल और अभी आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। लीजिए हमारा इस कार्यक्रम का अगला पत्र और अंतिम गीत सुनिएगा। कनेरा मोहला पटियाला से बत्ता परिवार मुकेश नीलम नितिन पलक करण गुट्टू।

0: इस गीत के साथ ही आपकी पसंद फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मध्याह्न के 12 बजने को है। लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 8वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से

0: संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मध्याह्न के 12:05 हुए हैं और ये समय है आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा जानने की। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

संध्या 7 बजे आप सुनिएगा ग्रामीण जगत। ये कार्यक्रम होगा हमारे ग्रामीण श्रोताओं के लिए। आज इसमें चर्चा होगी कृषि में वरदान, हरी खाद, पारंपरिक कला कौशल से आर्थिक लाभ, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उपभोक्ता संरक्षण के साथ में आज आप सुन पाएंगे लोकगीत। इसका प्रसारण किया जाएगा हमारे स्टूडियो से संध्या 7 बजे।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे अलग अलग समय पर 12:40 अभी और 2:30 पर हमारे स्टूडियो से सुनिएगा फिल्म संगीत। 6:05 पर संध्या 6:05 पर प्रसारित होगा फिल्म संगीत कार्यक्रम जिसमें होगा एक ही कलाकार के गीत। रात्रि 8:00 पुनः प्रसारित होगा फिल्म संगीत और रात्रि 9:15 और 9:30 भी आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसका प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे। हमारे युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी, संध्या 5:05 पर हमारे स्टूडियो से। इसमें आज की बात होगी असफलता से सीखे, लघु जानकारी में होगा राष्ट्रमंडल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस

विशेष कार्यक्रम होगा युवा तरंग आकाशवाणी के संग। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में आयोजित आशुभाषण प्रतियोगिता की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा, जिसमें वाचक स्वर होंगे श्री माधव व्यास के, प्रस्तुति होगी श्री रेवंत राम लेघा की और संयोजन होगा श्री अमित सिंह का। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा संध्या 5:05 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार, पश्चात जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होगा हमारे जयपुर केंद्र से।

1:05 पर होगा महिला जगत, जिनकी जिन्हें प्रसारित करेंगी बिंदु शर्मा और उषा सिंघल। इसमें चर्चा होगी राष्ट्रमंडल दिवस, वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान, मारखोड़ दिवस, वन्यजीव संरक्षण और जागरूकता, समाज सेवा में अग्रणी महिलाएं। साथ में होगा प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए। इसके साथ में वार्ता होगी सामाजिक कुरीतियां दूर करने में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार होगी श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव। यह प्रसारित किया जाएगा 1:05 पर। ये थी आज के हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 12:10 होने को है। अब आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम।

साथियों महीने जो अज चौथो आर्तवार आहे ए चौथो आर्तवार थींदो आहे असाजे बुजुर्गन लाए हाँ प्रोग्राम थींदो आहे असा जीवन में छा पातो छा विनायो ए छा विरहायो असाजे वडनन खां बुजुर्गन खां बुजुर्गन जे आजमूंदन के बुधंदा आयु ए हुनन जीवन में छा पातो छा विनायो ए छा विरहायो इन तहत गाल बोल कंदा आयु असा गाल बोल शुरू कयूं इन खां अग साथियों तवां के बुधायां कि अज आहे 24 मई अजो के डी आहे कॉमनवेल्थ डे यानी राष्ट्रमंडल दिवस हर साल 24 मई ते भारत ए घणई देशन में कॉमनवेल्थ डे मल्हायो वेंदो आहे ए डी इंग्लैंड जी महारानी विक्टोरिया जे जन्म डी ते मल्हायो वेंदो आ महारानी जो जन्म 24 मई 1819 ते थियो हो इन ॾींहं ते वैश्विक शांति एकता ऐं सहयोग खे वाधारो ॾियण लाइ घणेई कार्यक्रम आयोजित कया वेंदा आहिनि जीअं घणेई सभाऊं कयूं वेंदियूं आहिनि भाषण ॾिना वेंदा आहिनि ऐं सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजन बि कयो वेंदो आहे गॾो गॾु खेल प्रतियोगिताऊं बि थींदियूं आहिनि इन जे अलावा 24 मई ते अॼु आहे अंतर्राष्ट्रीय मारखोर ॾींहुं मारखोर ॾींहुं यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ऐं दुनिया जी सभ खां जंगली वॾी बकरी जी प्रजाति जी संभाल खे वाधारो ॾियण लाइ हिन ॾींहं खे अंतर्राष्ट्रीय मारखोर ॾींहुं यानी आलमी मारखोर ॾींहुं घोषित कयो वियो हो प्रोग्राम खे अॻियां वधाईंदे अचो शुरूआति कयूं था पाण हिन भॼन सां ॿुधूं था ही भॼनु

0: साथियों अवां हियर बुधी रहा हुआ कौशल्या कृपलानी के साथियों क्या सही चयो आ बिल्कुल की बुजुर्ग असां जे जीवन जो ओ मजबूत वण थिंदा आहिं जें जी छांव में असां पाण के थदो ए सुरक्षित महसूस कंदा आयूं वडा ही बारन जा आदर्श थिंदा आहिं उनन जा आजमूंदा असां के पेंजे जीवन जी सही राह दिखाण में मदद कंदा आहिं इने करे अजकल जी भज डुक वारी जिंदगी में अगर असा कुछ वक्त कढी वडन सा गड व्यू यो असा जे लाए ही फायदेमंद आहे आ उनन सा गड पाण वक्त गुजारे यो जाने सकूं कि हुनन पहेंजे जीवन में छा पातो छा विनायो ए छा विरायो इने ही उनवान सा वाबिस्ता रखंदन अचो बुधू ता हिय गाल बोल दादा कन्हैया लाल मेठवाणी जी सा गाल बोल करे रही आहे सीमा हिरानी असा जीवन में छा पातो छा विनायो ऐं छा विरायो जे तहत अज असा सा गड स्टूडियो में आहिन सामाजिक कार्यकर्ता ऐं नाटककार श्री कन्हैया लाल मेठवानी जी त दादा तुहांजो स्वागत आहे स्टूडियो में
1: नमस्कार
0: त दादा जीअं इहो विषय आहे की असा जीवन में छा पातो छा विनायो ऐं छा विरायो त तव्हां सामाजिक कार्यकर्ता बि रहिया आहियो नाटककार बि आहियो तव्हां LIC सां रिटायर्ड बि आहियो त कीअं तव्हांजी सफ़र जी शुरूआति थी तव्हांजी प्रारंभिक शिक्षा किथे थी तव्हांजे परिवार में केरु केरु आहे तव्हांजो कुटुंब जे बारे में असांजे ॿुधंदड़नि खे ॿुधाईंदा
1: हूअं त मां सिंध जो ॼावल आहियां सिंध में मां 1942 में ॼायोसि मुंहिंजो जनम थियो
0: जी
1: 13 June 1942 में उते जूं त यादगिरियूं कुझु कोन्हनि 5 साल 4.5 साल हिते आयुसि त हिते ज़रूरु असां हिकिड़े नंढे ॻोठ में हुआसीं सांभर लेक में ऐं उहो ज़मानो हो जॾहिं न TV हुई न रेडियो हुआ न मोबाइल हुआ न को कहिड़ो स्टेज हो ऐं ॻोठ में हुआसीं असांजे बाबे जन ॾाढी महिनत कई मुंहिंजे परिवार में सिंध मां आया 3 काका चौथो मुंहिंजो पिता साहिबु ऐं उनजो असीं औलाद हुआसीं पोइ 13 June 1947 में विरहाङो थी वियो अची वियासीं वरी सांभर लेक में सांभर लेक में बि घणी ज़फ़ाकशी कई मुंहिंजे वॾड़नि अटो लटो अझो त खपंदो ई हो उन लाइ ॾाढी महिनत कयूं ऐं हिते सांभर में ई मुंहिंजी प्राइमरी शिक्षा उते ई थी प्राइमरी त छो हाई स्कूल ताईं मां उते पढ़ियुसि उन ज़माने में हाई स्कूल हूंदो हो सीनियर सेकेंडरी वग़ैरह कान हुई पोइ मूंखे जेतिरे क़दुरु थोरो यादि थो अचे त मां शायदि 3 दर्जे में हुउसि त उते स्कूल में हिननि जी मास्तरनि जी इहा हुई त भई पछाड़ी को पीरियड अधु अहिड़ो रखूं जंहिंमें कुझु न कुझु ॿार चवनि चवण जो मतिलबु चुटकुलो चवे कहाणी चवे गीत चवे कुझु न कुझु चवे त मूंखे शौक़ु अची उन मां जाॻियो त जेकर मां बि वञी कुझु चवां स्टेज ते त उन स्कूल जे उन पीरियड में मां गीत हिकिड़ो ॻायो जेको शायदि अॼु ताईं मूंखे यादि रहिजी वियो आहे छो जो पहिरियों ई गीत ॻायो हो
0: त ॿ लाइनूं बिल्कुलु असांखे ॿुधाईंदा
1: मीरा जो नालो तव्हां ॿुधो हूंदो
0: जी
1: मीरा कृष्ण जी दीवानी चवाराईंदी हुई उन ते हिकिड़ो सिंधी गीत को ॿुधलु हो उनजी हिकु लाइन यादि अचे पई

0: आलो ज़हर जो प्यालो उनके उन मुड़स मोकलो त ये दीवानी लगी पई है कृष्ण के पुठियां तेगा मरी वने तो वो उनके भी अमृत समझी पी वही ए भगवान की दया से उनके कुछ भी कोन थो छो कृष्ण जो हथो भगवान जो बस उन टे दर जगह मुख्य ये दिल लगी तो स्टेज ते हुजा ए कुदरत हाई स्कूल में एक ब ड्रामा भी कयासी पर उते छो जो हिंदी हो हिंदी में कंदा हुआसी पर शौक जन जागल हो
1: जी
0: कॉलेज पढ़ने ला मुखे जयपुर अचणो पे सांभर में कॉलेज पढ़ियोसि हिते जयपुर जॾहिं मां त कॉलेज में नाटकनि ॾे मुंहिंजो रुझान थियो मां क्लास में कोशिशि कंदो हुउसि त भई कॾहिं को नाटक कयूं क्लास जे ॿारनि खे जेके मुंहिंजा कॉलेज जा साथी आहे वठी

0: तंहिंखां पोइ तव्हांखे मां पंहिंजी जीवन थो ॿुधायां त हिते जयपुर में हिकु ॿ सोसाइटी सिंधियुनि जी पंहिंजी ठहियल ई नौजवाननि जी मां ॿिन्ही सां जुड़ियुसि मूंखे शौक़ु हो ऐं उहे ॿई साल में ॿ ड्रामा ज़रूरु कंदा हुआ छहें छहें महीने में हिकिड़ो हिंदी वरी छहें महीने में सिंधी पोइ मां ड्रामनि में इंट्रस्टेड हुउसि त ड्रामनि में हिरियुसि ड्रामा कंदो हुउसि डायरेक्ट बि कंदो हुउसि प्रोड्यूस बि कंदो हुउसि ख़ैरु लिखण जी मुंहिंजी ताक़त कान हुई लिखियल ड्रामा ॿियनि जा यानी नंढे हूंदे खां वठी चाह जाॻी पियो जाॻियो इन जे लाइ हो जो मुंहिंजो पीउ नंढे हूंदे मूंखे आङुर खां वठी घुमाईंदो हुओ तॾहिं रेडिया टीवी हूंदा हुआ कोन जो घर में बि हुउमि पोइ किथे बि हलंदा वॾड़ा पाण में सिंध जूं ॻाल्हियूं कंदा हुआ पोइ सिंध जूं ॻाल्हियूं ॿुधी ॿुधी मुंहिंजे दिलि में ज़हन में सिंध सिंध सिंध ॼमी वई वासदेव सिंधु भारती करे तमामु सुठो लेखक ऐं कलाकार हो उहो मूंखे ख़ासि तौर सां ॾाढो पसंदि कंदो हुओ पोइ मुंहिंजो बि नालो रखियईं तूं बि सिंधियत जो शाइक़ु आहीं पोइ मां सिंधी ड्रामनि में वधी वियुसि सिंधी ॿोलीअ लाइ ज़फ़ाकशी कंदो हुउसि कॉलेज पढ़ियुसि कॉलेज पढ़ी निकितुसि मुंहिंजी नौकिरी लॻी वई
1: दादा तव्हांजे कुटुंब परिवार में केरु केरु आहे
0: मुंहिंजे कुटुंब में जॾहिं सिंध मां आयासीं तॾहिं त मां ऐं मुंहिंजी भेण ऐं हिकिड़ो भाउ नंढो हो टे ॼणा हुआसीं ॿिया काकनि जा ॿार हुआ ऐं असां छो जो जॉइंट फैमिली त असीं सभु गॾु चवाराईंदा हुआसीं केरु पुछंदो हो त काकनि जा ॿार मिली करे चवंदा हुआसीं असीं यारहं भाउर आहियूं पंज भेनरूं आहियूं ख़ैर पोइ सभु काका बि धार थी विया असीं धार थियासीं त मूंखे त भेण हिकिड़ी ऐं ॿियो नंढो भाउ हो टे ॼणा हुआसीं कुटुंब में वरी शादियूं मुरादियूं थियूं जीअं असांजो भाउरनि जूं हिते जूं नियाणियूं आहियूं ॼावल बि हिते जूं उहे बि असांजे सिंधी माहौल में रमजी वियूं ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदियूं हुयूं पर पोइ ॿार थिया उहे स्कूलनि में विया त उहे थोरो थोरो सिंधियत खां परे रहण लॻा जेका ॻाल्हि मूंखे न वणंदी त भई हिंदीअ में तो छो चयो तूं थो चई पाणी पीओगे छो चई मुंहिंजे ॿारनि खे चाहे मुंहिंजे भाउ जे ॿारनि खे चाहे मुंहिंजे काके जे ॿारनि खे सभिनी खे मूं सिंधीअ में आंदो मुंहिंजी शादी 1964 में थी आहे अजमेर जी नियाणी हुई इन करे सिंधियत में ई हुई हुन जे घर बि सिंधी ॻाल्हाईंदा ख़ुशी थी ॿार बि मुंहिंजा पंज किका आहिनि हिकु नियाणी आहे छह ई प्योर सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि सभिनी सां
1: माना की तव्हांजो सिंधीअ ऐं सिंधियत सां जुड़ाव ॾाढो आहे
0: तमामु घणो
1: इन करे तव्हां पंहिंजे परिवार खे बि सिंधियत सां जोड़े करे हलिया आहियो हीअ ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे दादा तव्हांजी की तव्हां सिंधियत सां अॼु ताणी बि ओतिरा ई जुड़ियल आहियो
0: हा अॼु ताणी मां जेको कंदो आहियां नाटक सभु सिंधीअ में ई कंदो आहियां ऐं सिंधीअ में ई कोशिशि कंदा आहियूं त छुटियुनि में ॿारनि खे वञी सिंधी सेखारियूं मां त सिखण जो ॾाढो चाह हो त मां सिंधी पंहिंजी हूअ बि सिखी सिंध वारी बि ॿिया उते चवंदा वाणका अखर वाणका माना जेके दुकान ते कमु ईंदा हुआ कागर में उहे बि सिखियुसि त मूंखे ॾाढो इहो चाहो रहियो त मां ॿारनि खे बि सिंधी सेखारियां जीवन में मूं पुटु ॾाढो पातो आहे हूअं पाण लाइ इहा त हिकिड़ो त सिकी लधो पुटु पहिरियों ॼाओसि नवनि भेनरुनि खां पोइ त ॾाढो सिक पिया टिनी काकनि जो मूंखे मिलंदो हुओ पीउ माउ जो मिलियो त सभिनी जो प्यारो थी रहियुसि वरी हिते जयपुर कॉलेज में आयुसि कॉलेज में बि इहे नाटक कयुमि वरी सिंधियुनि सां जुड़ी सिंधी नाटक कयुमि ऐं तव्हांजे हिन रेडियो स्टेशन ते मां शायदि पंजवंजाह साल पुराणो अप्रूव्ड आर्टिस्ट आहियां ड्रामे जो सिंधी नाटक मूं घणेई कया घणेई कोन थो सघां मुंहिंजे ज़िंदगीअ में शायदि स्टेज जा 100 खां मथे कया हूंदा ऐं हिते बि मूं जेके से 50 खनि कया हूंदा त हिते हिकिड़ो सूरदास हूंदो हो तमामु मशहूरु हो तव्हां शायदि नंढा आहियो न ॿुधो हुजे वीरबान जेसवाणी करे ऐं भॻवानु सूरदासनि खे ॾिनो आहे आवाज़ जी ताक़त ॾाढी सुठी हूंदी हुअसि पोइ मूंखे बि शौक़ु हो त मां हुन सां हिरियुसि पोइ मां हुनखे हिते हुते वठी प्रोग्रामनि में वेंदो हुउसि ऐं साईं हुन जो नालो अहिड़ो कयो जो पूरो हिंदुस्तान घुमियासीं मां हुन जे करे घुमियुसि हू चवंदो आहे न मां तुंहिंजे करे घुमियो आहियां यानी हिकु ॿिए जा गुरू ठही वियासीं ॾाढी ख़ुशी थी हुन सां निभाईंदे मूंखे पछाड़ीअ भॻवान सभु कुझु कयो हुन जे लाइ ॾाढो सुठो नालो कमाई रेडियो स्टेशन ते भई ॿियनि हंधि बि ईअं सम्झो हिंदुस्तान जी मूंखे यादि नथो अचे त कहिड़ी कुंड असां छॾी हूंदी
1: दादा ही त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे की तव्हां जेको चाहियो उहो तव्हांखे मिलियो तव्हां ॾाढो कुझु पातो बि की सिंधियत सां जुड़ियल आहे ऐं सिंधियत खे विरिहाईंदा बि रहिया जीअं जीवन हलंदो आहे त कोई न कोई मलाल रहे

0: जी वेंदो आहे त दादा तव्हां छा विञायो आहियो तव्हांखे कहिड़ो मलाल आहे की तव्हां हीउ न करे सघिया
1: सही ॻाल्हि आहे ज़िंदगीअ में जेकर कुझु पाइबो त विञाइणो त पवंदो ई
0: जी
1: इहा हक़ीक़त आहे त राति जे पुठियां सुबुह ईंदो आहे सुबुह जे पुठियां राति हूंदी ई आहे सो जॾहिं समाजिक कार्यकर्ता समाज में मां रहियुसि त उन में घणनि माण्हुनि लांछन बि ॾाढा आहियां पर मां लांछननि खे दरकिनार करे छो करणो आहे कमु साईंअ जो साईं ॾिसे पियो असांखे हिननि माण्हुनि सां मतिलबु कोन्हे ईअं करे हलंदा रहियासीं ईअं करे मूं 15-16 साल सुठा कढिया ऐं ॾाढी इज़त मिली ऐं वीरभान सां बि गॾु जेको इंडिया घुमियुसि मां चवंदो ज़िंदगी वॾे में वॾो घाटो मूंखे इहो पियो आहे त उहो गुज़ारे वियो त मां अकेलो थी वियो आहियां हक़ीक़त में साथ सही आहे न साथ खां सवाइ केरु पुछे
0: जी बिल्कुलु
1: त तव्हांखे इहो पियो चयमि त मां गीत संगीत में बि ॾाढो इंट्रस्टेड हुउसि ॻाईंदो बि हुउसि शौक़ु हूंदो हो त मां हारमोनियम पाण वॼायां
0: जी
1: ॾाढी कोशिशि कयमि पर कुझु नौकिरीअ जो वक़्तु कोन कढी सघियुसि कुझु घर जे कमकारनि में कोन कढी सघियुसि छो घर जो वॾो हुउसि त ज़िमेदारियूं घणियूं हुयूं
0: जी जी
1: त उहो मूंखे अॼु ताईं मलाल आहे हिन उमिरि में जॾहिं 83 साल जो पूरो थी आहियां 84 में थो हलां त मलाल एॾो आहे त मां हारमोनियम न सिखी सघियो आहियां ज़िंदगीअ में जॾहिं मूं जेको चाहियो उहो सिखियुसि मां पे
0: जी त दादा जीवन जी सफलता आहे हुन में की असां छा विरहाए पिया वञूं त बिल्कुलु दादा मां तव्हांखां बि इहो ॼाणणु चाहींदसि असांजा ॿुधंदड़ बि इहो ॼाणणु चाहींदा की तव्हां छा विरहाए रहिया आहियो
1: सही ॻाल्हि आहे पुटु जेको पातो सो विरहाइणु घुरिजे
0: जी
1: न त त पाण वटि पियो पियो सड़ी वेंदो ऐं वरी पाण सां ई गॾु हलियो वेंदो त मां पंहिंजे तरफ़ां कोशिशि कई त मां सिंधी ॿारनि खे सेखारियां सिंधियत ॾांहुं लाड़ो सभिनी जो कयां स्कूलनि में मीटिंगुनि में किथे बि पंचायत जी मीटिंगुनि में मां सिंधियत जे लाइ ॾाढी कोशिशि कंदो रहियो आहियां पोइ छुटीअ में असां नाटक जा शिविर हणंदा हुआसीं अची ॿार सिखनि सिंधी नाटक हिंदी कोन सेखारींदासीं असीं सिंधी सेखारियूं ऐं उन सिंधी बि पढ़ायूं कोशिशि कंदा रहंदा आहियूं गीत ॻाईंदो आहियां त उन्हनि मां हिकु हिकु तुक उन्हनि खे ॿुधाए बि हिकिड़े खां चइबो आहे न उत्साहित करणु कंदो आहियां त भई सिंधियत में का कमी कान्हे मां पंहिंजे तरफ़ां इहो ॾाढो ॾिनो त हिकिड़ो त सिंधियत ॾे लाड़ो
0: जी
1: ॿियो समाज जी सेवा
0: जी जी
1: पाड़े वारनि जी मदद खां सवाइ पूरे शहर जी बि मदद असांखे यादि आहे वेलफेयर सोसाइटी जो जॾहिं कमु कंदा हुआसीं किथे किथे एरियानि में ग़रीबनि वटि जांच ते वेंदा हुआसीं जांच करे पोइ ॾींदासीं छो जो एप्लीकेशन अची वेंदियूं 1000 असां माल हूंदो 100 माण्हुनि जो त 100 ॻोल्हणा पवंदा जेको अॼु ताईं हिते जयपुर में क़ाइमु आहे ऐं अॼु बि हिन उमिरि में बि सिंधी नाटक कयां पियो वरी कुदरती साईंअ मूंखे बख़्शो दुबई वियुसि त दुबईअ बि मां नाटक करे आयो आहियां मेन जेके मुंहिंजे डायरेक्शन में थिया ऐं नालो जिन में वधीक रहियो अॼु ताईं यादि पिया कनि हिकिड़ी मिठड़ी सिंध ॿुधायो मां मूंखे सिंध सां सिंधियत सां सिंधी ॿोलीअ सां प्यारु त मुंहिंजे नाटकनि जो नालो मां मिठड़ी सिंध रखंदो आहियां मिठड़ी सिंध में ॾोहीड़ा जंहिंखे चवंदा आहियूं सिंधीअ में असीं ॾोहीड़ा हिंदीअ में चवंदा आहियूं शेरो शाइरी पर असां ॾोहीड़ा मूं पंहिंजे तरफ़ां भरिया जेके पब्लिक खे ॾाढा वणिया त उहा अॼु ताईं पब्लिक चवंदी आहे हुन सां गॾु ईअं सम्झो त ज़िंदगीअ में शायदि पहिरियों दफ़ो थियो हुजे एट अञा मां नंढड़ी आहियां नंढड़ी नंढड़ी नंढड़ी आहियां वॾी बि नेठ त थींदसि माइट मुंहिंजो मङणो कराईंदा जवान जॾहिं मां थींदसि त उहो आहे मास्टर चंद्र जो गीत ॾाढो सुठो सिंध खां वठी ॾाढो मशहूरु आहे असां हुन ते पहिरियों दफ़ो हिते नाटक कयो कए त थी आहे 40 सालनि खां मथे थियो हूंदो त हिते महेश चंद्र मास्टर चंद्र जो पुटु हिते हो असांजे प्रोग्राम में हुन ॾिठो उहो ई वाइड़ो थियो त उहो नाटक थियो मिठड़ी सिंध नाटक थियो ॿियो कंवरराम ते मूं कयो कंवरराम ते बेले बेले चवंदा आहियूं जंहिंमें गीत हुजनि डांसूं हुजनि ऐं नाटक हुजे
0: जी बिल्कुलु
1: त उहो बि मूं बेले कयो बेले में गीत हुआ 4-5 कंवरराम जा ॻाया वियासीं ऐं मेन हिकिड़ो वीरभान जेको मुंहिंजो हुनजो ठहियल हो बेस हुनखे रखियोसीं पोइ हुन में हू जुड़ंदा विया 4-5 गीत उहो बि ॾाढो सुठो रहियो असां घटि में घटि 10 शो हुन जा करे चुकासीं हिकिड़ी लाइन थो चई ॿुधायांव सिंध जे चेट में खेतनि जहिड़ी सूंहं न मिलंदई जानी सिंध जे चेट में खेतनि जहिड़ी सूंहं न मिलंदई जानी भले ई घुमी ॾिसु किथे न मिलंदई सिंध जहिड़ी महिमानी असां सिंधियुनि महिमान नवाज़ीअ में ॾाढा मशहूरु आहे त सिंध अॼु ताईं मशहूरु आहे कुझु यादगार

0: मतिलबु अहिड़ा आहिनि जेके अॼु ताईं मूंखे छाप छापे ॾे वेठा आहिनि।
1: त दादा तव्हां हीअ जेके नाटक कंदा आहियो हिननि में सिंधियुनि जो रुझान केतिरो हूंदो आहे?
0: पुट असांजे जयपुर में नाटकनि जो त हाउसफुल वेंदो हुओ सिंधियुनि जो।
1: जी जी।
0: हिकिड़ो उहो ज़मानो हुओ जॾहिं टिकेट एड कंदा हुआसीं ऐं ब्लैक ते टिकेटूं वेंदियूं, एॾी भीड़ हूंदी। पर पोइ थोरो थोरो घटिजंदो वियो जीअं नई टही आई। नई टही जो रुझान फिल्मनि में एॾां घणो वियो, टीवीअ में घणो वियो। भॻवान मूंखे आसीस कई त मूं जॾहिं बि इहे शो कया, चाहे हींअर बि कया आहिनि ॿ टे महीना पहिरीं, त हाउसफुल ई वियो आहे, माण्हू उतां फोन बि ईंदा आहिनि।
1: दादा जीअं तव्हां चयो पिया तव्हां नाटक कंदा रहिया आहियूं, पहिरीं त ॾाढियूं टिकटूं ब्लैक में बि वेंदियूं, तव्हांजे हिसाब सां मां ॼाणणु चाहींदसि की अॼु जी टहीअ खे असां कीअं जोड़ूं की उहो सिंधियत सां जुड़ी रहे ऐं सिंधियत खे अॻियां वधाईंदी रहे।
0: जीअं मूं तव्हांखे चयो, मां आशावादी आहियां। तव्हां हाणे ॾिसो चेटीचंड जो जॾहिं मेलो थो निकिरे, जलूस थो निकिरे, त उन नौजवान ॾाढा था नचनि कुॾनि ॻाइनि।
1: बिल्कुलु
0: अचनि था, पहिरीं कोन ईंदा हुआ, हाणे अचनि था। नाटक हिकिड़ो अहिड़ो क्षेत्र आहे जंहिंखे जे वधायूं पाण, चाहे रेडियो जे रस्ते, टीवीअ जे रस्ते, चाहे स्टेज जे रस्ते, त ॾाढो फ़ाइदो पए थो इन में। हाणे या नई टई जुड़णु शुरू थी वई आहे त हाणे मिड़ई धीरे धीरे जाॻेनि पियो, जे कोशिशि कयूं नाटक ईअं ॾेखारणु। त बराबरि महिनत त आहे नाटकनि में, पर असांजा ॿार वापसि जुड़ी सघनि था।
1: जुड़ी सघनि था, हीअ त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे की नाटक जे ज़रिए, गीत संगीत जे ज़रिए असां पंहिंजी नई टहीअ खे वापसि सिंधियत सां जोड़े सघूं था। दादा तव्हां रिटायर आहियो, त तव्हां पंहिंजे रिटायरमेंट खे कीअं एन्जॉय करे रहिया आहियो?
0: मुंहिंजी जॾहिं सर्विस जो रिटायरमेंट थियो त प्री रिटायरमेंट ट्रेनिंग ॾिनी वई असांखे।
1: अच्छा, प्री रिटायरमेंट ट्रेनिंग बि थींदी आहे?
0: असां पाण वाइड़ा थियासीं प्री रिटायर। मुंहिंजी 40 साल में ट्रेनिंग कॾहिं कान आयो, लास्ट में आयो जे भई तुंहिंजी रिटायरमेंट आहे 10 महीननि खां पोइ।
1: अच्छा,
0: ट्रेनिंग अथई।
1: अच्छा अच्छा।
0: त उते ट्रेनिंग ते वियुसि त असांखे जेको इंस्ट्रक्टर हो उन इहो ई पिए ॿुधायो त भई वांदा थी न वेहिजो, न त ॿुढापो जल्द ईंदव। त पे ॿुधाई भई घर जा कम कयो, बिजलियूं ठाहिण सिखो, नाला ठाहिण सिखो, या इहे नंढा वॾा कम कंदा कयो, घर में न वेहिजो। त हिते मूं हुनखे चयो, साईं मुंहिंजो त पहिरीं फील्ड ठहियलु आहे, अॼु ताईं आहे, जो मिलंदो आहियां नए माण्हू सां, चवंदा आहिनि भई छा आहे तुंहिंजी उमिरि, त मां चवंदो आहियां आई एम 23 इयर्स यंग मैन। हल्के में वरी चइजो आफ्टर रिटायरमेंट, चई कीअं, छो जो 60 साल मूं ॾिना सर्विस में, उन खां पोइ मुंहिंजी ॿी लाइफ शुरू थी आहे, त मां ॿीअ लाइफ जो 23 साल ॿुधायां थो। ऐं अॼु मां एक्टिव आहियां, अॼु बि गीत ॻायां पियो, अॼु बि मेलनि मलाखड़नि में बहिरो वठां पियो जिथे किथे। ईअं सम्झो त जयपुर में त ख़ासि तौर सां को अहिड़ो मेलो मलाखड़ो कोन हूंदो जिथे सिंधियत जो हुजे ऐं ही शख़्स न हुजे।
1: सच में हिकु आशावादी ॻाल्हियूं जेके चइबी आहिनि उहे ई आहिनि की असांखे बि सिखण लाइ इहो मिले थो की उमिरि जे हिकु पड़ाव खे अगरि असां ख़तमु करूं था त ॿियो पड़ाव चालू थो थिए, त उन सां गॾु गॾु असांजी ॿी ज़िमेदारियूं बि चालू थी थी वञनि ऐं असांजो कमु बि ॿियो नओं थो चालू थिए। त अगरि असां नओं कमु करूं था त हिकु जोश जेको अंदरि में रहे थो उहो असांखे जवान थो रखे।
0: छो वॾनि चयो आहे न, आत्मा अमर आहे, उहा न को ॿुढी थींदी आहे न को जवान थींदी आहे। त आत्मा खे जेको सम्झी थो हले त हा भई मां अञा ताईं हीअं आहियां, करे सघां थो। मां अॼु बि हिकिड़ो नाटक वरी पियो तयारु कयां मिठड़ी सिंध जे नाले सां, उहो कयां पियो, पर कयां नए नमूने सां, जेको पहिरीं कयल आहे उनखे नए नमूने सां करण जी कोशिशि कयां पियो, उहा लिखां पियो। जेके चवंदा आहियूं ॾोहीड़ा, असीं सिंधीअ में चवंदा आहियूं ॾोहीड़ा विधाम।
1: त दादा तव्हांखे यादि आहिनि कुझु ॿुधाईंदा असांखे?
0: हिकिड़ो ॾोहीड़ो तमामु सुठो अॼु ताईं दिलि ते, दिलियुनि तां दिलियुनि खे धिकारे न सघबो, दिलियुनि तां दिलियुनि खे धिकारे न सघबो, वतन मूर पंहिंजो विसारे न सघबो।
1: ॾाढो बढ़िया।
0: पखियुनि खे बि घुरिजे थो पंहिंजो आखेरो, पखियुनि खे बि घुरिजे थो पंहिंजो आखेरो, सॼी उमिरि त धिकनि में घारे न सघबो।
1: ॾाढो ॾाढो सुठो।
0: अहिड़ो ई हिकिड़ो ॿियो हो ॾोहीड़ो उन में ई, कल्ह सिंधू दरिया जी छोलीअ में, कल्ह सिंधू दरिया जी छोलीअ में हिकु गुल ॿिए गुल खां धार थियो, कल्ह सिंधू दरिया जी छोलीअ में हिकु गुल ॿिए गुल खां धार थियो, जॾहिं लेटिया पेटिया लहरुनि ते त हिकु सुहिणी हिकु मेहार थियो, हिकु सुहिणी हिकु मेहार।
1: ॾाढो सुठो दादा, तव्हां ॾाढी सुठे नमूने पेश कई असांजी सिंधियत खे ऐं सिंधियत सां गॾु तव्हांजो एॾो लाॻापो ॾिसी असांजे अंदरि जेका किरण जाॻी वई आहे की न, असांजी सिंधियत कॾहिं बि मरी नथी सघे, नई टई ज़रूरु हुन सां जुड़ी रहनि।

0: अभी आप हमारे जयपुर केंद्र से सुन रहे थे
1: मीडियम
0: कार्यक्रम सिंधी कार्यक्रम। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मध्याह्न के 12:40 हुए हैं और ये समय है हमारे श्रोताओं के लिए फिल्म संगीत का। लीजिए फिल्म संगीत में पहला गीत सुनिएगा। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत होगा फिल्म हीरा पन्ना से।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में मोहम्मद रफी साहब की आवाज में अगला गीत सुनिएगा फिल्म ही रांझा से।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

फिल्म हाथीनताई से अभी आप ये गीत सुन रहे थे अनुराधा पौड़वाल और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अगला गीत सुनिएगा लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म लैला मजनू से।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मध्याह्न के एक बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा हिंदी में, जयपुर केंद्र से सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे आमेर महल का भ्रमण करेंगे। श्री रूबियो के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस हाई प्रोफाइल यात्रा को भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक, कूटनीति और रणनीतिक संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन के भारत प्रवास पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई इस चर्चा में पश्चिम एशिया संकट से उपजे मौजूदा हालात और रक्षा सहयोग पर चर्चा की गई। इसके बाद डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और इसके सार्थक परिणामों की उम्मीद है। केंद्र सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को मजबूत करने के लिए जांच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों में GATC वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच भी शामिल है। इस पहल का उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भीलवाड़ा में हमीरगढ़ हवाई पट्टी का जायजा लिया। श्री मेघवाल ने भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल और जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू से जिले के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान सांसद अग्रवाल की ओर से भीलवाड़ा जिले से व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने की मांग रखी गई। उन्होंने कहा कि इससे वस्त्र उद्योग को संबल मिलेगा। श्री मेघवाल ने इस प्रस्ताव को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। प्रदेश में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में 2 अहम बदलाव किए गए हैं। इसके तहत रत्नाभूषण उत्पाद से जुड़े उद्यमों के विस्तार पर भी मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। साथ ही निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन भी हो सकेगा। उद्योग विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म इकाइयों को 20 लाख रुपए और लघु श्रेणी की इकाइयों को 15 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान मिल सकेगा। वहीं निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल की धूम आज प्रदेश भर में देखी गई। विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों, खिलाड़ियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने उत्साह के साथ इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर जयपुर के SMS स्टेडियम के चारों ओर साइकिल रैली रखी गई। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के

0: जागरूक करने के लिए ये आयोजन हुआ। हनुमानगढ़, जैसलमेर, कोटपुतली बहरोड, सलुम्बर, बालोतरा, झुंझुनू और पाली में भी साइकिल रैली के जरिए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। कई जगह योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम को भी इससे जोड़कर योगाभ्यास, जुम्बा, रोप स्केपिंग सहित अन्य गतिविधियां हुई। आईपीएल क्रिकेट के लीग चरण का आज आखिरी दिन है। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच प्लेऑफ के लिए मुकाबला देखने को मिलेगा। आज खेले जाने वाले पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमों के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टक्कर होगी। वहीं दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। दिल्ली और मुंबई पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। राज्य का ज्यादातर हिस्सा प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट बताया है। इस बीच राजधानी जयपुर, अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर सहित कई जिलों में कल शाम आंधी बारिश का दौर चला। हालांकि लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत नहीं मिल सकी। उधर पश्चिमी राजस्थान में लू के प्रकोप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। करीब 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं कल से नौतपे की शुरुआत हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस दौरान गर्मी बढ़ने और तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मध्याह्न के 1:05 हुए हैं और ये समय है हमारे महिला श्रोताओं के लिए उनके कार्यक्रम महिला जगत का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही हैं बिंदु शर्मा और उषा सिंघल।

0: कार्यक्रम सुन रही सभी सखियों को प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करेंगे बहनों कुछ पंक्तियों के साथ। हताशा से वह महिला बैठ गई थी, निराशा से वह महिला बैठ गई थी। उस महिला को मैं नहीं जानती थी, हताशा को जानती थी, निराशा को जानती थी। इसलिए मैं उस महिला के पास गई, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ी हो गई। मुझे वह नहीं जानती थी लेकिन मेरे हाथ बढ़ाने को जानती थी। हम दोनों साथ साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे बहनों लेकिन साथ चलने को जानते थे।
1: सखियों, ऐसा ही कुछ रिश्ता हमारा और आपका भी है। हम और आप शायद कभी आपस में नहीं मिले लेकिन साथ चलने को जानते हैं, तभी तो रोज एक पांच पर हम भी आ जाते हैं और आप भी अपना रेडियो सेट या मोबाइल जो भी है आप खोलकर बैठ जाते हैं साथ चलने के लिए।
0: बिल्कुल सही कहा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सफर जिसमें आपके साथ चलने के लिए हैं आपकी दो सखियां, मैं उषा सिंगल
1: और मैं बिंदु शर्मा।
0: पुनः पुनः
1: नमस्कार
0: बहनों। यही सच है कि जब दो महिलाएं एक दूसरे के विचारों को समझती हैं तब चाहे घर की चार दीवारी हो या दफ्तर की जिम्मेदारी, वे दोनों केवल सहकर्मी नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत बन जाती हैं।
1: इस
0: सहेलीपन पर आप भी कुछ कहना चाह रही हैं जैसा आपने मुझे पहले बताया था।
1: बिल्कुल कहना चाहूंगी, स्त्रियां जब एक दूसरे से मिलती हैं तो वो सिर्फ दुख नहीं बांटती, वे बांटती है बची हुई रोटियां, थोड़ी सी सपने और एक खिड़की जहां से आसमान थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है।
0: वाह क्या बात कही है बिंदु। जी हाँ बहनों, जब हम साथ चलते हैं तो एक

दूसरे के लिए उस खिड़की का काम करती हैं जहां से उम्मीदें बड़ी दिखने लगती हैं। आज इस साथ चलने में इस कार्यक्रम के जरिए आपकी ज़िंदगी के सफ़र को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जानते, साथ चलने को जानते हैं और इसी साथ चलने के वादे को लिए चलते हैं।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: बिंदु, अभी मेरी जिस सखी से मैंने तुम्हें स्टूडियो के बाहर मिलवाया था ना,
1: कौन वो जिसका तुमने स्वाति नाम बताया था?
0: हाँ हाँ, वही जानती हो बिंदु, वो मेरे बचपन के स्कूल के समय की दोस्त है।
1: अरे वाह, स्कूल के समय का तो कोई दोस्त मिल जाए और बचपन की वो याद ही ताजा हो जाए, फिर तो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिंदु। और ना पता है मुझे भी है ना, उसके साथ जो एक घटना हुई थी वो मुझे आज भी गुदगुदाती है। मैं तुम्हें सुनाऊं वो घटना?
1: बिल्कुल सुनाओ।
0: क्योंकि है ना, उसके मिलने के बाद से ही ना मुझे खुद पे हंसी ही आई जा रही है। ऐसा था
1: बात जब याद आ गई।
0: हाँ बिल्कुल, जब है ना हम क्लास में बैठे थे तो मैं थी, स्वाति थी और हम तीन चार दोस्त और थे, है ना। तो हम बचपन में जैसे चिड़िया उड़ वाला खेल खेलते थे।
1: हम भी खेलते थे।
0: हाँ, वो पीरियड खाली था, मैडम अभी आए नहीं थे, तो हम वो गेम खेलने लगे। गेम खेलते खेलते यूं ही दिमाग में आया, स्वाति ने कहा कि भाई ये चिड़िया उड़ तो हम बहुत बार उड़ा लेते हैं, अब है ना आवाजें निकालते हैं और पता लगाते हैं कि कौन किसकी आवाज बोल रहा है ना। तो एक ने बोला भों भों करके बोला, तो उसने बोला कि ये तो कुत्ते की आवाज है ना। और इसी तरह से एक ने गुटरगु करके बोला, एक ने काम काम करके बोला, है ना।
1: तो एक बार मुझे भी याद आई मेरी एक बात।
0: अच्छा,
1: मैं अगर होती उस जगह, हम भी अक्सर खेलते थे, मेरे हिस्से में एक ही चीज आती थी, मोर की आवाज।
0: अच्छा,
1: तो मैं और लोग सुनने के लिए आते रहते थे, अक्सर ऐसा बोला करती,
0: मतलब बिल्कुल ओरिजिनल आवाज आपने मोर की निकाली है। और बिंदु पता है मैंने क्या किया था? मैंने भी कहा कि अरे भाई तुम लोग तो केवल आवाजों का प्रकार बता रहे हो, देखो मैं जो आवाज निकालती हूँ ना उससे तुम गैस करो कि किसकी आवाज है,
1: बताओ है ना।
0: हाँ, तो मैंने उनके सामने बोला मैं। जब मैंने ये आवाज निकाली ना, तो मजे की बात ये थी कि पास में से प्रिंसिपल मैडम गुजर रही थी, तो उन्होंने देखा कि
1: फिर क्या डर के
0: फिर जो डर लगा ना मैडम को देखते ही, वो डर आज भी मुझे याद आता है, मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। और वो मैडम एंटर हो गई क्लास में और फिर कहती है ये तुम क्या कर रही थी अभी, पहले थोड़ा गुस्से में बोली। और मैं घबराई घबराई सी, मैडम हम लोग गेम खेल रहे थे, मैंने यूं घबराते घबराते बोला। फिर मैडम ने कहा कि ये ना वापिस से

0: बोलो तुम क्या बोली थी अभी, तो मैंने फिर से जब आवाज निकाली
1: बोलो दोबारा बोलो
0: तो मैंने उनके सामने फिर से बोला मैं, लेकिन इस बार ना
1: वो आवाज नहीं निकली डर के मारे,
0: लेकिन आवाज डर के मारे वो नहीं निकल पाई। और तब है ना, यकीन नहीं करोगी कि प्रिंसिपल मैडम भी खुद भी जोर जोर से हंसने लगी
1: अब खौफ गायब था।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो घटना है ना ये आज तक भी रोमांचित कर देती है, वो डर भी याद आता है मैडम से डरने वाला, और वो मैडम के हंसने पर जो खुद को रिलैक्स फील हुआ था वो भी याद
1: आता। चलो, बकरी एक सीधा सीधा प्राणी है ना, बहुत सीधा आपकी तरह उषा है ना, और इसे लोग पालते भी हैं, दूध के लिए भी पालते हैं। और ऐसे एक पक्षी ये पशु जो होता है वो शायद ये बकरी जैसा जंगली भी होता है ना।
0: हाँ बिल्कुल, बिंदु बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको रनिंग डेयरी भी बोलते हैं और मिल्क ATM भी होते हैं, है ना। और ये जो पशु होता है ना वो दो तरह का होता है, जंगली भी होता है और
1: अच्छा हाँ मैंने भी शायद पढ़ा था इसको कहीं कि एक जंगली भी होता है जिसके शायद सींग ऐसे कुछ अलग से होते हैं।
0: उसके सींग घुमावदार होते हैं, उसको राजसी बकरी भी कहा जाता है, मारखोर अच्छा। भी कहा जाता है। अच्छा, और अच्छा। जानती हो बिंदु, इसकी प्रजाति आजकल दुर्लभ हो गई है, अतः इसके संरक्षण के लिए आज के दिन को यानी 24 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस भी घोषित किया गया है। देखिए ना बात चली है तो कहां से कहां पहुंच गई है बकरी की आवाज से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात पर एक बात बताना चाहूंगी कि जंगली जो बकरी होती है इसे सींग तो घुमावदार होते ही हैं, राजसी बकरी का आपने ऐसा बता दिया। इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए अपनी बहनों से बताना चाहूंगी कि 1972 से पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु जो है घोषित किया गया था इसको। अच्छा। और फारसी भाषा में इसे मारखोर अर्थात घुंघराले जो बाल होते हैं, इसलिए इसे घुमावदार सिंगों वाली होने की वजह से इसका नाम मारखोर भी रखा गया है।
0: अच्छा,
1: ना?
0: तो ये विशेष नाम इसी वजह से रखा गया है ना। आज मारखोर दिवस मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है बहनों, वो विश्व की सबसे बड़ी जंगली बकरी मारखोर, इसके संरक्षण और पारिस्थितिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और आप बिंदु जानती हैं कि 2026 की इसकी मुख्य थीम क्या है? इसकी मुख्य थीम है मारखोर और पर्वतीय जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और सतत विकास के लिए वैश्विक प्रयासों को मजबूत करना,
1: तो,
0: है ना। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे जो धरातल पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु पक्षी प्राणी जितने भी हैं, उनकी सुरक्षा करना हम सबका बहुत
1: नैतिक दायित्व है। तो चलिए एक और प्यारे से गीत की ओर।
0: बिल्कुल।

0: संभालती है, साथ में पूरे देश के उच्च पदों पर आसित भी हैं, उसे भी संभालती हैं। पर एक क्षेत्र है जिस पर अभी भी हमें काम करना है, जिसे कहते हैं सामाजिक कुरीतियाँ, जिसे दूर किए बिना हम पूर्ण विकसित नहीं हो सकते। तो आज का हमारा यही विषय है, हम आपके लिए लाए हैं वार्ता। वार्ता का विषय है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में महिलाओं की भूमिका, और वार्ताकार है कल्पना श्रीवास्तव। तो आइए सखियों, सुनते हैं वार्ता।
1: सामाजिक कुरीतियों के निवारण में महिलाओं का योगदान। हमारे समाज में महिलाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम भूमिका, चाहे वो माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू, सास एवं अन्य कोई भी हो, उन सबको निभाने में निपुण होते हैं के बाद भी उनकी योग्यता कम मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में नारी का दर्जा बहुत ऊंचा है, परंतु जैसे जैसे हम वैदिक काल में मध्य और आधुनिक काल की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे भारत में निम्न होती महिलाओं की स्थिति को देखते हैं। सरकार द्वारा जागरूकता फैलाने वाले कई कार्यक्रम चलाने के बावजूद महिला की जिंदगी पुरुष की जिंदगी से ज्यादा जटिल होती है। इन सभी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते महिलाओं में समाज में फैली कुरूतियों से लड़ने की हिम्मत जागृत हुई। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न थी। परंपराओं और मान्यताओं के चलते महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। महिलाएं इन कुरूतियों, मान्यताओं और अंधविश्वासों को मानने के लिए बाध्य थीं। इन मान्यताओं में प्रमुख थी बाल विवाह, जौहर, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, पति की मृत्यु के बाद सिर मुंडवाना, साध्वी वाला जीवन व्यतीत करना तथा अनेक कष्ट सहना इत्यादि। उस समय निम्न महिलाओं के कार्य भी उल्लेखनीय है, जिसमें पंडित रामाबाई सरस्वती, सरला देवी चौधरानी, मुक्ताबाई एवं ताराबाई शिंदे, सरोजिनी नायडू आदि महिलाओं के नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपना भरपूर सहयोग समाज में फैली हुई कुरूतियों को दूर करने में दिया। पुणे से पंडित रामाबाई ने मुंबई महाप्रांत के विभिन्न शहरों में अनेक महिला संस्थानों की स्थापना की। इन्होंने महिलाओं के लिए, युवा विधवा स्त्रियों के लिए रोजगार और शिक्षा की दृष्टि से शारदा सदन की शुरुआत की। सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल की शुरुआत की। मुक्ताबाई और ताराबाई शिंदे ने निम्न जाति की महिलाओं के लिए शिक्षा संबंधी सुधार प्रस्तुत की। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पद संभाला। उन्होंने सुधारों के खिलाफत का मुद्दा उठाकर कूर रोलेक्ट एक्ट एवं सत्याग्रह पर अभियान चलाए। भारत की कई बुद्धिजीवी मेघावी महिलाओं ने बड़े बड़े समाज सुधारकों और आम जनता के साथ मिलकर महिलाओं के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही स्थानीय महिलाओं के साथ शिक्षा, जीवकोपार्जन, नीति निर्माण पर जोर दिया। इन महिलाओं के अतिरिक्त विदेशी मूल की महिलाओं में जैसे एनी बेसेंट और सिस्टर निवेदिता ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं ने गांव के स्तर पर महिला आत्मरक्षा समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा महिलाओं के साथ हो रही हिंसा, मारपीट का विरोध किया जा सके और पितृसत्ता समाज के चुनौती दी जा सके। इसके बाद तेलंगाना आंदोलन में भी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सक्रिय रहीं। मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन में भी महिलाओं ने भाग लिया और वह थाली वेलन लेकर सड़कों पर उतरी। पीटी उषा, जो कि भारत की स्टार एथलीट है, उड़ान परी के मशहूर नाम से जानी जाती है, यह राज्यसभा की सदस्य भी रही है। इन्होंने भारतीय महिलाओं को खेल जगत में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यह महिलाओं के लिए प्रेरणा स्वरूप है और पीटी उषा आज केरल में अपना एक एथलीट स्कूल चलाती हैं। डॉक्टर किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, साथ ही वह सामाजिक कार्यकर्ता, भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी एवं राजनेता हैं, साथ ही एक महान लेखक भी हैं। वर्तमान में पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं। 1979 में इन्होंने राष्ट्रपति का पुलिस पदक जीता। इन्होंने पश्चिम दिल्ली में कार्य करते हुए महिलाओं की काफी सहायता करी तथा महिलाओं के साथ होने वाले अनेक प्रकार के अपराधों में कमी लाई तथा इन्होंने डीएसपी के रूप में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक अभियान चलाया, जो कि नवज्योति दिल्ली पुलिस फाउंडेशन में विकसित हुआ। सावित्रीबाई फुले पहली स्त्री शिक्षिका थीं, जिन्होंने बालिकाओं को शिक्षा के लिए कई कार्य किए। इन्होंने स्त्री शिक्षा को मजबूत किया और पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला। वह एक दृढ़ संकल्पी शिक्षिका के साथ साथ समाज सुधारक भी थीं और व्यक्तिगत स्तर पर कावियत्री भी। इन्होंने पुणे में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी खोला। वह शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के विकास की समर्थन भी रही। इतना ही नहीं, इन्होंने यौन शोषण के गर्भवती होने वाली बाल विधवाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए प्रसूति गृह खोला, जिसका नाम बाल हत्या प्रतिबंधक गृह से रखा गया। इंदिरा गांधी, यह भी भारत की एक जानी मानी पहली प्रधानमंत्री थी। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। इसी प्रकार कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया था। इससे कृष्णा पूनिया राजस्थान में विधायक और पूर्व ओलंपियन रही हैं। वे

0: एक अच्छी राजनीतिक भी हैं। इन्होंने राजनीतिक महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और ये हमारे देश में इतनी महिलाओं के योगदान के बाद भी कई प्रकार की कुरीतियां रह कम हुई हैं, पर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई हैं। आज भी समाज में हरेक हिस्से पर साफ साफ दिखती है कि दहेज, बाल प्रथा, बाल विवाह, बालिकाओं का शोषण होता हुआ, इन सबको समाप्त करने के लिए कई प्रकार के कानून भी बनाए गए हैं। आज भी हमारे देश में दहेज प्रथा में बखूबी जड़ जमा रखी है। इस प्रथा के कुपरिणाम स्वरूप कई बहुएं दहेज की बलि देवी पर चढ़ जाती हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कठोर कानून ही ना बनाए जाएं, बल्कि इन्हें लागू भी किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार के कार्य करने वाले को दंडित किया जा सके। इसे रोकने के लिए स्वयं लड़कियों और महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। बाल विवाह जैसी भयंकर कुरीति भी है, जो कि अब शहर में तो कम हो गई लेकिन गाँव में आज भी जीवित है। इसमें भी एक दंडीय अपराध है और आज गाँवों में और कई जातियों में बाल विवाह को प्रथा प्रचलित है। इसे रोकने के लिए भी महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और लड़कियों को भी इसमें इसके विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त और भी सामाजिक कुरीतियां जैसे मृत्यु भोज, कन्या भ्रूण हत्या, प्रदा प्रथा जैसी रूढ़ियां आज भी हमारे समाज में काले धब्बे की तरह हैं। इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए हम महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा। अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो हम दूसरों की सोच नहीं बदल पाएंगे और इनका स्वाभिमान हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। साथ ही महिलाओं को भी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए, ताकि अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों जैसे घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा, भ्रूण हत्या और अन्य सामाजिक कुरीतियों को सहन ना करें, बल्कि एकजुट होकर उनके विरुद्ध आवाज उठाएं। भारत में लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं। आज भी महिलाओं में शिक्षा की कमी है। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस संदर्भ में कई महिला संगठन गांव जा जाकर लड़कियों की शिक्षा पर जोर देते हैं और उन्हें बताते हैं कि प्रत्येक महिला का अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करे। विद्रम यंग के द्वारा एक प्रसिद्ध कहावत है कि अगर आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक आदमी को ही शिक्षित कर रहे हैं, पर अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप आने वाली पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। इस प्रकार समाज के विकास के लिए लड़कियों को शिक्षित होना जरूरी है और इसमें महिलाएं यानी कि समाज सेवी संगठन, आंगनबाड़ी आदि संस्थाओं का भी योगदान है। समाज में फैली कई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए हैं। इस संबंध में महिलाओं और उनके संगठन गाँव जा जाकर महिलाओं को इस कानूनों की अहमियत समझाते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के द्वारा गाँव की महिलाओं को जागरूक करती हैं, जिससे कि महिला साक्षरता के प्रतिशत बढ़ सके। इसके अतिरिक्त महिलाएं तथा महिला समाज सेवी संस्थाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अन्य कुरीतियां जैसे कि दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या आदि के बारे में गाँव जा जाकर सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम और उन्हें रोकने के लिए बनाए गए कानून के बारे में भी बताती हैं, जैसे कि कई जिलों में डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में महिला सरपंच खुले में शौच मुक्त जिला बनाने में प्रयासरत हैं। इसके अतिरिक्त महिलाएं की मांग पर ही कई जगह शराबबंदी कानून लागू हुआ, जिसकी वजह से महिलाओं पर हो रही हिंसाएं कम हुई। इसके साथ हम महिलाओं द्वारा अपने साथ हो रहे अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसके फलस्वरूप एक अभियान चलाया दुष्कर्म के विरुद्ध फोरम से लेकर महिला दमन विरोधी फोरम तक में विभिन्न मुद्दों को उठाया, जैसे कि यौन उत्पीड़न, दहेज संबंधी हिंसा एवं भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा आदि कई समस्याओं का भी निदान किया जाता है। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों स्तरों पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कई संगठन बनाए, जैसे कि महिला स्वयंसेवी समूह, महिला विकास अध्ययन केंद्र, भारतीय महिला सम्मेलन की अनेक शाखाएं, महिला राष्ट्रीय आयोग जो कि समय समय पर महिलाओं की समस्या का समाधान करती हैं। इसके अतिरिक्त और भी समस्याओं के महिला ने आवाज उठाई, जैसे शाहबानो केस की तरह ही शायर ने कहा कि 3 बार तलाक कहकर रिश्ता तोड़ देना गैर संवैधानिक है और इस पर मुझे न्याय मिला और अब सरकार इस पर रोक लगा दी गई है। अंत में मैं यही कहूंगी कि जिस प्रकार इन महिलाओं ने हम सबके लिए योगदान दिया है, उसी प्रकार हम सबको भी इन बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर आगे आना चाहिए। साथ ही हमें दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, अंधविश्वास जैसी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। इन सब कुरीतियों को दूर करने के 3 उपाय हैं, शिक्षा, जागरूकता और स्वावलंबन। महिलाएं स्वयं इतनी आत्मनिर्भर बन जाए कि उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़े। महिलाओं को स्वयं सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बचाव बनाने के लिए सशक्त होना पड़ेगा। वित्तीय स्वतंत्रता एक महिला को दृढ़ बनाती है। आर्थिक रूप से सशक्त महिला सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक कवच है। आज भी हमारे समाज में, खासकर गाँव में, कई तरह की कुरीतियां फैली हुई है। इनको हम महिलाएं ही दूर कर सकती है और ये तब संभव है जब देश की प्रत्येक महिला शिक्षित हो और उसे कानून की जानकारी हो तथा अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने की क्षमता रखती हो।
1: सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में महिलाओं की भूमिका। बहनों, अभी आपने इस विषय पर वार्ता सुनी। वार्ताकार थी श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुरीति से

0: जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे अम्ब विमल मति दे।
1: बिंदु जी क्या कहना चाह रही हैं आप?
0: मैं माँ शारदा से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे देश को पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बना दो, ऐसी मेरी ताकत बुद्धि और बल दो।
1: शायद आप और आप जैसे और हमारे देशवासी जो हैं वो ऐसी प्रार्थना करते हैं, इसी वजह से पूरे देशवासी जो हैं वो इसी ओर बढ़ रहे हैं। और आज तो विशेष रूप से
0: आज क्या है ऐसा खास?
1: आज है राष्ट्रमंडल दिवस, क्योंकि आज है 24 मई, आज पूरा देश मना रहा है राष्ट्रमंडल दिवस। रही बात की वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान की बात, तो आपको ध्यान होगा अभी मंगल अभियान की जो बात थी हाल ही में हुई है, है ना? कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे भारत देश ने हासिल की है।
0: मैं तो देख देख के झूम झूम रही थी पूरा, मतलब मस्ती, बहुत अच्छा लगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और कोरोना में भी तो विश्व में ने भारत का लोहा माना था।
0: हाँ, वो सब तो पता है, पर सखियों के साथ भविष्य की राह को साझा करना चाहती हूँ।
1: तो अब पता चला, तो मैं भी तो जानूं कि क्या क्या है आपके पास।
0: भारत एक शक्ति नहीं, वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। चारों ओर उसी का सम्मान, शक्ति का गुणगान हो रहा है। ऐसे में हम सब मिलकर अपने वतन की ताकत बने, ऐसी मेरी सोच है। सखियों, मैं निवेदन भी है मेरा, और थोड़ा सा इसको अगर जान लेते हैं पूर्ण रूप से, कि भारत जो है राष्ट्र मंडल दिवस के रूप में जब हम इसको मनाते हैं, वैश्विक स्तर पर भारत की जो पहचान है वो एक नए उभरते हुए भारत, विकसित भारत की ओर जाते हुए हैं। ऐसे में हम सबको सबसे पहले जो बात आती है फिटनेस और खेल की, तो भारत राष्ट्रमंडल खेलों में प्रमुख शक्ति है। राष्ट्रमंडल खेलों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ में वैश्विक नेतृत्व के रूप में भी भारत का आप भुला नहीं सकती। राष्ट्रमंडल भारत को एक अग्रणी शक्ति के रूप में विश्वसनीयता प्रदर्शित करने के लिए एक स्वाभाविक मंच भी प्रदान करता है ना?
0: हाँ, ये तो ठीक है आपकी बात, पर है ना, एक तो यही ये बात राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में हमने बात की, पर देश के अंदर ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं उषा जी, कि जो मतलब हर व्यक्ति के उत्थान की हो, विकास की हो, है ना? तो ये तो हुई हमारी पहचान बाहरी रूप से, है ना, पर अंदर भी तो हम विकसित होना चाहते हैं।
1: बिल्कुल, अगर हमारे देश का हर नागरिक जो है वो उसका कल्याण हो, इसके लिए सरकार द्वारा अलग अलग योजनाएं भी तो बनाई जाती हैं।
0: हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ। प्रधानमंत्री जी ने 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यक के लिए दिए हैं, उसमें से हमारा देश एक जो लोक कल्याणकारी देश है, सदैव जन कल्याण हेतु योजनाएं बनती रहती है, ऐसी योजनाएं बनती तो रहती है, पर उसको क्रियान्वयन करने की जो सारी व्यवस्था है वो सरकार द्वारा और भी ज्यादा की जाती है। परंतु उषा जी, क्या है कि इसके साथ साथ हमारे देश के विविध रंग रूप जाति समुदाय के लोग भी रहते हैं, कुछ तो विकसित हैं, कुछ विकासशील हैं, तो कुछ जो है सरकार की योजनाएं जो हैं उसको विकसित करती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिंदु जी, आपका इशारा मैं ठीक से समझ गई हूँ कि आप प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय जो कार्यक्रम है, जो विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए है, उनके लिए आप बात कर रहे हैं, है ना?
0: हाँ।
1: देखिए बहनों, सरकार योजना तो आती है, पर अगर हमें उसका बोध नहीं, हमें उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, तो फिर योजना सफल नहीं हो पाती।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी बहनों को इसकी जानकारी दें। तो सखियो सुनिए, मैं योजना जो बनी है उसके बारे में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो है, इसमें से मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध, पारसी, जैन शामिल है। इसका उद्देश्य उनको आर्थिक और सामाजिक विकास से है, जिसमें शिक्षा प्रथम है। शिक्षा के अवसर को बढ़ावा देना, छात्रवृत्ति देना, मदरसों का आधुनिकीकरण करना, ये सब भी शामिल है। और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में अगर हम बातचीत करें तो ऋण की सहायता देना, कौशल विकास, आप देख रहे हैं कहीं बहुत जगह लग रहे हैं इसके कैंप वगैरह,
1: इन सब गतिविधियों की वजह से निश्चित तौर पर उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए आवास और बुनियादी ढांचे में भी उनको सहायता दी जाती है। सांप्रदायिक सद्भावना

0: करना, हिंसा की रोकथाम, दंगा पीड़ितों की सहायता, ये सब भी शामिल है, है ना।
1: और इसके साथ साथ जैसे पेयजल आपूर्ति, पोषण, आयुष्मान जैसे उसमें दवाइयों वगैरह की जो सुविधाएं हैं वो भी इसमें शामिल है, ताकि हम देश का बाह्य विकास की भी हमने बात की अभी राष्ट्रमंडल में, और उसके बाद बात की हमने प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम में, तो उसमें भी ये शामिल है। भारत जैसी योजनाओं को इसमें जो सफलता मिलती है वो इसी वजह से मिलती है कि हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं, हमारी बहनें इसको सुनती है और इसका पूरा पूरा फायदा उठाती हैं, और उठाना भी चाहिए क्योंकि बनाई इसीलिए, तभी तो हमारा देश खुद सामर्थ्यवान बनेगा, हमारी बहनें सामर्थ्यवान रहेगी, शक्तिशाली होगी, खुश रहेगी, मस्त रहेगी, नाचेगी, गाएगी, झूमेगी और मुस्कुराएगी।
0: लेकिन इसके साथ साथ आप इस चीज़ को नहीं भुला सकती कि हमारे देश की जो सीमा है उसकी सुरक्षा के लिए जो हमारे सैनिक तैनात हैं उनका वंदन करना हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं भूल सकते, उन्हीं के बारे में।
1: तो हम कैलाश खेर जी को बुला लेते हैं।
0: बिल्कुल सही है।
2: नमस्कार, मैं हूँ कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारम्बार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: बिंदु जी, कार्यक्रम की शुरुआत से ही हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ देने की, और बहनों जब बात हमने साथ की है तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके दिए साथ ने कईयों की जिंदगी संवार दी।
9: बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बात कर रहे हैं उनके बारे में जो मरुस्थल में खिले गुलाब की तरह है, जो दीपक हैं जिन्हें खुद जलकर समाज के अंधेरों को दूर किया है, यानी समाज सेवा करने वाले लोगों के बारे में, और कार्यक्रम में महिला जगत में जो हमारी बहनें हैं विशेष रूप से उन महिलाओं के बारे में बात करेंगे जो समाज सेवा में अग्रणी हैं।
8: बिल्कुल बिंदु जी, दुष्यंत कुमार जी ने कहा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चाहे हम मदर टेरेसा की बात करें या सिंधुताई सपकाल की जिन्हें अनाथ बच्चों की माँ कहा जाता है, या सावित्री बाई फूले की जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए उस दौर से संघर्ष किया जब समाज स्त्री शिक्षा के खिलाफ था।
9: बिल्कुल सही कहा आपने।
8: और बिंदु जी, पर्यावरण संरक्षण करने वाली वृक्ष माता साशालू मारदा थिमक्का, यदि हम इनकी बात करें, या इंफोसिस फाउंडेशन के जरिए ग्रामीण विकास और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रही सुधा मूर्ति जी की, जो सेवा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कर अपनी पूर्णतया निभाती हैं, है ना?
9: बिल्कुल, महादेव जी वर्मा ने भी लिखा है ना, शलभम में तू दीपक।
8: शलभ में तू दीपक,
9: वाह क्या बात है ना।
8: तो जलने में ही मेरा जीवन, मिटने में ही मेरा अमृतत्व।
9: समाज सेविकाएं भी इसी तरह खुद को समाज के हित में समर्पित कर देती हैं ना।
8: बिल्कुल सही है। और महिला जगत कार्यक्रम के माध्यम से हम उन सभी महिलाओं को, जो चाहे नामचीन हैं या गुमनाम हैं, ऐसी सभी समाज सेविकाओं को नमन करते हैं जो बिना किसी प्रचार या वाहवाही के चुपचाप इस दुनिया को और बेहतर बनाने में जुटी हुई हैं।
9: जी, विजय के बारे में बोलकर यही कहना चाहते हैं कि आप भी अपने स्व पर, जो किसी भूखे को खाना खिलाना हो, किसी को साक्षर बनाना हो या पर्यावरण की रक्षा करना हो, समाज सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। बस जरूरत है एक कोशिश की। कहा भी गया है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
8: तो समाज में जो महिलाएं इस तरह की भूमिका निभा रही हैं उनके विषय पर हमने अभी बातचीत की। बहनों चलिए अब चलते हैं।

0: stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Debangshu Panda secures massive lead in West Bengal's Folta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast in a railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
1: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा।

रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करसियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी H90 मैराथन का आयोजन किया। करसियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये

0: सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @iirnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में

0: लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये समय है हमारे श्रोताओं के लिए फिल्म संगीत का। लीजिए, फिल्म संगीत की इस कड़ी में पहला गीत सुनिएगा। उदित नारायण की आवाज में अभी आप ये गीत सुनेंगे। इनके साथ में है आदित्य नारायण और ये गीत आप सुन रहे हैं अकेले हम अकेले तुम फिल्म से।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा फिल्म आईना से। इनमें आवाज होगी लता मंगेशकर जी की, उनका साथ दे रहे हैं दिलीप सेन और समीर सेन।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म हीना से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगली आवाज़ सुनिएगा पंकज उधास की, और ये गीत है फिल्म संगीत से।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म हवस से। इस गीत के साथ ही आज की हमारी पहली सभा यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। मध्याह्न के 3 बजे हैं, आज की हमारी पहली सभा यहीं संपन्न होती है। शाम को 5 बजे हम फिर से पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को हैं, हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। दूसरी सभा में लीजिए सबसे पहले सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापार समझौता वार्ता को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार में इसके विस्तार का

0: स्वागत किया और कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ऊर्जा आपूर्ति विविधता महत्वपूर्ण है। ईरान संघर्ष पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के हित ये सुनिश्चित करने में है कि वैश्विक ऊर्जा मूल्य निचले स्तर पर बने और व्यापार निर्बाध हो।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इससे पहले बातचीत के शुरुआत में डॉ. जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक स्तर पर भागीदारी का उल्लेख किया। श्री रूबियो 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के मतों की गिनती के 20वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। मतगणना डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में चल रही है। भाजपा के देवांशु पांडा ताजा समाचार मिलने तक 104,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे स्थान पर हैं। तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथे स्थान पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में शुल्क खाते में लौटा दी जाएगी। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है, जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब हमारे युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे, युववाणी।

कर रहा था, दो कदम बिल्कुल सही चले और तीसरे पर धड़ाम। हम सब तुरंत उसे देखकर घबरा गए, लेकिन वो ज़मीन पर बैठा दो सेकंड उसी जगह को घूरता रहा और फिर हमारी तरफ देखा और खुद ही उठकर दोबारा चलने लगा। उसने ये नहीं सोचा कि उससे चला नहीं जाता या मैं फेल हो गया, बस ये समझा कि यहाँ पर पैर फिसला था। बस वही देखकर लगा कि कैसे बच्चा गिरता है और आगे बढ़ जाता है और हम गिरते हैं तो वहीं रुक जाते हैं। आप खुद ही सोचिए कैसे कुछ गलत होते ही हमारा दिमाग तुरंत एक फिल्म जैसी चला देता है। रिजल्ट खराब आया, मैं तो शुरू से ही वीक था। इंटरव्यू नहीं निकला, मुझसे कुछ नहीं होगा। कोई इंसान दूर चला गया, शायद मैं ही लायक नहीं हूँ। एक ऐसी बात और दिमाग के अंदर का पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक ही बदल जाता है स्लो और सैड में। और मज़ेदार बात पता है क्या है, यही इंसान जब अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और दोस्त बोलता है कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया, तो तुरंत इसी का जवाब आता है कि अरे अगली बार से ठीक हो जाएगा, अगली बार फिर दे देना। लेकिन अपनी बात आती है तो खुद को दोषी मानता है। दोस्तों, स्कूल में मेरी टीचर कहा करती थी कि फेलियर या असफलता ये नहीं दिखाता कि आप बेकार हैं, वो बस ये बताती है कि ये तरीका काम नहीं आया या ये समय सही नहीं था या फिर रास्ते को थोड़ा बदलना पड़ेगा। लेकिन हम सीधे खुद को ही गलत ठहरा देते हैं। ये ऐसा है जैसे मोबाइल हैंग होने पर रीसेट का ऑप्शन भूलकर पूरा फ़ोन ही फेंक दें। और एक और फ़र्क देखिए, जब बच्चा गिरता है तो आसपास के लोग, कोई कहता है तुमसे होगा ही नहीं, उल्टा सब ताली बजाते हैं। कोई ऐसा नहीं कहता कि तुमसे नहीं होगा, सब यही बोलते हैं कि अरे देखो उड़ गया। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने लिए वो तालियां बजाना बंद कर देते हैं, यानी कि खुद को एनकरेज करना बंद कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस चला गया। कॉन्फिडेंस नहीं गया, हमने उसे डरा कर भगा दिया। अगर आज आपको लग रहा है कि आप पीछे रह गए हैं, कन्फ्यूज हैं या लाइफ थोड़ी सी ऑफ ट्रैक चल रही है, तो रिलैक्स, हो सकता है कि अभी आप सीखने के रास्ते पर हैं। बस इतना सा फ़र्क है कि वो रास्ता थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, जिसके कारण थोड़े से कदम लड़खड़ा जाते हैं और गिरना प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन रुक जाना चॉइस है। तो फेलियर से डरिए नहीं, उससे सीखिए और दोबारा कोशिश करिए। और अब जब इतना सोच लिया, गिर भी गए और सीख भी लिया, तो अब मन बोल रहा है कि चलो थोड़ा उड़ भी लिया जाए, क्योंकि मनवा लाइक्स टू फ्लाई। One more time.

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी, आपके और मेरी तरह युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम। आज आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी साथी प्रियंका सोनी। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा भतीजा है, अभी बोलना ठीक से नहीं सीखा है, लेकिन गिरना उसे बहुत अच्छे से आता है। कल वो चलने की कोशिश

0: अब वक्त है दोस्तों आपके पसंदीदा सेगमेंट यानी कि क्विज टाइम का, जहां रोज हम आपसे पूछते हैं जीके, साइंस और करंट अफेयर से जुड़े दो प्रश्न। आज के आपका पहला प्रश्न है, वर्ष 2026 में भारत का कौन सा राज्य डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। आपका दूसरा प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का SI मात्रक क्या है। तो ये थे दोस्तों आज के दोनों प्रश्न, इनके जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। अब रुकते हैं कुछ संदेश के लिए।
1: हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
3: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
2: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो।
6: क्या हाल है, क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन,
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
7: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
8: RBI कहता है,
9: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
11: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
10: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
11: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
10: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास, आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
11: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
10: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
11: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
10: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
11: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज, जन जन तक।
0: चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के एक खास कार्यक्रम युवा तरंग आकाशवाणी के संग में, जहां आप सुनेंगे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में आयोजित आशु भाषण प्रतियोगिता की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। इसमें वाचक स्वर हैं श्री माधव व्यास के, प्रस्तुति है श्री रेवंत राम लेघा की, संयोजन है श्री अमित सिंह का। चलिए सुनते हैं दोस्तों कार्यक्रम युवा तरंग आकाशवाणी के संग।
12: दोस्तों, कहते हैं हर आवाज़ में एक कहानी होती है, लेकिन कुछ आवाज़ें सिर्फ कहानी नहीं कहती, वो बताती है ऐसे तरीके जिनसे नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया जा सकता है। वो बताती है ऐसे तरीके जिससे इस देश की नींव को और ज़्यादा सुदृढ़, मजबूत और खूबसूरत बनाया जा सकता है। और ऐसी ही एक आवाज़ की स्थापना हुई 8 जून 1936 को, जिसने कभी क्रिकेट मैच के स्कोर से इस पूरे देश को अवगत करवाया, तो कभी कोविड जैसी महामारी के बीच लोगों को घर बैठे जागरूकता के संदेश पहुंचाने का काम किया, तो कभी बिना का गीत माला से सबका दिल जीता, तो कभी अलग अलग प्रोग्राम से सबके मन को रिझाया। और आकाशवाणी का ये सिलसिला आगामी 8 जून 2026 को अपने 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है, और इसी ऐतिहासिक विरासत को आपकी युवा सोच से जोड़ने के लिए आकाशवाणी आपके इस प्रांगण राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर के इस प्रांगण में आयोजित करने जा रहा है एक बेहद ही खास कार्यक्रम युवा तरंग आकाशवाणी के संग। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की जा रही है एक बेहद खास प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता। क्योंकि मौका बहुत खास है और खास मौके के मेहमान भी खास होते हैं, मैं आप सबकी तालियों के बीच स्वागत करना चाहूँगा राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर की ओर से विद्यालय के डीन डॉक्टर BN श्रृंगी सर का, साथ साथ सहायक आचार्य डॉक्टर प्रतिष्ठा शर्मा मैम का, साथ साथ डॉक्टर अशोक गौर सर।

0: का भी। इसके साथ साथ इस खास मौके पर ये ऐतिहासिक विरासत जिसको आगे बढ़ाने का काम आकाशवाणी की ओर से बीकानेर में जो कर रहे हैं वो शख्सियती भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैं स्वागत करना चाहूँगा आकाशवाणी बीकानेर से सहायक निदेशक श्रीमती मीनाक्षी मलिक मैम, कार्यक्रम अधिशासी श्रीमती बरखा थानवी व्यास मैम और रेवंत रामजी लेघा सर का। इसके साथ साथ कार्यक्रम सचिव मनोज कुमार सर और टेक टीम की ओर से पुरुषोत्तम जी व विजय दीप जी सर का भी मैं आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे हर प्रतियोगिता के कुछ नियम होते हैं वैसे ही इस खास प्रतियोगिता के भी कुछ नियम है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हर प्रतिभागी को अपनी बात रखने के लिए दिए जाएंगे पूरे 120 सेकंड, यानी कि पूरे 2 मिनट, और समय पूरा होते ही आपको एक धुन सुनाई देगी जो इस बात का इंडिकेशन होगी कि आपको अपनी बात को एक निर्णायक या उद्देश्यात्मक मोड़ देकर के पूरा करना है। तो आइए अब बिना किसी देरी के और इंतज़ार को ख़त्म करते हुए आप सबकी ज़ोरदार तालियां और भगवान श्री गणेश के चरणों में हमारी तालियों से प्रणाम को अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और इसलिए मैं पहले कंटेस्टेंट यानी कि पहले प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगा, रुद्राक्षी राठौड़।
1: मैं रुद्राक्षी राठौड़ BVSC एवं AH की तृतीय वर्ष की छात्रा आज आकाशवाणी के इस गरिमामय मंच से एक अत्यंत रोचक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सोशल मीडिया बनाम रेडियो, असली हम सफ़र कौन। समय के साथ साथ संचार के साधन बदलते गए। आज हम जीवन के एक ऐसे दौर में हैं जहाँ सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी मिला के रख दिया है। हर पल नई सूचना, नई जानकारी, नया वीडियो हमारे सामने होता है। सोशल मीडिया हमें जोड़ता है, अभिव्यक्ति देता है और आधुनिक युग के जीवन की गति को भी बढ़ाता है। लेकिन इसी तेज़ रफ्तार के कारण आज कहीं ना कहीं हम अपनापन खोते जा रहे हैं। हजारों लोगों से जुड़े होने के बावजूद भी हम अपने ही लोगों से दूर होते जा रहे हैं। लाइक्स और कमेंट्स की भीड़ में भावनाओं की सच्चाई कहीं खो सी रही है। सोशल मीडिया हमें सूचना, पहचान, अवसर जरूर देता है, परंतु इसी के साथ साथ तनाव, तुलना और अकेलापन भी देता है। वहीं दूसरी ओर है रेडियो, सच्चाई, सादगी, विश्वास का माध्यम, विशेष रूप से आकाशवाणी, जिसने पीढ़ियों से बिना चेहरा दिखाए कई आवाज़ों से अपने लोगों के हृदय को जोड़ा है। एक वह भी समय था जब रेडियो हमारे जीवन का सबसे प्रिय साथी हुआ करता था। सुबह की शुरुआत, सूचना, गीत, मनोरंजन, किसान कार्यक्रम इत्यादि, रेडियो हर घर की धड़कन हुआ करता था। बिना इंटरनेट, बिना स्क्रीन, रेडियो केवल आवाज़ के माध्यम से ही परिवार के सभी सदस्य, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करने की ताकत रखता है। रेडियो और सोशल मीडिया में से बेहतर कौन, सवाल यह नहीं, सवाल यह है कि असली हमसफर कौन। सोशल मीडिया हमें दुनिया से जोड़ रहा है, परंतु रेडियो हमारे मन को शांत करता है। सोशल मीडिया ट्रेंड बनाता है, वहीं रेडियो रिश्ते बनाता है। धन्यवाद।
0: बहुत अच्छे। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, नवीन कुमार जी को।
2: नमस्कार मेरे आकाशवाणी के सभी प्यारे श्रोतागणों, मैं नवीन कुमार BVSC एवं AH तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं आज यहाँ पर किसी विषय के बारे में नहीं बोलने आया हूँ, बल्कि मैं उन आँखों के बारे में बोलने आया हूँ जिनमें पीड़ा तो है पर सब नहीं है। मैं बताने आया हूँ मूक पशुओं की आवाज़, पशु चिकित्सक के बारे में। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था कि सभ्यता की असली पहचान इससे नहीं होती कि वहाँ नगर कितने विशाल हैं, सभ्यता की पहचान इससे होती है कि वहाँ निरीह, निर्बल, पीड़ित वर्ग, गरीब वर्ग और मूक प्राणियों के प्रति कितनी करुणा शेष है। साथियों, जब मैं सड़क पर निकलता हूँ तो मैं एक घायल गाय को दर से कहराते हुए देखता हूँ। जब मैं बेजुबान पक्षियों को पीड़ा और बीमारियों से तड़पता हुआ देखता हूँ। जब कोई पशु अपने घाव को चाटते हुए तड़पता है तब ये समाज के लोग उसी को देखते हुए नज़र फेर लेते हैं। लेकिन वहाँ केवल एक शख्स रुकता है, वो रुकता है पशु चिकित्सक, क्योंकि पशुओं का आशा का अंतिम दीपक होता है वह पशु चिकित्सक होता है। उसे केवल वह घाव नहीं दिखता है, उसे एक असहाय जीवन दिखता है। उसे दिखता है कि जीवन का अधिकार, उसे दिखता है पशु के जीवन में अपना जीवन। साथियों, जब आप आज के इस युग में आप सोचते होंगे कि पशु चिकित्सक केवल एक औषधि देता है और एक चिकित्सक होता है, पशु चिकित्सक केवल चिकित्सा नहीं देता है, वह आज के इस आधुनिक युग में जो संवेदना, जो मानवता मर रही है लोगों के

0: अंदर उस मानवता को जगाता है, उसको वापस जोड़ता है और उसको पूरी तरह बनाता है। एक कहावत है हमारे समाज में, जाके पैर न फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। ये सही बात है कि जिन लोगों ने कभी पीड़ा देखी ही नहीं वो क्या जान सकते हैं पशुओं की पीड़ा की कीमत को। जिन लोगों ने ये कभी देखा ही नहीं, पशु चिकित्सक है वो जो बोल नहीं सकते, वो कभी अपने हंसते हैं अपने अपनी बात को बोल बता सकते हैं लेकिन वो कभी बता नहीं सकते। अपन को उनको अगर समझना होगा, उनकी बातों को जानना होगा तो केवल एक साधन है, वह है संवेदना। और अंतिम में एक मैं आकाशवाणी के प्यारे श्रोतागणों से भी एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस तपती दोपहर की गर्मी में आप सभी पशु पक्षियों बेजुबानों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें, और जो भी कोई घायल पशु पक्षी है उसको अपने पास के किसी पशु चिकित्सा में लेके आए, हम पशु चिकित्सक उनकी सहायता करेंगे। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया। एनिमल वेल्थ वास्तव में एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेल्थ है और उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आप सबकी तालियों के बीच बुलाना चाहूँगा हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट को।
2: सुप्रभात, मेरा नाम चेल्सी चौहान है, मैं BBSC in एज तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज का मेरा विषय है मेरा मोबाइल बंद है। आज मैं सुबह देर से उठी क्योंकि मेरा मोबाइल बंद था। हम अपनी हर छोटी से छोटी दिन की ज़रूरतों के लिए फ़ोन पर निर्भर हो चुके हैं, चाहे वह सुबह का अलार्म हो या रात को सोते समय देर तक करने वाली स्क्रॉलिंग। बिना मोबाइल के जीवन ऐसे था मानो अचानक ऑनलाइन से ऑफलाइन हो चुका हो। लेकिन जो मैंने आज अनुभव किया वह कुछ अलग था। बिना स्क्रीन के भी दुनिया इतनी सुंदर दिखाई दी। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि फ़ोन हमारा कुछ काम कर रहा है, लेकिन असल में हम फ़ोन पर निर्भर हो रहे हैं। हमें फ़ोन के लिए नहीं लेकिन फ़ोन हमारे लिए काम करना चाहिए। असली सुकून नोटिफिकेशन में नहीं है बल्कि जो आसपास छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हमारे सामने उसमें हैं, जैसे कि दादाजी के रेडियो से आते वह पुराने गानों की धुन, घर वालों की बातें, वह हंसी ठिठोलों के पल, खिड़की के बाहर चलती वह ठंडी ठंडी हवा, मेरे कमरे में पड़ी वह किताबें जिन्हें मुझे कब से पढ़ने की इच्छा थी, और वह अधूरा चित्र। एक दिन जो मुझे अक्सर छोटा लगता है आज मोबाइल के बिना बहुत लंबा लग रहा था। आज मेरे पास सबके लिए समय था और सबसे ज़रूरी मेरे खुद के लिए। मुझे एहसास हुआ कि मोबाइल हमें दुनिया से तो जोड़ता है लेकिन खुद से दूर कर देता है। मोबाइल को कभी कभी बंद रखना बुरा नहीं है क्योंकि इंसान खुद से नहीं इंटरनेट से जुड़ रहा है, और इंसान को खुद से जुड़ने की ज़रूरत है। थैंक यू।
1: इन्होंने जो बोला वो बहुत अच्छा बोला। मैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाना चाहूँगा।
3: सुप्रभात, मैं श्रेया सिंह, चतुर्थ वर्ग BBSC MA की छात्रा, आपके समक्ष आज मेरे विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाम मानव संवेदनाएं। वर्तमान युग तकनीक का युग है, परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम तकनीक के पीछे भागते भागते हमारी भावनाओं को पीछे छोड़ रहे हैं। मशीनें सीखने लगी है, सोचने लगी है और निर्णय भी लेने लगी है कुछ हद तक। क्या मशीनें इस हद तक निर्णय ले सकती है कि इंसान से ज़्यादा महसूस कर पाए? यह मैं एक उदाहरण से बताना चाहूँगी। मान लीजिए एक मरीज चिकित्सक के पास गया, तुरंत ही उसकी रिपोर्ट आ जाती है उसकी दवा और उसकी बीमारी की, परंतु एक चिकित्सक ही मरीज का हाथ पकड़ के उसको दिलासा दे सकता है, उसे बोल सकता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह अंतर शब्द का नहीं भावनाओं का है। यही मानसिक विचार, यही मानसिक जरूरत ही एक चिकित्सक दे सकता है। यदि मैं एक पशुपालन पशु चिकित्सक के पास लेके जाए, वह जानवर का बर्ताव देख के या उसके हाल भाव देख के ही बीमारी का उपचार कर सकता है। हर विद्यार्थी भिन्न प्रकार का होता है, किसी विद्यार्थी को धैर्य की जरूरत होती है तो किसी को प्रोत्साहन ही। एक अच्छा शिक्षक ही अच्छे से अपने विद्यार्थी को समझ सकता है। वो कहते हैं ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जवाब दे सकती है परंतु जज्बात मनुष्य के पास होते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, करुणा मानसवे भूषणम। धन्यवाद।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने जो बताया वो बहुत जरूरी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते खतरों को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बीच में एक डिवाइडेशन रख पाएं AI के बीच में और आपकी असल ज़िंदगी के बीच में भी। मैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाना चाहूँगा, परुषा अधिवरी।
4: सुप्रभात, आज मैं परांशा, 20वीं

0: एवा मेच की चतुर्थ वर्ष की छात्रा, आप सबसे एक पशु चिकित्सक के सबसे कठिन पल इच्छा मृत्यु के बारे में बात करना चाहती हूँ। जब मैं 12 साल की थी, हमारे 4 सदस्यों के परिवार की चौथी सदस्य यूमी की इच्छा मृत्यु कर्क रोग के कारण हो गई थी। जब उसने मेरे बाहों में अपना दम तोड़ा, तब मैंने एहसास किया कि इच्छा मृत्यु से अच्छा तोहफा शायद ही हमारे पशु चिकित्सक हमें दे पाते हैं। क्या इच्छा मृत्यु सही है? ये जब तक किसी का दर्द दूर करने के लिए हो, ये सही है, लेकिन ये फैसला आसान नहीं है। एक पशु चिकित्सक के जीवन का सबसे बड़ा नर्क तब होता है जब किसी आर्थिक तंगी के कारण कोई पशुपालक अपने पशु को बचा नहीं पाता, कि इलाज तो है लेकिन पैसे नहीं है। तो जब पशु चिकित्सक को, जिसने पूरे जीवन में ये फैसला लिया था कि वो हर जान बचाने की कोशिश करेंगे पर वो उसे बचा नहीं पाते हैं, उससे बड़ा दर्द शायद ही कोई है। धन्यवाद।
1: ये बात एकदम सही है और इसे समझना काफी मुश्किल है कि इच्छा मृत्यु जैसी चीज को एक चिकित्सक, जो जनरली लोगों को ट्रीट करने का, एनिमल्स को ट्रीट करने का काम करता है, वो जब ये डिसीजन लेता है तो भावनात्मक रूप से उसके मन पे काफी गहरा इसका प्रभाव पड़ता है। ये बात बहुत सच है। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाना चाहूंगा, मानवी शर्मा।
2: सुप्रभात, मेरा नाम मानवी शर्मा है, मैं MVSC सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। आज के आशु भाषण का मेरा विषय है आवारा पशुओं की समस्या। सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूँगी कि आवारा पशु या बेसहारा मवेशी पालतू पशुओं से क्यों अलग होते हैं। आवारा पशुओं को ना प्रेम, संवेदना और बीमार होने पे ना उपचार, इलाज की समस्या जो है उनको प्राप्त होती है। आवारा पशुओं की ये जो समस्या है, यह तब उत्पन्न होती है जब पशुपालकों द्वारा दूध उत्पादन की अवधि जब समाप्त हो जाती है एवं जब नर का जन्म होता है या फिर अत्यधिक बीमार या बुढ़ापे में छोड़ दिया जाता है, तब यह मवेशी जो है वह सड़क पर नजर आते हैं। इसके कारण हो रही समस्याओं में से सर्वप्रथम है सड़क दुर्घटना, जो कि 60 से 70% तक जो है मवेशी जो है सड़क दुर्घटनाओं का कारण है। दूसरा जो है गंदगी, मवेशियों का प्लास्टिक खाना और फसलों को नुकसान पहुंचाना। इसी मवेशियों या पशु आवारा पशुओं से परेशान होकर मोरक्को, जो फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा था, उसने 30 से ज़्यादा अधिक आवारा कुत्तों को मारने के लिए अमानवीय तरीके जैसे गोली मारना और जो है काम में लिए गए। केरल में भी कुत्ते काटने के केस जब बढ़ने लगे तो उन्होंने भी आवारा पशुओं को बड़े लेवल पर मारना शुरू किया। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आवारा पशुओं को संभालने की समस्या जो का समाधान हमें सरकार के साथ मिलकर ही करना होगा। थैंक यू।
1: बहुत सही बोला इन्होंने, आवारा पशु एक समस्या है, लेकिन इस समस्या के साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि वो पशु है और उस पशु में भी प्राणी मात्र जीव जो है वो निवास करता है, तो उसे दूर करने के लिए या उससे बचाव के लिए हम ऐसे तरीके ना अपनाएं जो बिल्कुल भी अमानवीय हो। मैं हमारे नेक्स्ट कंपटीटर को बुलाना चाहूँगा, हनुमंत जोशी।
3: सुप्रभात, मैं हनुमंत जोशी BBSC AH द्वितीय वर्ष का छात्र। आज इस आशु भाषण प्रतियोगिता के अंदर विषय है मेरा पशुपालन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य। महात्मा गांधी ने कहा था कि गांवों के अंदर भारत की आत्मा बसती है, और अगर हमें इस आत्मा को समृद्ध देखना है तो हमें पशुपालन की ताकत को पहचानना होगा। विकसित भारत 2047 के अंदर जो चारों नींवे हैं, वह गरीब हो, वह महिला हो, वह युवा हो या वह किसान हो, इन चारों के उत्थान के अंदर पशुपालन की ताकत को हमें पहचानना होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि पशुपालन वह सेक्टर है जिसकी ग्रोथ एग्रीकल्चरल के अंदर सबसे ज़्यादा हो रही है। 30% आज के समय में एग्रीकल्चर आउटपुट के अंदर पशुपालन का योगदान है, जो लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास है। और पशुपालन वह सेक्टर है जिसकी ग्रोथ लगभग 7.5 से 8% की तरफ हो रही है, जो कि हमें विकसित भारत के अंदर बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। आज के इस समय में जहाँ पे गांव खाली होते जा रहे हैं, पलायन होता जा रहा है, वहाँ पे हमें पशुपालन की ताकत को पहचानते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को ताकतवर करने के लिए पशुपालन की ताकत हमें आज इस समय में पहचाननी होगी, ताकि हम उसे साइंटिफिकली यूज करके हम हमारे किसानों के लेवल को भी बढ़ा

0: सकें, साथ ही साथ हम हमारी महिलाओं एवं युवाओं को एक नया साधन दे सकें जिससे कि वह अपनी प्रगति कर सकें। इसी के साथ में, जैसे कि हम जानते हैं कि दुग्ध के सेक्टर में इंडिया का प्रथम स्थान है, वैसे ही अंडे और मीट के सेक्टर के अंदर थर्ड और एट्थ पोजीशन से भी हमें ऊपर उठने के लिए इस पशुपालन का उपयोग करना होगा, ताकि हम हमारे फूड सिक्योरिटी एवं फूड सेफ्टी जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी हम सुधार सकें। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं आप सबके तालियों के बीच बुलाना चाहूँगा हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट शिवांशी बेथवाल।
2: पशुधनम नित्यम सर्वलोकोपकारकम। नमस्कार आदरणीय मंच, गुरुजन एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं शिवांशी बड़थवाल, BVSCNAH द्वितीय वर्ष की छात्रा, आज आपके समक्ष पशु पोषण और हमारा स्वास्थ्य विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही। साथियों, जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर केवल मनुष्य तक सीमित रह जाता है, लेकिन सच तो ये है कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, और इसी सोच को आज पूरी दुनिया वन हेल्थ के नाम से जानती है। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हमारे देश में लगभग 50 करोड़ से अधिक पशुधन है। इसलिए पशुपालन केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और पोषण सुरक्षा की रीढ़ है। साथियों, आजकल एक बहुत बड़ी चुनौती हमारी तरफ बढ़ रही है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR। जब भी किसी पशु को बिना जरूरत या अत्यधिक मात्रा में एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है, उनके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया उन दवाइयों के खिलाफ मजबूत हो जाते हैं, और फिर यही बैक्टीरिया दूध, दही, मांस, अंडों के माध्यम से हम इंसानों तक पहुँच सकते हैं। जब इंसान बीमार पड़ता है तो वह एंटीबायोटिक दवाइयाँ हम पर असर करना बंद कर देती हैं, और इसका मतलब यह है कि एक साधारण संक्रमण भी जानलेवा बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में AMR लाखों मृत्यु का कारण बन सकता है। लेकिन इसलिए हमें ये पता चलता है कि AMR सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए चुनौती है। COVID-19 जैसी महामारी ने हमें सिखा दिया है, यदि पशु पोषण की देखभाल नहीं की जाएगी तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, और एक भावी पशु चिकित्सक होने के नाते से मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को पशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और एंटीबायोटिक के सही उपयोग के बारे में जागरूक करूं। मैं इसी कामना के साथ अपने वचन को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।
1: जो इन्होंने बताई वो चीज़ काफी अच्छी और काफी हद तक ध्यान देने योग्य है। मैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाना चाहूंगा, जितेंद्र सिद्ध।
3: सुप्रभात, मेरा नाम जितेंद्र सिद्ध, सेकंड ईयर BVSC का छात्र, TVS बीकानेर। मेरा विषय है पशुपालन और आज का युवा। पशुपालन जो एक ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटे किसान के लिए एक बहुत बड़ा ही योगदान रखता है। पशुपालन का अर्थ हम इस तरह समझ सकते हैं कि आज अगर हम गाँव में जाए तो हमें बहुत सारे पशुओं दिख जाते हैं जिनका लोग बहुत ही उपयोग लेते हैं। पशुपालन जो राजस्थान में 13% GDP का रोल अदा करता है। पशुपालन में राजस्थान ऊन के अंदर प्रथम स्थान रखता है और दूध उत्पादन में शीर्ष राज्य में उत्पादन का एक हिस्सा रखता है। पशुपालन में आज जो भारत सरकार से राज्य के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है और आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो बदलाव हुए हैं, और जैसे कि हम जान सकते हैं कि राजस्थान के अंदर और पूरे विश्व के अंदर अगर हम बात करें तो जो पशु उत्पादन है और जो पशुओं से हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो भारत के लोगों के एक पारंपरिक दृष्टिकोण का हिस्सा भी है, जिससे वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। जितना उत्पादन करते हैं उतना ही लगभग भारत उसका उपयोग भी करता है। इसीलिए जो भी हमें पशु से उत्पादन मिलते हैं अगर उनके अंदर हम इन्वेस्ट करें और उसका प्रयोग करें तो यह हमारे लिए बहुत ही उच्चतम व्यवसाय के रूप में देखा जा सकता है। और मैं इसी के साथ यही कहना चाहूँगा कि वेटनरी के बढ़ते प्रभाव और युवा के लिए राज्य के ओर से नई योजना जो दी जा रही है उसके कारण ये सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय साबित हो सकता है। धन्यवाद।
1: बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। मैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाना चाहूंगा, हर्षित शर्मा।
4: नमस्कार, मैं हर्षित शर्मा, BVSCNAH चतुर्थ वर्ष का विद्यार्थी। मेरे आज का चर्चा का विषय है लोक संगीत। लोक संगीत के निर्माण के लिए कोई चार दीवारी का आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए कुछ ढोलकों की ताल या फिर कुछ तालियों की गूंज ही इसको जीवंत करने के लिए काफ़ी होती है। लोक संगीत सदैव ही

0: मनुष्य को उसके समाज की संस्कृति, साहित्य और इतिहास से जोड़ता आया है। भले ही हर्षोल्लास में गाए हुए कामण जैसे गीत हों या बिरह में गाए हुए हिचकी जैसे गीत, अपनी लहराती फसल को देखकर किसान ने कुछ सुर छेड़े हों या शिशु को देखती हुई माँ ने गाई हुई लोरी हो, लोक संगीत सदैव ही समाज का हिस्सा रहा है। एक हिंदी कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी। उसी के अनुसार लोक संगीत भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न होते हैं। जैसे कश्मीर के धर्म से जुड़े हुए गीत हों या कन्याकुमारी के नृत्य से जुड़े हुए गीत, राजस्थान के दोरों में छेड़ी हुई तान हो या गुजरात के डायरों में बसी हुई दिलों की धड़कन हो, महाराष्ट्र के पोवड़ों में गाए हुए इतिहास को समेटते हुए गीत हो या फिर असम के बिहू गीत जो प्रकृति की सौंदर्य को बिखेरते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, लोक संगीत जनता की भाषा एवं संस्कृति को सहेजने के लिए एक कुशल पहरेदार होते हैं। इसी प्रकार लोक संगीत आज के भागते समय में, बिजी शेड्यूल में या थकित मन के टाइम पे लोक संगीत जो होते हैं वो मन को हर्षोल्लास से भर देने वाले और मनुष्य को उसकी जड़ों से जोड़ने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। लोक संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, यह इतिहास से जुड़ा हुआ सदैव ही इतिहास का एक हिस्सा रहा है। धन्यवाद।
1: दोस्तों, यहाँ पर आज आपने सिर्फ किसी विषय पर या किसी बात पर अपने शब्दों को नहीं रखा है, बल्कि आपने अपनी भावनाओं, सोच और आवाज़ को आत्मविश्वास की एक नई पहचान दी है और हमें ये बताया है कि किसी भी चीज़ को देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। और आकाशवाणी को गर्व है कि वो इस यात्रा का हिस्सा आपके साथ बन रहा है। आइए दोस्तों, अब वक्त है उस पल का जिसका हम सबको बेसब्र से इंतज़ार था, यानी कि शानदार प्रदर्शनों में से कुछ को सम्मानित करने का। लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाहूँगा राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर की ओर से हमारे बीच मौजूद सहायक आचार्य डॉक्टर अशोक गौर सर को कि वो यहाँ पधारें और हमारे प्रदर्शन, उनके अनुभव और आकाशवाणी से जुड़ी उनकी कुछ यादों को हमारे साथ साझा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहूंगा अशोक गौर सर का।
2: सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का उन्हें इस कार्यक्रम में पधारने के लिए अभिनंदन करते हुए, विशेष तौर से इस कार्यक्रम में आकाशवाणी बीकानेर के सहयोग से आज जो हम आशु भाषण प्रतियोगिता आयोजित कर पाए, उसमें हमारे आकाशवाणी बीकानेर के सहयोगी अधिकारियों एवं अधिशासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर्वप्रथम इस क्रम में मेरा धन्यवाद श्रीमती मीनाक्षी मलिक, सहायक निदेशक आकाशवाणी बीकानेर, कृपया जोरदार तालियां इनके लिए। साथ ही श्रीमती बरखा थानवी व्यास, कार्यक्रम अधिशासी महोदया, और श्री रेवत राम जी लेघा, कार्यक्रम अधिशासी, आप तीनों महानुभावों का इस प्रांगण में, इस प्रेक्षागृह में पधारने के लिए और हमारे छात्रों की क्रिएटिविटी, उनकी पब्लिक स्पीकिंग को सुधारने के लिए आज जो आपने आशु भाषण प्रतियोगिता आयोजित की, उसके लिए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप तीनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरा इस अवसर पर यही कहना है कि हम सभी आजकल पाठ्यक्रम के बोझ तले अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं, तो इस जो मोनोटोनी है इसको ब्रेक करना चाहिए। साथ ही अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप के लिए इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और मैंने देखा हमारे महाविद्यालय के प्रतिभागियों ने इस आशु भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। इस तरह के अवसर महाविद्यालय में बार बार आयोजित नहीं होते हैं, लेकिन एक प्रतिभागी ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक अपना वक्तव्य दिया था। मैं उससे सहमत होते हुए ये भी बताना चाहता हूँ कि अपनी पब्लिक स्पीकिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले सकते हैं। जैसा कि हम टीचर्स जो धीमे धीमे अपनी बात कहते हुए लगभग समझाइश करते हुए करते हैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में आपको धारा प्रवाह और सही उच्चारण के साथ अपना मत रखना है। उसके लिए आपको कम से कम एक दो मिनट पहले अपने दिमाग में एक ढांचा बना लेना चाहिए कि मुझे कहना क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कितना धारा प्रवाह तरीके से अपना मत रख सकता है और अपने पाठ्यक्रम की अधिकता को मानते हुए भी मेरा विचार है कि इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर आपको भाग भी लेना चाहिए। उन्हें आपका इस कार्यक्रम के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं विजेता के अनाउंसमेंट और इस प्रदर्शन से जुड़ी और आकाशवाणी से जुड़ी कुछ बातें बताने के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे आकाशवाणी बीकानेर की ओर से सहायक निदेशक कार्यक्रम मीनाक्षी मलिक मैम को।
3: सर्वप्रथम आप सभी को 17वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस। मैं

0: आकाशवाणी की तरफ से वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, डीन्स, डायरेक्टर्स एवं सभी स्टाफ, स्टूडेंट्स राजुवास का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये प्रतियोगिता आयोजित कराने में आकाशवाणी का सहयोग किया। प्रतियोगिता में भाग लेना देखिए बहुत जरूरी है, पर फर्स्ट आना सेकंड आना ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो फर्स्ट प्राइज जिसने लिया है शिवांशी, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर प्लीज। शी स्टूड फर्स्ट हेयर। और दो कॉम्प्लीमेंट्री प्राइजेस भी हैं, हनुमंत जोशी एंड नवीन कुमार। अगेन क्लैपिंग फॉर देम। आकाशवाणी की तरफ से विशेष इनको शुभकामनाएं। आपको उपहार स्वरूप आकाशवाणी में बोलने का मौका दिया जाएगा और उसमें प्राइज भी है, तो आप तीनों प्लीज आकाशवाणी में इन्वाइटेड हैं। आप सबको पुनः शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: अंत में मैं माधव पारिख आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से राजुवास के सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों और यहाँ पर उपस्थित समस्त लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम को इतना खूबसूरत और सफल बनाने के लिए। जाते जाते साथियों, हम विद्यार्थियों से इतना ही कहेंगे, आपकी आवाज़ आपकी पहचान है, इसे कभी भी दबने मत दीजिएगा। उत्साह, आत्मविश्वास और सही तथ्यों के साथ इसे हर उस जगह पहुंचाइएगा जहां इसके पहुंचने की सख्त ज़रूरत है। ऐसे ही किसी नए आयोजन के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: तो ये था दोस्तों कार्यक्रम युवा तरंग आकाशवाणी के संग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज दोस्तों शायद आप सुबह बाहर निकलने पर आपने कुछ नोटिस किया होगा, सड़कों पर ज़्यादा साइकिलें, ज़्यादा एनर्जी और लोगों के चेहरों पर एक अलग ही एक्साइटमेंट। दोस्तों आज हम कॉमनवेल्थ गेम्स डे मना रहे हैं। सोचिए सुबह के समय देश के 8000 से ज़्यादा लोकेशंस पर लोग साइकिल चला रहे थे, दिखावे या फिटनेस के लिए नहीं, पार्टिसिपेशन के लिए। यहीं पर भारत और इंटरेस्टिंग हो जाता है। दोस्तों आज फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 75वां मेगा एडिशन हुआ। इस पूरे मूवमेंट को अहमदाबाद से लीड किया गया केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। वहीं एक कॉमनवेल्थ गेम्स थीम्ड एग्जीबिशन भी इनॉग्रेट हुई, जहां मेडल से ज़्यादा माइंडसेट की बात थी। और पता है इसका इतना हाइप क्यों है? तो सुनिए, इंडिया अब सिर्फ गेम्स खेलने की बात नहीं कर रहा, इंडिया गेम्स होस्ट करने की तैयारी में है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की, और उससे भी आगे ओलंपिक्स। स्पोर्ट्स पार बनने का मतलब सिर्फ पोडियम पर खड़े होना नहीं होता, स्पोर्ट्स पार बनते हैं जब बच्चे के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को उसके पेरेंट्स चीयर करते हैं और यूथ ऐसे मूवमेंट्स का हिस्सा बनते हैं। इसीलिए आज का इवेंट सिर्फ एक ड्राइव नहीं, सेलिब्रेशन था, क्योंकि जब एक देश 8000 से ज़्यादा जगहों पर एक साथ एक ही चीज़ चूज़ करता है तो वो अपनी एक अलग पहचान बना रहा होता है। और ये राष्ट्रमंडल खेल दिवस हमें याद दिलाता है कि चैंपियंस सिर्फ स्टेडियम में नहीं, कल्चर से बनते हैं। तो अगर आज आपने किसी को साइकिल चलाते देखा या खुद पैडल पर पैर रखा, तो ये भी कोई छोटा सा मोमेंट नहीं था, ये उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जहां इंडिया ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पर अपनी जगह और मजबूत कर रहा है। क्योंकि चैंपियंस सिर्फ मैदान में नहीं, सोच में बनते हैं, और जब खेल और पढ़ाई दोनों साथ चलते हैं तभी तैयारी पूरी होती है।

तो अब वक्त है दोस्तों, कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे, उन दोनों के जवाब जानने का। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि वर्ष 2026 में भारत का कौन सा राज्य डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसका सही जवाब है राजस्थान। दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा था विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का SI मात्रक क्या है, जिसका सही जवाब है ओम मीटर। और इसके बाद अब वक्त है रोजगार सूचना का। दोस्तों, UPSC द्वारा NDA 2 रिक्रूटमेंट का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये भर्ती नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी के विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जा रही है। कुल 394 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें आर्मी विंग, नेवी विंग, एयरफोर्स फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी और नेवल अकेडमी के पद शामिल हैं। इस भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारी जैसे कि आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, इन सभी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसमें आवेदन के लिए लास्ट डेट 9 मई है, तो जल्द ही अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और आवेदन कर लें। दोस्तों, आज जब हम लोग राष्ट्रमंडल खेल दिवस मनाकर फ्यूचर की ओर पैडल मार रहे हैं, इसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय मार्कोर दिवस भी है। घबराइए मत, नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये भला कौन सा दिन है और मार्कोर क्या है। दोस्तों, मार्कोर एक जंगली बकरी की तरह दिखने वाला पहाड़ी जानवर है जो वहाँ रहता है जहाँ रास्ते आसान नहीं होते, सीधे खड़े पहाड़, लिमिटेड रिसोर्सेज और हर कदम पर रिस्क। फिर भी वो गिरता नहीं, बैलेंस बनाकर चलता है। अब ज़रा अपनी लाइफ से कंपेयर कीजिए। हम भी रोज़ किसी न किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। करियर प्रेशर, इमोशनल कन्फ्यूजन, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, बस फ़र्क यह है कि हम अक्सर बैलेंस भूल जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्कोर दिवस हमें ये बताता है कि नेचर कितना स्ट्रांग है और ठीक तरह से संसाधनों का यूज़ न लिया तो धीरे धीरे गायब भी हो सकते हैं। और जब हमें समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हम कहते हैं कि मौसम इतना अजीब क्यों हो रहा है, रिसोर्सेज क्यों कम हो गए हैं। सिंपल सा आंसर है, क्योंकि बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्पोर्ट्स पार बनने की बात करते हैं, जो कि ज़रूरी भी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नेशन वही होता है जो ग्रोथ के साथ नेचर को भी संभाल कर रखे। तो आज का मैसेज बहुत छोटा है, फ्यूचर की तरफ भागिए, ड्रीम्स देखिए, गोल्स बनाइए, लेकिन इतना ज़रूर देखिए कि रास्ते में नेचर पीछे ना छूट जाए। इसी के साथ चलिए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, इसी के साथ घड़ी बता रही है कि अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम पर। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए युववाणी। मैं हूं प्रियंका सोनी, आप सभी को मेरा नमस्कार।

युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। फिल्म संगीत सुनिएगा रात 9:30 पर और रात 9:15 पर।

लोक संगीत सुनिएगा रात 8:30 पर और फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं रात 8:00। सुगम संगीत का आनंद आप ले सकते हैं संध्या 7:45 पर और ग्रामीण श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण जगत होगा संध्या 7:00। आज कार्यक्रम में चर्चा के विषय हैं कृषि में वरदान हरी खाद, पारंपरिक कला कौशल से आर्थिक लाभ, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उपभोक्ता संरक्षण। इन सब के साथ कार्यक्रम में लोक गीत और लोक भजन तो होंगे ही।

फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:05 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए कुछ फिल्मी गीत।

0: ये तो था हमारे सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। संध्या के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री

0: और विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहाँ इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 3rd ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मेरी वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। और आज फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही कलाकार मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए कुछ फिल्मी नगमे। सुनिए सबसे पहला गीत, फिल्म का नाम बदलते रिश्ते।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था

0: और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

फिल्म का नाम था गोपी, स्वर था मोहम्मद रफ़ी का। अब सुनिए फिल्म बेटी बेटे से मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत।

0: समीर कहाँ जा रहे हो? महफिल की रौनक खत्म हो जाएगी तुम्हारे चले जाने से।
1: गरीब अमीरों की महफिल की रौनक नहीं, हमेशा तमाशा बना।
0: ठहरो अनिल, लौट आओ हमारे मेहमान बनकर, हम बुला रहे हैं, आओ ना। थैंक्स, हम आपसे कुछ मांगे तो।
2: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर संध्या के 6:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
3: जिसमें गम शामिल ना हो। Now come, sing.

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में होंगे कई कार्यक्रम। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए। तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अनुदान को 1 करोड़ रुपए किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी और लू का असर जारी, अगले कुछ दिन राहत के आसार नहीं। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से जल संग्रहण और संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। गंगा दशमी से शुरू हो रहा ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। इस अभियान को लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। और ब्यौरा समाचार कक्ष से

0: हमारे सहयोगी जितेंद्र प्रधान से।
1: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल से शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राज्य भर में आम जन को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, युवाओं और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक जिले के बीसलपुर बांध से जल पूजन और शिव अभिषेक से करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री भरतपुर के श्री गंगा माता मंदिर में आरती और सुजान गंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों के पूजन के साथ जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत होगी। जागरूकता को लेकर वंदे गंगा, प्रभात फेरियां, लेखन प्रतियोगिताएं, पीपल पूजन, पौधारोपण सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
0: राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए हैं। नीति के तहत तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अधिकतम अनुदान को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस नीति में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य बजट 2026-27 के तहत वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की थी। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि तकनीकी अपग्रेडेशन पर दिए जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी से उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप आधुनिक तकनीक को अपना सकेंगे। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके तहत रत्नाभूषण उत्पाद से जुड़े उद्यमों के विस्तार पर भी मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। साथ ही निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन भी हो सकेगा। उद्योग विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म इकाइयों को 20 लाख रुपए और लघु श्रेणी की इकाइयों को 15 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान मिल सकेगा। वहीं निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे आमेर महल का भ्रमण करेंगे। श्री रूबियो के दौरे पर को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री की इस यात्रा को भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक, कूटनीति और रणनीतिक संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन के भारत प्रवास पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई इस चर्चा में पश्चिम एशिया संकट से उपजे मौजूदा हालात और रक्षा सहयोग पर चर्चा की गई। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और इसके सार्थक परिणाम मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के बालोतरा जिले में स्थित सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजों का भंडार मिला है, जो देश को रॉकेट से लेकर न्यूक्लियर प्लांट्स का कच्चा माल उपलब्ध करवाने और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहायक होगा। केंद्रीय खान मंत्रालय की एक बैठक में सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुर्लभ खनिजों के भंडार को रेखांकित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: नारी शक्ति बंधन अधिनियम।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भीलवाड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हमीरगढ़ हवाई पट्टी का जायजा लिया। इसके बाद श्री मेघवाल ने हमीरगढ़ रीको क्षेत्र में भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के कार्यालय में उद्यमियों से संवाद किया।

0: श्री मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत में भीलवाड़ा में व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने के प्रस्ताव को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने रखने का आश्वासन दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे लागू करवाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल था पास किया हुआ उसको लागू करने का ही अवसर था, क्योंकि हमें सेंसस हमारी शुरू हुई है तो सेंसस के डेटा आने में समय लग रहा था, तो डिलिमिटेशन और सेंसस में संशोधन हम चाह रहे थे। हम सहमति बनाने में लगे हुए हैं, सहमति बनेगी तो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। इसमें क्या है, सरकार की तो पहली प्राथमिकता है।
0: केंद्र सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को मजबूत करने के लिए जांच केंद्रों जीएटीसी की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों में जीएटीसी वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच शामिल है। इस पहल का उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ का शुभारंभ किया गया है। राणा पूंजा सभागार में आज आयोजित एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पीठ की विधिवत शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए श्री देवनानी ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से स्थापित ये अध्ययन पीठ भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्यों पर आधारित राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर उच्च स्तरीय शोध और अकादमिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगी। फिट इंडिया मूवमेंट के संडे ऑन साइकिल मुहिम के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर साइकिल रैली, योगाभ्यास सहित विभिन्न फिटनेस गतिविधियां आयोजित की गईं। विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों, खिलाड़ियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। इस मौके पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के चारों ओर साइकिल रैली रखी गई। इसमें मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भाग लिया। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए ये आयोजन हुआ। हनुमानगढ़, जैसलमेर, राजसमंद, कोटपूतली, बहरोड़, सलूम्बर, बालोतरा, झुंझुनू और पाली में भी साइकिल रैली के जरिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का संदेश दिया गया। कई स्थानों पर योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम को भी इसमें जोड़कर योगाभ्यास, जूम्बा, रोप स्किपिंग सहित अन्य गतिविधियां हुई। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में प्रचंड गर्मी और लू का असर बना हुआ है। राजधानी जयपुर में आज दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित रहा। दोपहर में बाजारों में लोगों की आवाजाही कम रही। चूरू में दिनभर लू चलने से लोगों की दिनचर्या पर प्रभाव पड़ा। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां लोग तेज गर्मी से बचाव के लिए कई जतन कर रहे हैं।
2: जिले में तेज लू और चिलचिलाती धूप के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण दिन में बाजारों में लोगों की आवाजाही नहीं होने से चहल पहल कम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण खासी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर चिकित्सा विभाग की ओर से आमजन को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने, धूल भरी हवाएं चलने और तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। 26 और 27 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने और कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। वहीं 28 से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ क्षेत्रों में आंधी और कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। राजसमंद जिले के आमेट में आज एक सड़क दुर्घटना में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आमेट देवगढ़ स्टेट हाईवे पर मोटरसाइकिल को सामने से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर जाँच शुरू कर दी है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में कई कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए। तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी और लू का असर जारी, अगले कुछ दिन राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। गंगा दशमी के अवसर पर शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में कई गतिविधियां होंगी। ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इसके तहत जल स्रोतों की सफाई, पौधरोपण, श्रमदान और जल संरक्षण प्रदर्शनियां सहित अन्य आयोजन होंगे। शहरों से लेकर गांवों ढाणियों तक जन भागीदारी से कई कार्यक्रम रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में डूंगरपुर के 2 दिन के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री शर्मा स्वच्छता सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई के डूंगरपुर मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यहां लोगों ने स्वच्छता को जन उत्सव बनाया है। पूरे देश और प्रदेश में डूंगरपुर की स्वच्छता मुहिम की चर्चा है। रात्रि चौपाल के तहत मुख्यमंत्री जिले के 84 क्षेत्र की धम्बोला ग्राम पंचायत पहुंचे। उन्होंने महिलाओं, किसानों और युवाओं की समस्याएं सुनी और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को टैबलेट वितरित किए। बालिकाओं की मांग पर मुख्यमंत्री ने धम्बोला के स्कूल में प्रयोगशाला बनाने के निर्देश दिए। साथ ही गांव में तालाब संरक्षण के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। जिले में जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर देशल दान की अगुवाई में इसका शुभारंभ हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने आदि सेवा केंद्रों के जरिए ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को अभियान से जोड़ने की बात कही। TAD उपायुक्त सत्यप्रकाश कसवा ने बताया कि इस अभियान में जिले के 638 गांवों में संतृप्ति शिविर लगाए जाएंगे। वहीं आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स की मदद से जनजातीय क्षेत्रों में 17 विभागों से जुड़ी सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में खाद्य सामग्री से जुड़े दुकानदारों से साफ सफाई रखने और मिलावटी सामान नहीं बेचने की अपील की जा रही है। CMHO डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें दुकानदारों को शुद्ध और साफ सुथरी खाद्य सामग्री रखने और बेचने के लिए पाबंद किया गया है। अभियान के तहत विभिन्न खाने पीने की चीजों के नमूने इकट्ठे कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जिले में पिछले दिनों ग्राम विकास रथों की रौनक देखी गई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी भीलुड़ा गांव में आयोजित ग्राम विकास रथ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने की अपील की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी पिछले दिनों डूंगरपुर प्रवास पर रहे। राज्यपाल ने कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यपाल ने वीरांगना कालीबाई की शहादत को याद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कभी भी परीक्षा में नकल नहीं करने का आह्वान किया। जिले में पिछले दिनों कॉफी विद कलेक्टर संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला कलेक्टर ने प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में छात्राओं से संवाद करते हुए जिला कलेक्टर ने उन्हें करियर मार्गदर्शन भी दिया। उन्होंने छात्राओं को अपडेट रहने और डिजिटल तकनीक सीखने के लिए प्रेरित किया। मेरा युवा भारत कार्यक्रम में पिछले दिनों डूंगरपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं हुई। जिला युवा अधिकारी शुभम पूर्बिया ने बताया कि समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। जिले में पिछले दिनों मंगल कलश यात्रा की धूम रही। गांवों और शहरों में निकली इन यात्राओं में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल

हुई। साथ ही उपखंड मुख्यालयों पर शिवालयों में विशेष कार्यक्रम रखे गए। ये मौका था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देवस्थान विभाग और जिला प्रशासन की ओर से ये पर्व मनाया गया। इसमें शिवालयों में अभिषेक और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। जिला स्तरीय स्वाभिमान पर्व कारोली गांव के भुवनेश्वर महादेव मंदिर में हुआ। जिले में जनगणना 2027 के तहत इन दिनों मकान सूचीकरण और आवास गणना का काम किया जा रहा है। इसके लिए प्रगणक घर घर जाकर सूचनाएं

0: ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज किया। इसके साथ ही डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश से सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, प्रदेश में कालेओं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे शुरुआत वेला। जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन सारू वेला कई कार्यक्रम। राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में खास बदलाव करया। तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दी आजावन वाली सब्सिडी ने 1 करोड़ रुपया करया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करनो सरकार री ठावी प्राथमिकता। और प्रदेश रा घणकरा हल्का माय करड़ी गर्मी और लू रो असर बण्योड़ो है। आप तक कुछ दिन राहत रा आसार ने। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह। अरब समाचार विगतवार, प्रदेश में कालेओं जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन कानी महत्व माना जा रिया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान री शुरुआत वेला। गंगा दशमियों सरोवेरियो ओ अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस ताई चालेला। और ब्यूरो साथे समाचार कक्षों मारा सहयोगी जितेंद्र प्रधान।
2: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल से शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राज्य भर में आम जन को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, युवाओं और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक जिले के बीसलपुर बांध से जल पूजन और शिव अभिषेक से करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री भरतपुर के श्री गंगा माता मंदिर में आरती और सुजान गंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों के पूजन के साथ जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत होगी। जागरूकता को लेकर वंदे गंगा, प्रभात फेरियां, लेखन प्रतियोगिताएं, पीपल पूजन, पौधारोपण सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
1: राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में खास बदलाव करया है। ये नीति रे तहत तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दिया जावन वाली 32 सब्सिडी ने 50 लाख रुपयों बधार 1 करोड़ रुपया कर दी जा है। मुख्यमंत्री राज्य बजट 2026-27 तहत रोकड़ और विनियोग विधेयक माथे चर्चा रे दौरान ई बारा में ऐलान करियो हो। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त श्री नीलाभ सक्सेना बतायो के तकनीकी अपग्रेडेशन माथे दिया जावन वाली सब्सिडी बधावणु प्रदेश रा उद्योग वैश्विक दौड़ मुजब आधुनिक तकनीक ने अपना सकेला। इणु उत्पादन बूतो बधण रे साथे साथे गुणवत्ता में सुधार वेला। इनके साथ ही स्थानीय उत्पादन ने बढ़ावो देवन सारू एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में 2 महत्व बदलाव करी जा है। इनके तहत रत्नाभूषण उत्पादों जुड़िया कारोबारा रा फैलाव माथे मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाएला। साथ ही निजू संस्थानारी मार्फत तकनीकी अपग्रेडेशन ही वह सकेला। उद्योग महकमा कानियों काडीजी अधिसूचना मुजब सूक्ष्म इकाइया ने 20 लाख रुपया और लघु श्रेणी री इकाइया ने 15 लाख रुपया तारी मार्जिन सब्सिडी मिल सकेला। वठे निजू संस्थाना री मार्फत तकनीकी अपग्रेडेशन सारू 5 लाख रुपया री सब्सिडी दी जाएला। अमेरिका रा विदेश मंत्री मार्को रूबियो रे काले जयपुर आवण रो कार्यक्रम है। वे आमेर मेल देखेला। श्री रूबियो रा दौरा ने लेर जिला प्रशासन और पुलिस कानियों तगड़ी तैयारियां करी जावे। अमेरिकी विदेश मंत्री री ई यात्रा ने भारत और अमेरिका रे बीच सांस्कृतिक कूटनीति और रणनीतिक संबंधों जोड़ ने देखो जावे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन रा भारत प्रवास माथे है। वे आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिलिया। हैदराबाद हाउस में वी बतल में आथुणी एशिया संकटों पैदा मौजूदा हालात और हिफाजती मदद माथे बतल करी जी। इन रे पछे डॉक्टर जयशंकर कहो के भारत और अमेरिका रे बीच गहरा वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों रा संबंधों पूरी दुनिया माथे असर पड़ियो है वणा कयो के बतल रो सिलसिलो चालतो रहेला और इन राचो खा नतीजा

0: તણરી આસ હે। બાલોતરા જિલ્લારી રિફાઇનરી જસી મહેતવ પરિયોજનાઓ દેશરી ઉર્જા હિફાજત રહે સાથે સામરિક અર માલી હિફાજતમાં મહેતવ ભૂમિકા નિભાર્યો હે। અઠે સિવાણા રિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં દુર્લભ ખનિજારો ભંડાર મળ્યો હે, જો દેશને રોકેટું લેર ન્યુક્લિયર પ્લાન્ટ્સરા કચ્ચા માલ ઉપલબ્ધ કરાવણ અર સાફ ઉર્જારા હલકામાં અગાડી બનાવણમાં મદદ કરેલા। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो के सिवाणा रिंग कॉम्प्लेक्स और सिवाणा ग्रेनाइट में रियर अर्थ एलिमेंट और हेवी रियर अर्थ एलिमेंट मिलिया है। वना एहलकारा ने निर्देश दिया के सिवाणा रिंग कॉम्प्लेक्स रा असरदार क्रियान्वयन सारू प्रदेश में नोडल एहलकार नियुक्त कराया जावे, जेनो काम में तेजी आ सके। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज भीलवाड़ा रा दौरा माथे रिया, जठे वना हमीरगढ़ हवाई पट्टी रो जायजो लियो। इन रे पछे श्री मेघवाल हमीरगढ़ रिको हल्का में भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन रा दफ्तर में कारोबारियों बतल करी। श्री मेघवाल खबर नविसा ने बतल में भीलवाड़ा में कारोबारी उड़ान शुरू करने रा प्रस्ताव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सामे राखण रो भरोसो दियो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम रो जिक्रो करता वणा कहो के इन लागू करनो केंद्र सरकार री ठावी प्राथमिकता है।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल था पास किया हुआ उसको लागू करने का ही अवसर था, क्योंकि हमें सेंसस हमारी शुरू हुई है तो सेंसस के डेटा आने में समय लग रहा था, तो डिलिमिटेशन और सेंसस में संशोधन हम चाह रहे थे। हम सहमति बनाने में लगे हुए हैं, सहमति बनेगी तो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। इसमें क्या है, सरकार की तो पहली प्राथमिकता है।
0: केंद्र सरकार वजन और मापरी जांच प्रणाली ने मजबूत करण सारू जांच केंद्र GATC री भूमिका रो पसारो करेला। ई सारू साल 2013 रा कायदा माय बदलाव करी जो है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय आ जानकारी देवता बतायो के नुआ कानूना माय GATC वजन और मापरी 23 श्रेणिया रो सत्यापन कर सकेला। इन माय पेट्रोल डीजल CNG LPG LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच ही भेली है। ई पहल रो मकसद कारोबार ने साफ गोई बनावणो और तकनीक ने बढ़ावो देवणो है। बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ री शुरुआत करी जी है। राणा पुंजा सभागार में आज हुआ एक कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी पीठ री विधिपूर्ण शुरुआत करी। श्री देवनानी कहो कि विश्वविद्यालय कान्यू स्थापित आ अध्ययन पीठ भारतीय ज्ञान परंपरा, एकात्म मानववाद, अंत्योदय, ग्राम विकास, सामाजिक समरसता और सामाजिक जीवन मूल्य माथे आधारित राष्ट्र निर्माण जैसा मुद्दा माथे आला दर्जा रो शोध और अकादमिक गतिविधियां रो खास केंद्र बनेला। फिट इंडिया मोमेंट रे तहत संडे ऑन साइकिल रे तहत प्रदेश रा न्यारा न्यारा ठोड़ा साइकिल रैली योग अभ्यास समेत न्यारा न्यारा फिटनेस गतिविधियां भी। न्यारी न्यारी ठोड़ा अहलकारा खिलाड़ियां नौजवाना और फिटनेस प्रेमिया उमावरे साथ ई मुहिम में हिस्सो लियो। ई मौके जयपुर रा SMS स्टेडियम रा चारों मेर साइकिल रैली भी। लोगों ने स्वस्थ जीवन शैली रे प्रति जाग जगावन सारू ओ आयोजन भी हो। हनुमानगढ़, जैसलमेर, राजसमंद, कोटपुतली, बहरोड, सलूम्बर, बालोतरा, झुंझुनू और पाली माई साइकिल रैली री मार्फत लोगों ने स्वास्थ्य रे प्रति जागरूक रहने रो संदेश दिरिजियो। कई ठोड़ा योग दिवस काउंट डाउन कार्यक्रम ने इणो जोड़ने योगा अभ्यास, जुम्बा, रोप स्किपिंग समेत दूजी गतिविधियां भी। और अब मौसम, प्रदेश रा घणकरा हल्का माए करड़ी गर्मी और लू रो असर बनियोड़ो है। मौसम केंद्र जयपुर आज 18 जिला माए हीट वेव रो ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करियो है। राजधानी जयपुर माए आज दिन माए तेज तावड़ा माए आम जिंदगी माथे असर पड़ियो। जैसलमेर माए आंधी चालणो लोगों ने गर्मियों थोड़ो आराम मिलियो। चूरू माए आखे दिन लू चालती रहवणो लोगों रा काम काज माथे असर पड़ियो। बाड़मेरू हमारा खबर नवीस बतायो के वठे लोग करड़ी गर्मियों बचन सारू कई जतन कर रिया है।
2: जिले में तेज लू और चिलचिलाती धूप के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण दिन में बाजारों में लोगों की आवाजाही नहीं होने से चहल पहल कम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद BSF के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण खासी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं।

0: गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर चिकित्सा विभाग की ओर से आमजन को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: मौसम महकमो आवता 3-4 दिन राज्य राघण करा हल्का माय, मौसम साफ रेवण, एर धूल भरी हवा चालन, तापमान माय 2-3 डिग्री सेल्सियस री बढ़वारी आस जताई है। 26-27 मई ने आथुणी राजस्थान रा कुछ हल्का माय बत्ती रो तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस दर्ज होवण और कठे कठे लू चालन री आस जताई है। वठे 28-29 मयू एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रा असर हूँ प्रदेश रा कुछ हल्का माय आंधी और कठे कठे बिरखा होण री आस जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित किया जाने वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 31 मई ने आप रा विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी वेला। ई सारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-117-800 माथे 29 मई तई आप राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम री मार्फत ही आप विचार भेज सको हो। ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फेरों सुन ले रहो। प्रदेश में काल्यों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू वेला। जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन सारू वेला कई कार्यक्रम। राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में खास बदलाव करया। तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दिया जाने वाली सब्सिडी ने 1 करोड़ रुपया करया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करनो सरकारी ठावी प्राथमिकता। अर प्रदेश रा घनकरा हल्का माए करडी गर्मी अर लूरो असर बन्योड़ो है। आवता कुछ दिन राहत रा आसार नी। नेंडर साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजा हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। अब हमारे ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे, ग्रामीण जगत।

0: ग्रामीण जगत्रो कार्यक्रम सुनला सगळे ग्रामीण भाईने और किसान भाईने सत्यनारायण शर्मा और
1: संदीप पारिकरा घना न घना राम राम
0: राम राम संदीप भाई भेरू आप भेड़ा हुआ चौपाल
1: माते राम राम राम राम राम
0: और कराला हताई और हताई देखो तय हो कई चीज ना जानीकार तो सगला ऊपर तो मैं था सुन सा कामरी बात
1: भाई देखो कामरी बात सुन सा मतलब मैं फालतू की भी कहूं हैं देखो कामरी बात ही है जकी देखो
0: देखो ये है कि घणो घणो कोई आवे नहीं भी फायदो लेनो
1: हां तो
0: और थे हो ज्ञानी तो थारा ज्ञान रो फायदो लेवण खातिर मैं थाने बातचीत करण खातिर
1: बुलावा भाई देखो अब थे इतनी बात कह दी तो अब काम की बात तो अपन करनी है और हमेशा ही करा आज की ज्यादा कर लेंगा तो अब जो कि काम की बात है पहली बात तो आए देखो गर्मी बहुत पड़े
0: देखो तो सगला नीठा है
1: देखो काम की बात तो आई है आज की बात करा
0: गर्मी पड़े है पर भी गर्मी रो उपाय जी को है नी बा काम री बात है
1: भाई देखो गर्मी को उपाय देखो मारी जकांगी उम्र लेडी है नी अब मांग ली तो उपाय हो है कि आप आश्रम बैठा रहा तावड़े में बारह नहीं जावा एर टाबरा की भी थोड़ी निगह रखा कि भी बिना काम गए घरों बारे नहीं जानो
0: का काम वाला है भी अंत घरों बारे जानो
1: बारे जानो पड़े
0: और बिना जी को
1: जाप तो रखनो पड़े
0: बहुत जरूरी है
1: बहुत जरूरी है और जब तक बात जापते ही है नहीं सत्यनारायण भाई तो देखो खेती बाड़ी में भी आपा न की जाप तो रखनो पड़े
0: भाई देखो बात यह है कि आपा किसान और घूम फिर अपनी बात खेती और पशुपालन मत आया करे देखो और आपने जी की आजीविका और साधन जी को है निर्भरता जी की है ज्यादातर खेती मत है और आपनों कहीं अपना भारत देश जी को है कृषि प्रधान देश है और विशेष रूप हमारे राजस्थान में तो देखो आई चीज है

0: कठे सिंचाई रा साधन है, कठे सिंचाई रा साधन कोनी। और आज रा बगत रा महीने कई है कि घणो फसल चोखी उपज फसल घनी उपज लेवण सारू आपां रासायनिक जेकी खाद है बिहारों प्रयोग करया करा, जेके सु कई है कि आपणी जेकी मिट्टी है आपणी जेकी खेतरी मृदा जेकी है बा दिनों दिन खराब होती जा रही है,
1: विकास भी हुई है तरक्की भी हुई है। इंगे सागे सागे देखो कह रहे कोई चीज आगे बढ़े जब कोई चीज लारे भी रह जाए। अब बात करें भी आपने देश में अन्न उत्पादन भी बढ़ियो है, दूध रो उत्पादन जो वो भी बढ़ियो है, खेती बाड़ी जिकी है बा पहले नो ज्यादा होने लग गई है। खेती बाड़ी पहले जिसी दोहरी होती अब बीती दोहरी कोनी। पण एक चीज और भी है कि खेती बाड़ी में रासायनिक खाद जिके है नहीं बिंगो इस्तेमाल पहले नो ज्यादा होने लग गयो। देखो आपना ठे तो पहली भी रासायनिक खाद कौन लेता, लेकिन जदों सिंचाई रा साधन वापरिया है या सिंचाई रा साधन होया है या कटी कटी जठे नहर आ गई है बट रासायनिक खाद जिके है बा भी बिंगो उपयोग जो को है वो बढ़ गयो, जखे सु आपने जिकी खेतरी माटी है बिंगो जो को स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित हुई है।
0: अब और जमीन कड़ी कठोर भी हो जाए।
1: हाँ बिल्कुल कड़ी हो जावे और भी कई फिर पच्छा एकर शुरुआत में तो लागे कि भी खेती बाड़ी सु आपन फायदा हो रही है फसल अच्छी हो रही है, पर धीरे धीरे किए कि बा माटी फिर दम तोड़न लाग छे
0: भाई लगातार जो रासायनिक खाद रो प्रयोग करा बिरा दुष्परिणाम है।
1: अब दुष्परिणाम तो है, अब बात है कि भी उपाय भी होना चाहिए। तो उपाय की जब बात करा तो देखो दूसरी खादा जो की देसी बह तो आप बिल्कुल
0: आपने
1: ठेकी जी बात करा तो देखो जी मूंग है या लोबिया जो है नी
0: गवार भी है।
1: हाँ तो अन्न जो है कि आंसू आपा हरी खाद बना के जब थोड़ी सी बढ़वार ले ले फसल पिंक पचे पाटो लगा के बिना खेत में आपन चो की तरह
0: दाब,
1: दाब देनी चाहिए। जखे सुखी है कि आपने खेत में कार्बनिक पदार्थ चुके है वो भी बढ़े, जखे सुखी है एक तो माटी जिकी है वह पोली हुए नरम हुए
0: भी सुखी
1: है। हाँ बिल्कुल, और भी सुखी है कि फसल की जड़ा जबकि भी आगे फसल लगावागा जड़ा की बढ़वार जिकी है
0: और क्या है भाई जरूरी जी की चीज बा नाइट्रोजन जी कहने भी में इमें आयर कारण बढ़ावण में मदद करया करे।
1: हाँ वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो
0: है और दूसरा पोषक तत्व भी इस में अपने मिट्टी ने मिले।
1: माटी जो फोलियो जैसे फोस रही हो जे नी जके सु के हवा को संचार जो को है वो भी बटे जके सु बढ़वार जकी है फसल की बा अच्छी हुई।
0: दूसरा कह के भाई मिट्टी री जी की नमी है बा भी बना रखे और कीट और रोग जी का है नियंत्रण में भी फायदो आ हरी घास हरी खाद जी के दिया करें।
1: बिल्कुल,
0: और भी कई भारी बात फायदे की बात मैंने
1: भी देखो और फायदा तो एक
0: सागे आप पशुपालन की बात करी।
1: बिल्कुल पशुपालन
0: तो हरी खाद सु जमीन उपजाऊ है चारे री फसल जी की अभी में उत्पादन चोखो हुआ है। इस कहीं है कि पशुओं ने पौष्टिक चारो मिले जिके सु खेती और पशुपालन दोनों अपना कहीं है मजबूत होया करें।
1: एक चीज और भी है भाई देसी खाद जिकी है बा आपा किसान खुद तैयार कर ले, लेकिन रासायनिक खाद के लिए तो किसान ने जोड़ो लेके बाजार का नहीं जानो पड़े
0: पीसा लागे।
1: हाँ। तो पीसा लागे तो इनको मतलब है कि खेती की लागत बढ़ जाए। लेकिन जब आपा हरी खाद तो काम चला सका तो एक तो किसान की खेती की लागत कम हो सस्तो पड़े और दूसरी बात माटी जिकी है बिंगी गुणवत्ता जिकी है संरचना जिकी है भी में सुधार हुए। रासायनिक खाद सु संरचना खराब हुए माटी की, लेकिन जब आप हरी खाद काम में लेवा तो बी सु माटी की संरचना जिकी है भी में सुधार हुए, माटी का कण जका है वह आपस में मजबूती सु जुड़िया रहे और हवा को संचार अच्छा हुए, नमी जिकी है वह लगातार बनी रहे और पानी सोखने की ताकत जिकी है माटी की भाभी बढ़िया।
0: मोटा मोटी कह सका पर्यावरण संरक्षण में भी फायदो करे है और प्रकृति रो जो संतुलन है वो बना रखे है और अब संतुलन अपने कार्यक्रम में भी जरूरी है। बातें चितना सागे मीठो सो गीतर लो जो है अपने निजर करा ओ सीमा मिश्रा रे गायड़ो
1: सुनाओ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: जलवायु परिवर्तन, हम क्या कर सकते हैं? यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है और इससे बचने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। सरकारों को उत्सर्जन घटाने और जलवायु के प्रभाव से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। आम लोगों से लेकर इंडस्ट्रीज तक सबकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। कोयला, तेल और गैस का कम इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कई देश अब भी इन पुराने ईंधनों पर निर्भर है, लेकिन वे साफ ऊर्जा अपनाने की पहल कर सकते हैं। निजी क्षेत्र, खासकर ऊर्जा, फैक्ट्री और खेती से जुड़े व्यवसायों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे धरती को बचाने में मदद करें। क्या आप जानते हैं 191 देश पेरिस समझौते का हिस्सा हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके।
4: पुलिस?
5: मिस सीमा
4: जी,
5: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों? लेकिन मैं
5: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1 लाख दो, बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
6: हेलो मम्मा।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
11: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
12: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ਸਗਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਲੋ ਜੇ ਸੀਮਾ ਮਿਸਰਾ ਜਾ ਗਿਆ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਰਗਾਇੜੋ ਸੁਣਿਓ ਸਾ
1: ਬੋਲ ਚੁੱਕੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਖੈਰ और अपना जो कार्यक्रम सुननी बहना और भाई है बे इन चीज़ ने इतनी गंभीरता से भी कौन ले भाई भूल चुक जाएगी छोटी मोटी हो जाया करे
0: आगे पीछे हो गयो
1: हाँ आगे ला रहा होगी और तो क्या है
0: और बात आप कर रहे अपने देश की राजस्थान की और राजस्थान जब नाम आवे तो वो अपनी रंग बिरंगी संस्कृति लोक परंपरा और कला कौशल सारू पूरे देश में प्रसिद्ध है अठे राज्य का लोग है आप सदियां सू अलग अलग पारंपरिक कला में निपुण रही हाँ बंदेज कढ़ाई लकड़ी री नक्काशी मिट्टी मिट्टी की कला कठपुतली ब्लू पोट्री लाख चूड़ी ऊँट चमड़े माथे कलाकारी हथकरघा जैसा कई जी नी पारंपरिक कौशल राजस्थान की पहचान है और आज ए कला जी है खाली अपनी संस्कृति बचाने के माध्यम को नहीं अपनी आर्थिक विकास रो मजबूत आधार भी है
1: बिल्कुल और ए जिकी अपनी सांस्कृतिक धरोहर ही को नी ए आर्थिक लाभ रो महत्वपूर्ण साधन जो है वो भी मान्य जावे और ए जी पारंपरिक कला कौशल है आंसू आपा लोगन ने रोजगार का कई मौका जका है वे आपा ने मिले अरे छोटे गांव और कस्बा में कई परिवार जका है बहुत सारी पीढ़ियाँ सू आ कलावां के माध्यम सू आपकी आजीविका जिकी है वे चलाया करें
0: पारंपरिक कला जिकी अपने पूर्वजों की धरोहर है आ कला जिकी है पीढ़ी दर पीढ़ी अपने सिखाई जा करे
1: बिल्कुल
0: और गाँव में तो अपन जैसे बात करी भाई कई परिवार और विशेष रूपों महिला सशक्तिकरण में इरो विशेष योगदान जी को है
1: बिल्कुल और एक चीज और भी है देखो सतान भाई कि आज के वक्त में हाथों बनेड़ी जी की चीजें है नी
0: हाँ
1: बांगी देश विदेश में

0: जकी है वह बढ़ रही है। लोग मशीन के बजाय हाथ से बनेड़ी जकी भी कलात्मक चीजें है नी बन ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो भारतीय हस्तशिल्प जकी है, कढ़ाईदार कपड़ा जका है, लोक चित्रकला जकी है या सजावटी जकी चीजें है नी बारो विदेश में निर्यात जुका है वो हो रही है, जैके सु देश ने विदेशी मुद्रा जकी है वह भी मिले और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जकी है बी में भी फायदो हो।
1: सही बात कही। तो इरे सके अपने पर्यटन से भी आर्थिक लाभ होया करे है और जिका मुख्य मेला जिका लागे अपने चाहे पुष्कर रहो चाहे जैसलमेर रहो चाहे बीकानेर रहो बठे पर्यटक जिका आवे बे में कहीं क्या करे कर, लिया करे अपनी रुचि दिखाया करे। और जैसे बात करिए निर्यात में वृद्धि हुई है अपनी विदेशी मुद्रा इरे द्वारा आया करे है तो इरे बगैर थोड़ी सी बात आ करा कि भाई चुनौतियाँ कहीं हैं। आज मशीन सु बनाने चीज़ें सस्ती हुए पर पारंपरिक कलाओं जी की चुन बने आतूँ ए थोड़ी महंगी हुआ करे तो इरे सारू उचित जी को क्या करे प्लेटफार्म यदि मिल जावे जी का कारीगर है बियाने और बिर सारू सरकार अपने कई जतन जी का है कर भी रही है।
0: भी एक चीज और भी है, आजकल देखो गांव-गांव में इंटरनेट की मोबाइल की सुविधा है तो अंग माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से कलाकार जका है आप उत्पाद जो है ऑनलाइन भी बेच सके जैके सु बने एक बड़ो बाजार मिले और बाकी आमदनी जी की है बाबी बढ़ जावे। जरूरत दरकार इन चीज रही है कि आप थोड़ा सा प्रयास करा आपने जिकी भी चीजें हैं बने थोड़ा सा कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करा ताकि लोग बा चीजें के बारे में समझे जाने और बिंग पच्छे आपनी जो चीज बढ़िया होगी तो कोई संदेह को नहीं कि बात चीज नहीं बिके।
1: सही बात कही रहा कार्यक्रम में भी आगे बढ़ावा बात करिए गीतड़ लेरी तो सीमा मिश्रा गायड़ो गीतड़ लो सुना
0: सुनाओ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की

0: नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना।
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: है तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: तो सा देखो गीतरला सुनियार संदेशा सुनियार भी हूँ पहला बात करी खेती बाड़ी री और स्वास्थ्य री। और स्वास्थ्य रो देखो एक ही है कि भी पहलो सुख निरोगी काया, निरोगी काया जद ही रह सके जद आप साफ सफाई और ध्यान रखा।
3: बिल्कुल सही बात
2: है। चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे घर हो, चाहे बारे हो।
3: और देखो आज चीज की सुनने में तो आपने ये छोटी सी लागे पर ई रो जो महत्व है नी वो बहुत गहरो है। कई बार आप देखा कि मन को नहीं लाग रहे हो, मन को नहीं लाग रहे हो भी नाणो धोनो ही कौन करो, टाइम सर से नहाओ धो को नहीं, साफ सफाई नहीं रखो, आश्रम बैठा जे मान लो कमरों जो है साफ नहीं हो रो है नी तो भी क्या है कि मन में ही आ रहा है कि भी थोड़ी सी बेचैनी सी है। तो साफ सफाई रो महत्व जो को है वो अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की भावना है इन चीज ने ध्यान में रखते थका ही भारत सरकार का नहीं 2 अक्टूबर 2014 ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जी कहनी बाकरी जी। और इनको लक्ष्य जो को हो कि भारत जो को है अपनो देश वो स्वस्थ स्वच्छ और बीमारी मुक्त रहे।
2: उद्देश्य वही है कि भाई खुले में शौच बंद करना है, गांव में साफ सफाई बढ़ानी है, कचरा प्रबंधन जो को है बिना सुधारना है, अपने स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है, लोगों में स्वच्छता प्रति जागरूकता पैदा करनी है, शौचालय निर्माण जो है वो जठे नहीं है बट जरूर करना है अपने। तो ए

0: काम है नी ए करिया अपन गाँव रो जो है नी साफ सफाई रहसी, गाँव रो विकास भी होसी और बीमारियां सु अपा दूर रहसा।
1: बिल्कुल, और एक चीज और भी है कि ई मिशन सु एक फायदो ओ हो है कि लोगों की सोच में परिवर्तन जो को है वो आयो है। पहले कई लोग सोचता कि साफ सफाई जकी है वह केवल सरकार या सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी है, लेकिन अब लोग खुद आप घर गली और आसपास को जो को वातावरण है बिना साफ रखने के लिए जागरूक हो रहा है, और स्कूल और कॉलेजों में भी स्वच्छता अभियान जो को है वो चलाए गए है ताकि टाबरा में और युवाओं में जागरूकता जकी है बा बढ़े।
0: सही बात कही संदीप भाई, अब कार्यक्रम ने अपन आगे बढ़ाने पड़सी। किसान भाई उड़ीक रिया है गीतर ले सारू, तो चंपा मेथिर गायडो मिठो सो गीतर लो सुना सा।

0: तो देखो साहब, बातचीत करी हीर, बातचीत था पहला करी संदीप जी, गीतला सुनया भी पहला खेतीबाड़ी करी हीर, कई चीजें ऐसी के भी अपना बाजार अपने मिल जाए तो अपना आर्थिक जी की नहीं दाम जी का चीजें चोखा मिल जाए, पर बीरे सारू कई चीजें सावचेती रखनी जरूरी है।
1: जी
0: जीका
1: हाँ।
0: जहाँ आपा कोई चीज खरीदा या बेचा, विशेष रूप आपा खरीदा तो आपा उपभोक्ता हो गया, अभी चीजें काम में लेवा,
1: ठीक है।
0: तो कई बार अपने सगे कहीं है कि एक चोट होगी, चोट होगी मतलब कोई वजन में कमी आ गई है,
1: ये
0: चीज
1: चीज
0: गलत
1: में
0: दे
1: खोट
0: दी,
1: निकल गई हो।
0: खोट निकल गई, तो अपने नुकसान हो सके, तो नुकसान होने सारू कहीं है कि अपने कई अधिकार मिले अपने संरक्षण खातर, उपभोक्ता खातर, तो बीरो फायदो जद मिले जब अपन कहीं है कि जानकारी वे अपना बीर प्रति जागरूक रहे, वहां
1: तो जागरूकता में करा खाई।
0: करण वही है कि बीर में देखो भाई, एक तो पक्को बिल लेनो चीज है, ठीक है, चीज जी की लेवा बस चार जगह पूछ लेनी चीज है, और अधिकार जिका वे घणा ही है भी, अपने सुरक्षा रो अधिकार मिले, जानकारी रो अधिकार है, उपभोक्ता संरक्षण महीने अपने अपनी पसंद रो अधिकार है, दुकानदार है कहणु नहीं, अपने जी की चीज है बाई चीज लेवा आप, और कोई कमी आ गई तो फिर शिकायत रो अधिकार भी अपन उपभोक्ता

0: भाई देखो एक चीज है कि मन समझ में आए सत्यनारायण भाई कि बिल जो है वो आप आला और 700 बिल लिया, ये नहीं कि हाथों ये लिख के दे दिए भी, बिंगो पूरा ठिकानों बिम पर होना चाहिए और कौन सी जगह चीज लिए भी चीज को बिम पर विवरण होना चाहिए
1: बिल्कुल। और विवरण थोड़ी सी और दे दू जाऊ कालूराम प्रजापति रे मीठा
0: सो गीतर
1: लो सुन ला सा।

ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुन रहे थे ग्रामीण जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर संध्या के 7:45 होने को हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले सुनिए स्वाति नेतेकर की गाई हुई ये गजल।

उमेश मेहंदीरत्ता के गाए हुए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनिए किशोर कुमार और साथियों को। फिल्म का नाम है खून पसीना।

0: भूल गए चोर बाजारी, अरे लुट गई दौलत सारी। सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो,

0: अगर वो टूटी सारी तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून

0: अगर करेंगे झगड़ा प्यारे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून

दीवाने हुए पागल। इस फिल्म में अभी आपने अनु मलिक को सुना, और अब सुनिए अलका याग्निक और अभिजीत को। फिल्म का नाम है धड़कन।

हाफ गर्लफ्रेंड। इस फिल्म में आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह, शाशा त्रिपाठी और मिथुन को, और अब सुनिए सलीम मर्चेंट को। फिल्म का नाम है फैशन।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात के 8:30 होने को हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। सबसे पहले सुनिए अब्दुल गनी का गाया हुआ ये लोक गीत।

0: लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके पश्चात अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम

0: कीमतें चाहता है।
1: We want peace and stability.
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और

0: महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच

शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और सीबीएसई परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक सीबीएसई की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने सीबीएसई को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यूपीएससी ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए यूपीएससी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से

फिल्म का नाम था गुलामे मुस्तफ़ा। स्वर था इकबाल साबरी और अफजल साबरी का और साथियों का। अगला गीत सुनिए श्रेया घोषाल और सोनू निगम के स्वर में। फिल्म का नाम है बेशरम।

फिल्म का नाम था डांस डांस, स्वर था अलीशा चिनॉय और साथियों का। और अब सुनिए उदित नारायण, जसपिंदर नरूला, उद्भव, शान और श्वेता को। फिल्म का नाम है मोहब्बतें।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलन और चैनल से बोल रहे हैं। रेडियो 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 10 बजने को है। अब आप सुनेंगे रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा। इसे हम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से

0: रवि वाचरिया अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाले विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय।
1: इन द रवि वासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया श्री लाल मोहन भट्टाचार्य इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन of this rich legacy, and Pandit Hauru Shankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya moved to Bombay, present day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Zafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by प्रशांतो दे रॉय।
0: पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल, तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आपत्ति

0: पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवद्ध है।
1: You were listening to Raag Chayanat in the sitar recital. Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Raag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the Raag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांत दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर
3: मीडियम 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार। समाचार

0: चार पहले हिंदी में होंगे और उसके पश्चात 11:05 पर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा

0: And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। अगली सभा में कल सवेरे 5:53 पर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।